आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बजे है। ये जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।
2: स्वागत है आप सभी का, ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। राज्यसभा के कार्य आज फिर से शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने तथा पिनल कोड तथा कुछ धारकों में संशोधन से संबंधित 2 बिल पर विचार करेंगे। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा पीएमक्यूटी के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से 13 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद आद्रियन जीवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें लगाई हैं। जॉन माइक मॉटिंगेल मामले में एसएसओ एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थ मिले शराब की 2 बोतलों के साथ गिरफ्तार यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरेसुल्किना के मुकदमे में सुनवाई कल असाजिज अदालत में जारी रही। बचाव पक्ष ने दिवंगत जॉन माइक मॉटिंगेल के बयान अदालत में पेश किए जाने की मांग की। इस बीच मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ अदालत के फैसले तक स्थगित कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई आज होगी। जर्मनी में माताओं और बच्चों के केंद्र में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी 3 महीने की बेटी की अभिरक्षा को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण केंद्र में पहुंचा था। फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पैराग्वे ने निर्धारित समय और अतिरिक्त समय तक 1-1 की बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब चले जानते हैं मौसम।

0: हाल। हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा की लहरों का असर रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान विशेषकर ऊंचाइयों पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। शाम को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम अन्य इलाकों पर 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। दक्षिण पूर्व की दिशा से हवा बहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम के समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:41 पर होगा।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.

0: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम में 119 किलोहर्ट्ज पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। माइक पर आप सभी का साथ दे रही है रत्ना। हमारा सुप्रीम नमस्कार स्वीकार करें। आज 30 जून 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04:40। मंगलवार का दिन सभी के लिए मंगलमय रहे, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जुड़े हैं। और अभी थोड़ी ही देर में मानस मोती कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये कार्यक्रम रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर विनु अरुण। 6:20 के करीब आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित। और इस कार्यक्रम को आज प्रस्तुत किया जाएगा गहलोत राजपूत महासभा द्वारा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी पंडित पियती। 6:30 हम पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ और समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। श्रोताओं, अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अहंकार को त्याग कर अच्छी भावनाओं को पालते हुए, मानवता को मन में रखते हुए आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मानस मोती कार्यक्रम के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर विनु अरुण का।
1: सुनिए मानस मोती रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मोती कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, आज रामचरितमानस से मोती रूप में एक ऐसा सोरठा चुनकर लाई हूँ जिसमें इस बात की चेतावनी दी गई है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें छोटा समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी अस कहि विविध बिलाप करि लागी रोदन करी। शत्रु रुज मैंने रोग, पावक मैंने अग्नि, पाप प्रभु अर्थात स्वामी राजा या जो भी अधिकारी है,

और अही यानी सांप इन छहों को कभी छोटा या तुच्छ समझकर उपेक्षित नहीं करना चाहिए। ये यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प ये छह ऐसे हैं जिन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, यानी इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहा है, आइए जरा गहराई से समझें। इन पंक्तियों में यानी सोठे में तुलसीदास जी ने एक बहुत गहरी बात हमें बताई है कि जीवन में कुछ ऐसी शक्तियाँ या परिस्थितियाँ होती हैं जिन्हें यदि प्रारंभ में ही गंभीरता से ना लिया जाए तो वे आगे चलकर बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह इनका छोटा रूप देखकर ही सावधान हो जाता है और इनसे बचने के उपाय कर लेता है। और इन लोगों में या इन शक्तियों में जो पहला नाम गिनाया गया वह है रिपु अर्थात शत्रु। शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि शत्रु को कमज़ोर समझकर उपेक्षित कर दिया जाए तो वही शत्रु अवसर पाकर बड़ा संकट बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई हमारा शत्रु है, हमसे दुश्मनी करता है, हमारा अहित करना चाहता है, हमें पता है, लेकिन हम ये समझें कि हम तो बहुत महान हैं और वो तो बहुत छोटा है, छोटा आदमी है, वो हमारा क्या कर लेगा, करता है शत्रुता तो करे, तो हम उसका ध्यान नहीं देते, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो क्या हो सकता है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे इतनी शक्ति अर्जित कर ले, इतना श्रेष्ठ, इतना महान बन जाए कि वो बाद में, चूंकि हमने तो हम असावधान हो गए हैं उसकी ओर से, लेकिन वो असावधान नहीं है, उसके मन में तो हमसे बदला लेने का एक संकल्प है, तो वो चुपचाप नहीं बैठा है और हमने ये सोच लिया कि वो शत्रु तो छोटा है, हमने उसका ध्यान नहीं दिया, तो बाद में क्या हो सकता है कि वो व्यक्ति हमें असावधान देख करके हमारा अहित कर सकता है, कुछ भी हमारा बुरा कर सकता है। इतिहास में कई ऐसे युद्ध हुए हैं जहां प्रारंभ में शत्रु को छोटा या दुर्बल समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और बाद में वही विरोधी बहुत शक्तिशाली बन गया। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की शत्रुता को हम हल्के में लें तो समय आने पर वह बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। दूसरी बात कही गई रुज। रुज मैंने रोग। रोग को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, यानी छोटी से छोटी बीमारी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही बीमारी एक गंभीर रोग बन सकती है। साधारण सर्दी, खांसी या संक्रमण का उपचार यदि समय पर ना किया गया तो वह गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में सावधानी आवश्यक है और इसीलिए कहा जाता है कि बार बार हमें चेकअप कराते रहना चाहिए, बार बार रक्त जांच या जो भी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए। और यदि किसी भी रोग के लक्षण हमारे शरीर में उभर रहे हैं तो एक बार चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए ताकि वो छोटे छोटे लक्षण बाद में किसी बड़ी बीमारी का रूप धारण ना करें। तीसरी बात कही गई पावक। पावक मैंने अग्नि। अग्नि को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला सकती है, जंगल को जला सकती है, न जाने कहाँ कहाँ वो आग फैल सकती है। जंगल की आग प्रायः एक छोटी चिंगारी से ही आरंभ होती है, लेकिन थोड़े समय में ही वह विशाल क्षेत्र को जला देती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता था कि जब चूल्हे में हम खाना पकाते हैं तो वो छोटी छोटी से लकड़ी की छोटी छोटी चिंगारियाँ रह जाती थी, तो कहा जाता था पानी डाल करके उसे बुझा दो, पूरी तरह से देख लो कि आग बुझी।

0: है या नहीं, थोड़ी भी कहीं चिंगारी है तो उसे तुरंत बुझाओ, नहीं तो क्या होगा, जरा सा भी हवा का झोंका आया तो वो चिंगारी आग बन जाएगी। और आगे उन्होंने कहा, चौथी चीज जो गिनाई वो कहा पाप। पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा सा भी पाप धीरे धीरे मनुष्य के चरित्र को भ्रष्ट कर देता है। पाप का मतलब हमने कोई गलती की, हमारे बच्चे ने शुरू में कुछ भी चोरी कर ली, किसी अपने साथी की एक पुस्तक चुरा ली, एक कॉपी चुरा लाया, एक पेन चुरा लाया, तो ये पाप है क्योंकि चोरी की जा रही है। हमने तुरंत यदि अपने बच्चे को इस बात से सावधान नहीं किया कि तुम ये काम मत करो, जिसकी चीज़ लाए हो जा कर के उसको लौटा दो, और दो तीन बार यदि हमने उसे समझा दिया तो फिर वो जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा या वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। लेकिन यदि वो झूठ बोल रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, उसने कोई गलत काम किया, हमने उसे रोका नहीं, टोका नहीं, तो वो छोटी छोटी सी गलतियाँ ही मनुष्य को बाद में पाप की ओर धकेल देती हैं, पतन की ओर धकेल देती हैं। पांचवी बात कही गई प्रभु। प्रभु का मतलब है जो आपका स्वामी है, चाहे वो शासक हो या आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं जो आपका बॉस है, उसको भी यहाँ पे प्रभु के रूप में बताया गया है। उसे भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसके अधीन हम काम करते हैं, जैसे चाहे वो राजा हो, गुरु हो, हमारे ऑफिस का अधिकारी हो, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल हो, उसके अधिकार और सम्मान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। कार्यस्थल पर यदि कोई व्यक्ति अपने वरिष्ठ की उपेक्षा करता है तो इससे उसके जीवन और कार्य में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। और जो वरिष्ठ व्यक्ति है वो तो हमारा अहित कर सकता है, उसको कौन सी बात, छोटी सी भी बात बुरी लग गई और वो हमसे बदला लेने को उतारू हो जाए तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि उसे भी कम नहीं समझना चाहिए कि अरे वो हमारा क्या करेगा, ऐसा नहीं है। और कभी भी कहा गया है कि जो प्रभु है यानी जो स्वामी है उसे मित्र मत समझना, क्योंकि आप मित्र समझ के कभी उससे उपहास कर दें, उसको कोई बात बुरी लग जाए तो वो बदला ले सकता है। आगे कहा गया अहि यानी सर्प। सर्प को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सर्प चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका विष कितना खतरनाक हो सकता है हम जानते हैं। एक छोटा विषैला सर्प भी मनुष्य के जीवन के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इन छह चीज़ों का नाम लेकर तुलसीदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में किसी भी संभावित खतरे या नैतिक त्रुटि को छोटा समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि समस्याओं को उनके आरंभिक रूप में ही पहचान कर हम सावधान हो जाएं। यही सतर्कता मनुष्य को बड़े बड़े संकटों से, बड़े बड़े कष्टों से, मुसीबतों से बचा लेती है। और आज रामचरितमानस के इसी सोरठे के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

0: जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, जैसे राम रखते हैं बस वैसे चलते जाइए। जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए। फिल्म शिक्षा का ये गीत हमने अभी अभी सुना चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ में। और चलिए इसी के साथ अभी समय हो चला है अगले कार्यक्रम के साथ जुड़ने का, जो विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित है। और ये कार्यक्रम गहलोत राजपूत महासभा द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी पंडिता पियति। आपको याद दिला दें, ठीक 6:30 बजे एक बार फिर हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। और अब हमारी और आपकी भेंट होगी समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक के लिए साथ अवश्य दीजिएगा।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

0: रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते क्रेद्धे स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दताघ्नता जानता संगमे महे ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से मैं पंडिता राजवंती पियती इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आपकी सेवा में प्रस्तुत मेरा विषय है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती की बेजोर कृति है। इस ग्रंथ रत्न ने लाखों के जीवन को बदला है। पूरे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लीजिए, उसमें एक पृष्ठ भी ऐसा न मिलेगा जिसमें संदेहों की निवृत्ति न हो। अनेक धार्मिक उलझनों में परे व्यक्तियों ने सत्यार्थ प्रकाश से मार्ग तलाशा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय को इस मंत्र को प्रार्थना करने वाले इसे अवश्य पढ़े, मार्ग अवश्य मिलेगा। तभी तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा था, इसी पवित्रतम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से मैं पवित्र बना, यह मेरे जीवन का ज्योति स्तंभ है। पादरी सी एफ एंड्रूज का कहना है, मैंने भारत आकर सच्चे हिंदू धर्म का परिचय सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से पाया है। और स्वामी श्रद्धानंद जी का कहना था, समस्त संदेह निवारक इस अमर ग्रंथ को पढ़ने की सभी सत्यान्वेषियों को प्रेरणा देता हूँ। यह ग्रंथ 500 पृष्ठों में प्रचलित हैं। यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना के लिए स्वामी दयानंद जी ने एक पंडित जी का सहारा भी लिया था। जो भी कार्य महर्षि जी उचित समझते थे उसे प्रारंभ करने में कभी विलंब नहीं करते थे। जब राजा जयकृष्ण दास जी ने स्वामी जी से प्रस्ताव किया कि गुरुवर, आपके उपदेश से जो वंचित रह जाते हो उनको यह कैसे प्राप्त होगा, आपसे अनुरोध है कि अगर आप इसे पुस्तकाकार में प्रकाशित कर देते तो बड़ी कृपा होती, ताकि भविष्य में आने वाली संतान भी आपके अमूल्य उपदेशों से लाभान्वित हो सकेगी। इस प्रस्ताव को ऋषि जी ने तुरंत स्वीकार करते हुए काशी में प्रथम आषार वदी 12 संवत 1921 अर्थात 12 जून सन 1874 में शुक्रवार के दिन स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखने का कार्य प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और पंडित चंद्रशेखर जी लिखते जाते थे। एक साधारण सी पुस्तक लिखने के लिए तो कितने समय लग जाते हैं, तब जाकर के रचना कार्य पूरा हो पाता है। यहाँ पर एक बात और अपने स्वामी जी को, यहाँ उनके जो वीर सैनिक कहने वाले हैं सामने, वे यदि वेद का प्रचार प्रस्ताव रखा जाता है तो इसके लिए कई सम्मतियाँ लगती हैं, कई समितियां भी लगती हैं, कई लोगों के विचार लगते हैं, तब जाकर के कार्य पूरा हो पाता है। किंतु स्वामी जी जैसे प्रकांड विद्वान तो एक ही थे अब तक ही भारत में, ऐसा विद्वान कहीं और नहीं पाया गया। 5-6 मास के भीतर में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश जैसे सर्वोत्तम ग्रंथ लिख दिया। स्वामी दयानंद जी से पहले जितने सांप्रदायिक आचार्य हुए किसी का भी ग्रंथ इतना विख्यात नहीं हुआ। आज विश्व गगन में सत्यार्थ प्रकाश की किरणें सर्वत्र प्रसारित हो चुकी हैं। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण की हस्तलिखित प्रति के 14वें समुलास के अंत में लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण की संपूर्ण हस्तलिखित प्रति स्वर्गीय राजा जय किशन दास अर्थात जय कृष्ण दास जी के घर में सुरक्षित है। इस खोज के लिए परोपकारिणी सभा के सभी मंत्री श्री ऋषि भक्त श्री बाबू हरविलास शारदा जी और पंडित भगवंत जी के धन्यवाद के वे लोग पात्र हुए जिनके परिश्रम से ही जानकारियां प्राप्त हुई। ऋषिवर की कठोर तपस्या थी कि उन्हें जो शिष्य मिला वह एक राजा था जिसे धर्म नीति सिखाने को ऋषि दयानंद ने सत्य प्रकाश की रचना में उन्हें अपने साथ लिया। वे थे पंडित जय किशन दास। इतिहास साक्षी है कि भारत में एक ऐसा समय आ गया था कि जबकि वेद की रक्षा करने वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं था तो इतने में एक राजकुमारी ने पुकार उठा कि अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, वेदों की रक्षा करने वाले कोई नहीं है, अब इस भूतल पर कौन है जो वेद की रक्षा कर सके। इस अंतर्नाद को सुनकर आचार्य कुमारेल भट्ट जी ने उत्तर देते हुए कहा, ए देवी मत क्रंदन कर, जब तक कुमारेल भट्ट इस भूतल पर जीवित होगा तब तक वेदों की किसी भी प्रकार से आंच नहीं आएगी। श्रोतागण, आचार्य कुमारेल भट्ट के बाद आचार्य स्वामी दयानंद ही एक ऐसा महान युगांतर पुरुष हुए कि वेद विरोधियों को ललकारते हुए कहा, अब वेदों की ओर लौटो, इस संदेश की ओर लौटो जिस ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सारी जनता का ध्यान आकर्षित किया। जिसने सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया और स्वाध्याय का सही अर्थ अपने जीवन में प्रयोग किया उसका जीवन पलट गया। आज आपके लिए इतना ही स्वीकार करते हैं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, 6:30 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर से शुरू, बैठक में घरेलू हिंसा और पेनल कोड में संशोधन से जुड़े दो महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होगी। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें पेंशन सुधार, एमर्शस सेफ सिटी और ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। वक्फ एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा जारी, सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता को और मजबूत बनाना है। जॉन मिक मॉर्टिंगेल मामले में यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरेसोल्किना के मुकदमे की सुनवाई जारी, अदालत ने मामले की सुनवाई अगली आज के लिए निर्धारित की है। जर्मनी में माताओं और बच्चों के केंद्र में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर हुआ है, 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी पेनल्टी शूटआउट में पराग्वे से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ही ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। राज्यसभा के कार्य आज फिर से शुरू होंगे, आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने

0: तथा पेनल कोड यानी दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन से संबंधित दो विधेयकों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल पाएगा। विधि मासी बोरन।
1: क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। ये विधेयक दंड संहिता में कई संशोधन करने का प्रावधान करता है ताकि इसे डोमेस्टिक अब्यूज बिल के नए प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके। विशेष रूप से ये प्रस्तावित करता है कि बलात्कार के आरोप में मुकदमा झेल रहा कोई भी व्यक्ति अब बचाव के तौर पर पीड़िता के साथ अपने विवाह, चाहे वो नागरिक हो या धार्मिक, का हवाला नहीं दे सकेगा। ये विधेयक कुछ अपराधों, विशेष रूप से बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के लिए सजा को सख्त करने का भी प्रावधान करता है, जब ये अपराध घरेलू हिंसा के संदर्भ में किए जाते हैं। इसके बाद सांसद अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त को पूरा करेंगे, जो इसके अंतिम रूप से अपनाए जाने से पहले का आखिरी चरण है। ये विधेयक सरकार को 2026-2027 के बजट में नियोजित खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए कानूनी अनुमति देगा, जिससे कंसोलिडेटेड फंड से आवश्यक धनराशि निकालने की सुविधा मिलेगी। कार्यसूची में शामिल एक और प्रमुख विषय डोमेस्टिक अब्यूज बिल है, जिस पर सेकंड रीडिंग में विचार किया जाएगा। बहस इस विधेयक के सिद्धांतों पर केंद्रित होगी, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जगह लेगा। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के मामले में कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना है। ये विधेयक हिंसा की परिभाषा का विस्तार करता है, जिसमें अब मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा भी शामिल है। ये पीड़ितों के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करता है, कानून के दायरे को पूर्व जीवन साथी तक बढ़ाता है और पीड़ितों की देखभाल के लिए जिम्मेदार विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है। साथ ही ये रोकथाम और हिंसा करने वालों की जवाबदेही तय करने पर अधिक जोर देता है।
0: इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद अतरियन जीवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें की हैं। अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे। इसके अलावा एमोरस हवाई अड्डे, ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक और सेफ सिटी परियोजना से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री से सवाल किए जाएंगे। वक्फ विकास के कार्यों में लगाई जाती है सामाजिक विकास और बजट 2026-2027 में 85 वर्षों के बाद वक्फ एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करना है। इसी विषय पर कल MBC 1 और MBC 7 पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कहा कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना है। मंत्री को सुनती है।
2: Maintenant, les pouvoirs des affaires plus structurés. Donc, c'est la bonne gouvernance. Et pour moi, quand ils me disent des affaires, franchement, moi, un musulman, comment je suis capable d'accepter qu'il y ait un kinmo, qui se dit bien, le wakaf, et qui demain, un mutawali, qui peut-être pas famille en libre, après 50 ans, 60 ans, 75 ans, vini, il peut prendre leurs en salle, il peut mettre dans sa wakaf là. Comment je suis capable d'accepter qu'il y ait dans une institution aussi pieuse qui wakaf, nous capable de mettre leurs en salle. Donc, ça, la loi là, il met une obligation. Le mutawali assuré qui peine la loi, peine aucun leurs en salle qui passe dans le wakaf, et il met une obligation, le de board of wakaf commissioners assuré qui pas pour une leurs en salle qui ban wakaf zarmé pas pour utiliser pour blanchir l'argent, wakaf zarmé pas pour utiliser pour finance ban activité illégale.
0: Board of Wakf कमिश्नर्स के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन ने बताया कि मॉरिशस में इस समय 539 वक्फ पंजीकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ 3 प्रकार के होते हैं, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक। वहीं आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि सभी पक्षों से व्यापारिक विचार विमर्श किया जाएगा ताकि सभी सुझावों पर ध्यान दिया जा सके और लोगों की चिंताओं का समाधान हो। इसी सिलसिले में बुधवार को उनके कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई। ऊर्जा और सार्वजनिक सेवाओं के मंत्री पत्रिक आसियावादन कल घोषित कार्यक्रम के अतिथि थे। उन्होंने बजट 2000

0: 2026 2027 में घोषित फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाने पर 25% सब्सिडी का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि CWA का बोर्ड अगस्त से व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पानी के शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। मंत्री को सुनते हैं विवरण विधि मासीबुरन।
1: Décision qui la CWA peut réfléchir, le board peut réfléchir, c'est qui augmentation tarifaire pour certaines catégories bien pointifiées. Nous pas capables tous le secteur domestique, la population générale.
2: Ban ménage, ban foyer.
1: Ban ménage, ban foyer. Nous pas capables tous augmentation pour autres. Même si dès le là-bas, n'est pas possible qui nous tous autres parce qu'il nous pas encore de nous autres une distribution raisonnable.
2: Ceci dit, vous considérez pas raisonnable.
1: C'est-à-dire qu'il m'a besoin capable de gagner de l'eau au moins 7 temps, 8 temps par jour pour tant rempli.
3: CWA और बोर्ड जिस फैसले पर विचार कर रहे हैं वो ये कि कुछ कैटेगरियों के लिए CWA के बिल में वृद्धि होनी चाहिए। घरेलू सेक्टर इससे अछूता है, उनके लिए वृद्धि लागू नहीं होती क्योंकि उन्हें 24 घंटे पानी नहीं मिलता है। कमर्शियल सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर, स्मार्ट सिटीज, होटल, वो कंपनी जो पानी बेचते हैं उनके लिए वृद्धि लागू होगी। एक बोतल पानी जो आप खरीदते हैं ये पानी 3 सेंट्स है और आप इसे 30 रुपए में बेच रहे हैं। CWA का बोर्ड इन सब पर अध्ययन करेगा और शायद अगस्त महीने तक एक फैसला लिया जाएगा या शायद देर सितंबर महीने तक। इन सेक्टरों में पानी के बिल में वृद्धि निश्चित और जरूरी है ताकि CWA अपनी प्रणाली को बेहतर बना सके। प्रधानमंत्री ने ग्रांट दिए हैं, अगर आप अपने घर के छत पर फोटोवोल्टाइक स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार आपको 75,000 रुपए का ग्रांट दे रही है। अगर इसकी लागत 2 लाख रुपए है और DPM में आपको 1,25,000 रुपए का लोन मिल सकता है। इसके अलावा 75,000 रुपए का ग्रांट भी मिलेगा। इससे आपको 4 किलोवाट का फोटोवोल्टाइक मिलेगा, आपके बिजली का बिल कम होगा। 5 सालों में आप DBM को लोन चुका देंगे तब बिजली का बिल आपका हो जाता है। इससे न केवल मोशन परिवारों की मदद होती है बल्कि CEB की भी मदद हो जाती है।
1: 125 000 rupees plus 75 000 rupees de grant, il fait ou 200 000 ou gagne panneau de 4 kilowatts ou météo ou la case ou facture électricité. Une baissée et en même temps quand on peut payer DBM, ça veut dire dans 5 ans on finit payer DBM, dépend qu'il quand c'était où l'on était, après on facture électricité, ça vient pour vous. Il n'est pas existe la famille mauricienne, ça, hein? Il est CIB. Mon explique CIB ça. Mon dit CIB qui au départ quand tu gagnes fils qui ou bien rempli, ou monsieur Naiken ou PL CIB, ou peut envie mettre un panneau. Et mon gagne fils que CIB, il y a 17 démons ou bien donné.
2: Beaucoup de monde c'est compliqué.
1: Mon appel CIB, mon dieu que ça, moi, je ne les comprends pas du tout. Je vais au minimum 4 affaires au dimanche.
0: ये बजट के प्रमुख कदमों में से एक है जिसका उद्देश्य मॉरिशस के नागरिकों को ऊर्जा परिवर्तन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत पात्र परिवार अधिग्रहण लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त कर सकेंगे जो प्रति इंस्टॉलेशन 75,000 रुपये तक सीमित होगा। पात्रता मापदंड इस सप्ताह के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। लगभग 3,600 परिवार इस सहायता परियोजना से लाभान्वित होंगी। माधवी जगन्नाथ, आदित्य अवतार।
4: घरों की छतों पर सोलर पैनल बिठाने का प्रोग्राम इस साल एक नया आयाम ले रहा है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरेशन स्कीम के तहत योग्य परिवारों को पैनल खरीदने की लागत का 25% भाग सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। ये रकम हर इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपए तक हो सकती है।
5: Le gouvernement vient avec, comme si vous donnez un boost à ce projet-là, pour donner 75 000 roupies à chaque famille qui est intéressée à mettre un système solaire, les autres la maison. Nous, au niveau du CEB, nous faisons le nécessaire pour l'installation de le système, techniquement, l'application jusqu'à le commissioning. Mais pour le grant, c'est la DBM qui occupe la partie grant. Alors, il y a une roadmap qui nous met en place, qui nous peut finaliser, qui nous pouvait avec une étape à suivre, qui nous permet le nouveau website et nous pouvons expliquer le client quand il vient d'un customer service, alors qu'il y a une étape qui est bien faite pour être capable de bénéficier de sa grant.
4: प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सीबी रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए एक समर्पित विभाग कायम करेगा।
5: Ici, dans l'usine, à peu près un à deux semaines maximum, nous avons besoin de finaliser tout, inclus, et dans ce qu'on appelle le eligible customer. Alors, le eligible customer, vous pensez, il peut être une grille de revenus qui peut être déterminée, que le ministère des Finances et le ministère de l'Énergie et

0: इस सहायता योजना के लिए बजट में लगभग 270 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे इस साल करीब 3,600 परिवारों को फायदा होगा।
1: जॉन मैकमार्टिंगेल मामले में एसएसओ एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थ मिले शराब की दो बोतलों के साथ गिरफ्तार यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरेसुलकिना के मुकदमे की सुनवाई कल असाइजस अदालत में जारी रही। बचाव पक्ष ने दिवंगत जॉन मैकमार्टिंगेल के बयान अदालत में पेश किए जाने की मांग की है। इस बीच मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ अदालत के फैसले तक स्थगित कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई आज होगी। विधि मासिबुर
2: मारिया पेरेसुलकिना का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शमीर हुसैन बकस कोर्ट्स एक्ट की धारा 188C का हवाला दे रहे हैं, जिसमें प्रावधान है कि संदिग्ध की मृत्यु के मामले में उसकी गवाही को अदालत में पेश किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष, जिसका प्रतिनिधित्व वकील नवीश जीलान कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहा है। 26 वर्षीय मारिया पेरेसुलकिना, जो फिलहाल बोबासन जेल में बंद है, पर ड्रग तस्करी का आरोप है। वो खुद को निर्दोष बताती हैं और उसका दावा है कि उसे जॉन मैकमार्टिंगेल ने धोखा दिया, जिससे वो यूक्रेन में युद्ध से भागने के बाद बेल्जियम में मिली थी। अपनी गवाही के अनुसार जॉन मैकमार्टिंगेल ने उससे शराब की दो बोतलें ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसके बैग में जगह कम है। अदालत में पेश किए गए टेक्स्ट मैसेज के आदान प्रदान में शराब की बोतलें, चॉकलेट और कुकीज खरीदने का जिक्र है। आरोपी का कहना है कि उसे बोतलों में ड्रग्स होने की जानकारी नहीं थी। एडवोकेट शमीर हुसैन बकस ने पुलिस की आईटी यूनिट द्वारा तैयार की गई उस रिपोर्ट की चयनात्मक प्रकृति की भी आलोचना की, जिसमें दोनों मुख्य व्यक्तियों के बीच संदेशों के आदान प्रदान का विवरण दिया गया था। बचाव पक्ष को जॉन मैकमार्टिंगेल के बयान सौंपने के संबंध में जज मागवा के फैसले के बाद जांचकर्ता की सुनवाई फिर से शुरू होगी। मारिया पेरेसुलकिना और उनकी हमवतन ओलेना लेविना को अक्टूबर 2022 में मॉरिशस पहुंचने पर रोक लिया गया था। मारिया पेरेसुलकिना के सूटकेस से तरल सिंथेटिक ड्रग्स वाली दो बोतलें बरामद की गई थीं, जिनकी अनुमानित कीमत 48 मिलियन रुपए आंकी गई थी। इस बीच घोंपो की जिला अदालत ने ओलेना लेविना के खिलाफ ड्रग तस्करी के अस्थायी आरोप को खारिज कर दिया है, जो तब से अपने देश वापस लौट चुकी है। जहां तक जॉन मैकमार्टिंगेल का सवाल है, जिस पर भी इस मामले में मुकदमा चल रहा था, उसे 8 सितंबर 2024 को बोबासन जेल की अपनी कोठरी में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। रोजहिल की अदालत में वर्तमान में इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है।
1: सर्दी का मौसम पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। ऐसे में दादी नानी के पारंपरिक घरेलू नुस्खे आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। अक्सर माना जाता है कि वायरल संक्रमण होने के बाद हर्बल चाय या पारंपरिक नुस्खों का ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये उपाय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। कच्ची हल्दी, हर्बल काढ़े, गर्म पेय और कई गुणों से भरपूर इमली जैसे प्राकृतिक उपायों के क्या फायदे हैं, उन्हें किस तरह लेना चाहिए, सुनिए प्राकृतिक चिकित्सक इमरान अब्दुल कून से बात की हमारी सहयोगी शबनीज उजीर वाहिदाली ने। विवरण विधि मासी बोरन का है।
3: Nous consommons un fruit qui a beaucoup de vitamine C. Il y a des chines, des mandarines, oranges, cales, bergamotes, tout ça.
4: Vitamine C वाले फलों का हम खूब सेवन करते हैं, जैसे गुयावदुशीन, मंदारिन, संतरे आदि। वाइटामिन सी से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी, जो हमें संक्रमण से बचाएगी। फिर भी अगर इन्फेक्शन हो गया तब सिट्रोनेल को अदरक के साथ उबाल कर पिए। इसमें ठीक होने के लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं। कुछ लोग काढ़ा चाय में नींबू निचोड़ कर पीते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो दूध का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे म्यूकस पैदा होता है और ऐसे में जुकाम अधिक होगा और खांसी अधिक होगी। इमली का सेवन भी किया जा सकता है, इसमें विटामिन सी होता है। साथ में कीवी गुयावदुशीन भी अच्छा है।
1: मॉरिशस स्मर्सक्रीन की वनस्पति संपदा से बच्चों को कम उम्र से ही परिचित कराने और उन्हें प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसका विमोचन का जिला नेचर पॉक्स में किया गया। अवसर पर मिजिन होराइजन से जुड़े 3 स्कूलों के विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। टीना बुदना।
5: काजिला नेचर पार्क के प्राकृतिक और शांत माहौल में

जहां चारों तरफ पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी, L'herbier des petits aventuriers, Maurice et les mascarins, पुस्तक का शुभारंभ हुआ। इस शैक्षिक पुस्तक के माध्यम से बच्चों को मॉरिशस के सुगंधित एंडेमिक और औषधीय पौधों के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया गया। लेखिका लेटिसिया लो के अनुसार ये हर्बेरियम एक इंटरैक्टिव और पूरे परिवार

0: मिलेगा। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे पौधों को देखकर उन्हें पहचान सके और उनके नाम सीखे। फिर वे उन पौधों को सुखाकर इस किताब के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में वे इस किताब को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं, ताकि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो दूसरों तक भी पहुँचे। अगर चाहें तो पौधों को चिपका सकते हैं या उनका चित्र भी बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चे खुशी खुशी इन पौधों को पहचानना सीखें। इस पुस्तक को तैयार करने में 6 साल लगे और इसके लिए व्यापक रिसर्च की गई। जब जय मुटुसामी, जो कि पोटवी के बाजार में एक पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ यानी चीजानर के रूप में काम करते हैं, उनको इस परियोजना में सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। जब लेटिसिया ने बच्चों के लिए ये छोटा हबेरियम बनाने का विचार बताया तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने तुरंत कहा कि कोई समस्या नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों और बच्चों के लिए एक छोटी सी विरासत होगी। औपचारिक कार्यक्रम के बाद बच्चों के लिए एक शिक्षण वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। इस पुस्तक के माध्यम से लेटिसिया लो बच्चों को मॉरिशस की वनस्पति दुनिया से परिचित कराना चाहती है। उनका उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों में प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना और मॉरिशस की इस अनमोल प्राकृतिक विरासत को महत्व देना है।
1: जर्मनी में माताओं और बच्चों के केंद्र में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी 3 महीने की बेटी की अभिरक्षा को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण केंद्र में पहुंचा था। घटना में कई अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनका कहना है कि फिलहाल जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पैराग्वे ने निर्धारित समय और अतिरिक्त समय तक 1-1 की बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ही ब्राज़ील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। पहले हाफ में पिछड़ने के बाद ब्राज़ील ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की और इंजरी टाइम में विजयी गोल दाग कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब अंतिम 16 में उसका सामना नोवे या आइवरी कोस्ट से होगा। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा की लहरों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज दिन के दौरान ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। अन्य इलाकों पर धूप खिली रहेंगी। शाम को और रात को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। देश भर में न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर होगा 18 से 20, अधिकतम 26-29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 16, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:41 पर होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। कालिमाई रोड होशनुआ में 59 ईयर्स ओल्ड के 59 साल के श्री राज मोहन दुखिया की मृत्यु हो गई है। श्री राज मोहन दुखिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजेश के नाम से अधिक जानते थे।

उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उन्हीं के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशनुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। बुलेल रोड लिनफाटलेन मेरोज में 79 ईयर्स ओल्ड के ब्रिजलाल लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हरिदेव के नाम से ज़्यादा जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे राज सिंह लक्ष्मण के मकान मेलगोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। रूथ जेओफ्रॉय बॉम्बू में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गोवर्धन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें ज्ञानती के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बल्कि उनकी बेटी किरण मोहिसर बोवू के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशनुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। एवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की कुवादम्बल रामसामी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश राम कौपे नायक, लोग उन्हें तौचिन कीर्ति के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे राजनैन रामसामी के मकान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड बुबासेमी 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड की ईश्वंतराव महादिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजन के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे शापेल ओदों इलियनसन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। आपको याद दिला दें कि एवंतराव महादिया पहले खुदबासे काचुबोन के रहने वाले थे। लाशापेल रोड कौंजाब में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की बीबी जैतून मीरम इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम मंडिया बक्स। उनका जनाजा आज सुबह के 10:30 बजे उनके बेटे फयाज मीरम के मकान कौंजाब से निकालकर दफनाने के लिए कौंजाब का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। F2 Résidence Tayac, Rivière des Anguillemets, 82 years old, qui Sian Jani Apadou की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गुरवादू, लोग उन्हें अपा गंगा के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे मनोज अपादू के मकान रिव्या देजांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुबह की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। गोल्डस्मिथ स्ट्रीट कॉम्बेनोआ पेटिट रिवियर में 44 ईयर्स ओल्ड की नित्यानंद सिंह नायक हरी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के बल्कि गुरुवार 2 जुलाई को दिन के 2 बजे उनकी माता तारा नायक होरे के मकान पेचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन 2 जुलाई एट 1:30 PM। ब्रांच रोड लालमाती में 69 साल की मिस पद्मावती बसावा की मृत्यु हो गई है। मिस पद्मावती बसावा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें लीला के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड आल्बियो में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की अहिल्या काली की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें चंदन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके बेटे सुचित दुखिया के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। रॉयल रोड पुस्तफ्लाक में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड की धनराज बोयगो की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कुमार के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी सुकमिन बोयरो के मकान रॉयल रोड पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पुस्तफ्लाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। डिस्पेंसरी रोड त्रियोली में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के राणा प्रताप ताकोरी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राणा के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले बैंक ऑफ मॉरिशस में
मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से काम कर चुकी हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2:45 बजे उन्हीं के मकान

खियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी खियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 2:45 PM चमन त्रेशान नंबर 2 वाकुआ में 100 साल की 100 years old शांति सवाराम की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रेमपत चमन के मकान वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 1 PM स्कूल लेन लाहौजा में 91 साल के 91 years old की सिलिया सनासी जगिया की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें रामू के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज सुबह के 8:30 बजे उन्हीं के मकान लाहौजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माही जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 8:30 AM सिबरत लेन फ्लोरियाल में 73 साल के 73 years old की मारी देजीरे द्वारिका की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके पति ईश्वरलाल द्वारिका के मकान फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट नून मारी जानी रोजबेल में 90 साल की 90 years old की धर्मावती रामदीन की मृत्यु हो गई है. पैदाइश राम राव, लोग उन्हें मामा अनिल के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे सुनील रामदीन के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 9:30 PM रॉयल रोड मोतीदा में 80 साल की 80 years old की शांतिबाई लक्सिमो की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम तानू, लोग उन्हें शांति के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज सुबह के 9:30 बजे उनके बेटे आत्माराम लक्सिमो के मकान मोतीदा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 9:30 AM SSO लेन मोताबा में 75 साल की 75 years old की पुनवासी सुकाही की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें चुकाई के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे सूरज सुकाही के मकान SSO लेन मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताबा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 1 PM रॉयल रोड लालमाची में 58 साल की 58 years old की ननकेश्वरनाथ बिजादौर की मृत्यु हो गई है. ननकेश्वरनाथ बिजादर की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें दूल के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके भाई योगेंद्रनाथ बिजादर के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 9:30 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

Sports News. सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चार बार वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी वर्ल्ड कप 2026 से आउट। पनामा ने पेनाल्टी शूटआउट पर द नेशनल मैनशाफ्ट को एलिमिनेट किया। जोर का झटका है जर्मनी के लिए। रेगुलेशन टाइम और एक्स्ट्रा टाइम में मैच ड्रॉ था 1-1। फर्स्ट हाफ में पागागुए 1-0 से आगे, फिर सेकंड हाफ में काई हावर्ट्ज़ ने इक्वलाइज किया। एक्स्ट्रा टाइम में इसको नहीं बदला। इस वर्ल्ड कप में पहली बार के लिए पेनाल्टी शूट आउट का शिकार बना जर्मनी। काई हावर्ट्ज़, निक वोल्टमेड और जोनाथन ताह पेनाल्टी में स्कोर नहीं कर पाए। जर्मनी आउट, पागागुए इन। जापान के खिलाफ ब्राजील को लगी थरथरी, पर बचाने आ गया मार्टिनेली। ब्राजील की टीम बेस्ट ऑफ 16 में पहुंची जापान की बहादुर टीम को 2-1 से हराकर। फर्स्ट हाफ में जापान ने ब्राजील को चौंकाया, 1-0 से जापान आगे। सेकंड हाफ में काजेमीरो ने इक्वलाइज किया, फिर आर्सेनल का खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट के रूप में आया मार्टिनेली, उसने ब्राजील को जीत दिलाई इंजरी टाइम में 96 मिनट गोल, और ब्राजील बेस्ट ऑफ 16 में। जापान के लिए वर्ल्ड कप का सफर पूरा हुआ। अभी इसी समय मैच चल रहा है नेदरलैंड्स और मोरक्को के बीच। पहला गोल सेकंड हाफ में कुदी गाकपो ने स्कोर किया है। अभी मैच खेला जा रहा है, फाइनल रिजल्ट आपको थोड़ी देर बाद देंगे।

0: आज के मैच रात के 9 बजे आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा और रात्रि के 1 बजे फ्रांस वर्सेस स्वीडन। आइवरी कोस्ट, नॉर्वे, अफ्रीका के दी एलिफेंट्स पहली बार के लिए नॉकआउट राउंड में आए हैं इक्वाडो को 1-0 से और क्वासाओ को 2-0 से हराकर। नॉर्वे की टीम भी बहुत आगे जाना चाहती है। अर्लिंग अलॉन और मार्टिन ओडेगार्ड इस टीम में खेलते हैं। ट्रांसफर न्यूज, मैनचेस्टर सिटी का नया बॉस आ गया। पेप ग्वार्डियोला के स्थान पर एन्जो मारेस्का को साइन किया गया। मारेस्का पहले चेल्सी में था और अपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़कर, चेल्सी को छोड़कर वो इधर आ गया। अब कॉम्पेंसेशन के रूप में सिटी और मारेस्का चेल्सी को लगभग 17 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देंगे। मारेस्का ने चेल्सी से माफी मांगी सिटी में आने के लिए, उसने केवल 7 महीने बाद चेल्सी छोड़ा। आर्सेनल ने बोर्नमुथ के एलेक्स स्कॉट के लिए प्रस्ताव भेजा है पर बोर्नमुथ ने इनकार किया, नॉट फॉर सेल। सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टोटनहम हॉटस्पर और चेल्सी भी इस मिडफील्डर के पीछे हैं और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की अब शिकागो फायर टीम में खेलेगा। टेनिस, विंबलडन ओपन में डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर की एंट्री आसान नहीं रही। म्योमिर केकमानोविच को हराने में 5 सेट लगे, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3। सबालेंका, जोकोविच, ओस्तापेंको, अंद्रीवा, मेदवेदेव, पेगुला, जेंग, ओगर अलियासिमे, कोको गोव, जोडा, हुरकाज, ओसाका आदि खिलाड़ी जीत पाए। आज श्वातेक का मुकाबला टाउनसेंड से ब्लॉक्स वेरेव, सेरेना विलियम्स जॉइंट। क्रिकेट में 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट होगा। वीमेन्स क्रिकेट इवेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन होंगी। मेंस इवेंट के लिए 4 स्पॉट्स होंगे, ये आईसीसी टी20 रैंकिंग्स के आधार पर चुने जाएंगे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशियाना की हाईएस्ट रैंक टीम्स क्वालिफाई होंगी। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, ब्राजील की टीम क्वालिफाई हुई अगले राउंड के लिए, जर्मनी बाहर हो गई और इस समय नेदरलैंड्स की जीत हो रही है मोरक्को पर, मैच अभी जारी है। फाइनल रिजल्ट आपको देंगे RM2 पर 7:40 पर और भूलिएगा नहीं RM2 पर ही 8:30 स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोग करविन की ओर से शुभ दिन।
1: रेडियो मॉरिशस
2: नुथावाई नुलावीनियत और खातिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल जातबा। सेक्टर एग्रीकल्चर रवीन नितेश उजाहिब कंपनी लिमिटेड जिन बिलियाखिविया सेश में है खोजा 53-50 गुमेल एग्रीकल्चरल लेबर एप्लीकेशन खातिन फोन करिया 7-7-2-9-7 पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2026। सेक्टर लैंडस्केप एंड मेंटेनेंस लोगों स्टीव Enterprise Limited, जिन रिजर्वॉयर रोड गुडलैंड्स में है खोजा 58 गो गार्डनर जिसे पे उन्हें पहड़ लेबा और एक बार इसके एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन का तीन फोन करिया 58-23-41-92 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 18 जुलाई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग तंजी स्वीट्स लिमिटेड जिन रॉयल रोड लालमाटी में है खोजा 55 गो मेल फूड प्रोसेसिंग ऑपरेटर जिनका एक बार इसके एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशन खातिन फोन करिया 52-53-69 पर। अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 23 जुलाई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग मुटा इंजीनियरिंग लिमिटेड जिन कॉन्फुखो कास्तिल में है खोजता आर्क वाल्टर जिनका 5 बार इसके एक्सपीरियंस है। टिग एंड मिग वाल्टर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा। मशीन ऑपरेटर जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस है। स्टोक कीपर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। सेल्समैन जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। ड्राइवर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है और रोड्समैन जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशन का तरह CV विदा करिया बाई मेल info@mutain.mu पर। अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड गौरी मार्केटिंग लिमिटेड जन लासूस सेंट्रल प्लाक में है खुजाता दूगो स्टोर।

0: अटेंडेंट या हेल्पर जे सिपेली पहड़ लेबा, एगो फीमेल सेल्स पर्सन जे फोम काटले पहड़ लेबा, साथ में चाहना दुगो मेल पैकिंग ऑपरेटर, और इनकरा चाहना दो पर इसके लिए एक्सपीरियंस रहे के एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 52 59 62 22 पर, या तो फिर आप सकबर जाइए गौरी मार्केटिंग लिमिटेड लासूस सेंट्रल फ्लैग। अर्जी बेची की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2026। पब्लिक सेक्टर में जो तोहर खातिन काम रखल गल बा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजा था ईईजी टेक्नीशियन, और एक काम खातिन तोहरा चाहला जाके ई वेबसाइट चिके करे के https://psc.gov.mu.org/, और अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 29 जून 2026, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजता बायोमेडिकल इंजीनियर या सीनियर बायोमेडिकल हेल्थ इंजीनियर, आपकी भी चाहला ई वेबसाइट पे जाए के अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 30 जून 2026। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खोजता मैनेजर XBRL, और https://psc.gov.mu.org/ पर जाके आप लोग सक बजा अपन एप्लीकेशन विदा करे। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 30 जून, और हुए पे पुलिस डिपार्टमेंट खोजता केटरिंग सुपरवाइजर, और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 6 जुलाई 2026। रोड्रिग्स रीजनल असेंबली हेल्थ खोजता केटरिंग सुपरवाइजर, अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2026। तो याद रखे वेबसाइट पे जरूर जाइए। प्राइवेट हाउस होल्ड वैकेंसी केयर खातिन रेजियो जोन बा फ्लोरियाल एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए EIC वाक्वा 6940031, यानी कि 69 64 03 N, या 69 76 45 8 पर। तो ई रहल तोहर खातिन नू ट्रावाई नू लावेनिया जोन तोहर खातिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल।
1: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हो रहे हैं, और इसी के साथ आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर नजर डालते चलें। ये विज्ञप्ति है तमागे के आसपास के इलाके जिनमें है मौसलमा कॉलोस और रॉयल रोड तमागे के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 1 जुलाई को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4:30 के बीच बिजली की सप्लाई बंद रहेगी, और प्लेनवियत के कुछ इलाके जिनमें है रू आली कलकत्ता इदगिस गुमानी और कुछ इलाके इमाम बुकस सुबदार के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 30 जून को दोपहर के 12:00 से लेकर दिन के 2:30 के बीच मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं, और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

0: मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लहरों पर रेडियो मॉरिशस का ये प्रसारण और सुबह का नजराना कार्यक्रम जो रोज चलता है आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। तो आइए आज के इस हसीन सफर की शुरुआत करते हैं चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शांति मुहाबिया। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जब इंसान अकेला चलना सीख जाता है, तब उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती है।

याद रखिए, अकेलापन कमजोर नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य को खुद की असली ताकत दिखाता है। इसलिए अकेले होने से मत डरिए।

भाई नियत चाहे जितनी अच्छी हो, दुनिया केवल दिखावा देखती है, पर दिखावा आप चाहे जितना अच्छा कर लो, पर कहते हैं ना ऊपर वाला बस आपकी नियत को देखता है। मिस मैरी का ये बहुत ही लाजवाब सा गीत हमने आपके लिए प्रस्तुत किया लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। और जी हाँ, 1957 के दौर का ये गाना था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके साथ इस गीत में उनका साथ दिया। और चलिए इसी के साथ, झलकियों के साथ बढ़ते हैं आगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। झलकियों में आपको ये भी बताते चले कि आज दिन भर में कौन कौन से प्रोग्राम रखे गए हैं खास आपके मनोरंजन के लिए रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रत्ना के साथ, और बिल्कुल 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों की ओर, और 8 बजे के तुरंत बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक अभिनेता के साथ जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिला दें, उन्हीं के बेहतरीन गानों को हम ज़रूर प्रस्तुत करेंगे एक छोटी सी मुलाकात के सेगमेंट में। 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे किरण जानकी की प्रस्तुति में।

भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए 9 बजे के समाचारों के साथ जुड़ेंगे और बेशक सुबह का नजराना कार्यक्रम 9 बजे तक चलेगा। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जाता है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और इसका सीधा प्रसारण MBC के तीसरे चैनल पर भी आप देख पाएंगे, साथ ही साथ इसे फॉलो कर पाएंगे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। इसी कार्यक्रम को पुनः से यानी दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और बेशक आपको ये भी याद दिला दें, ये कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी सुमिता सरकार। आज का ये कार्यक्रम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे पर आधारित रहेगा। इस कार्यक्रम के अतिथि होंगी ईशा बलदाऊ रघुनाथ जो डेप्यूटी हेड है SME मॉरिशस की। तो ज़रूर इस कार्यक्रम को आप सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी इस कार्यक्रम में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ 10 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बेशक 10 बजे के समाचारों के बाद मैं आपकी सेवा में पुनः उपस्थित रहूंगी जिसमें भक्ति धारा कार्यक्रम में भक्तिमय भजनों के साथ तनाव को दूर करेंगे, भक्तिमय वातावरण बंधा रहेगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे वेद सुधा का कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुदेश बद्री जी। हम और आप रहेंगे साथ बिल्कुल 11 बजे तक। 11 बजे के समाचारों के बाद आपके लिए विविध भाषाओं के कार्यक्रम सजाए जाएंगे जिसकी पहल होगी शम्मी फरोजा कार्यक्रम के साथ और ये कार्यक्रम सैयदा सुबाई द्वारा पेश किया जाएगा। 12 बजे वर्षा लेकर आएंगी तेलुगु का कार्यक्रम सौंदर्य लहरी। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया का साथ होगा मराठी गीतों में। 1 बजे RSC की प्रस्तुति में रहेगा तमिल भाषा का कार्यक्रम। 1:45 बजे अमिता के द्वारा आप सुन पाएंगे गुजराती गीतों का कार्यक्रम रंगारंग। 2:00 बजे डेविड की प्रस्तुति में मैंडरीन का कार्यक्रम चलेगा। 2:30 बजे आप ही का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद जिसे लेकर आएंगी रोशनी जो चलेगा शाम 4 बजे तक। 4 बजे पुनः आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम प्रस्तुत करता होंगी कलाईवानी। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच पुराने गीतों का सफर भूले बिसरे गीत जिसे सजाएंगी गिनीशा। शाम के 6 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन के साथ आगे बढ़ेंगे। 6:30 बजे पुनः विविध भाषाओं के कार्यक्रम को सजाया जाएगा होंग होंग के द्वारा। मैंडरीन के कार्यक्रम की शुरुआत होगी बिल्कुल समाचारों के बाद। 7 बजे युवरासन लेकर आएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में स्वरला वेदिका तेलुगु भाषा का ये कार्यक्रम होगा। 7:50 बजे पर श्री श्रावा की प्रस्तुति में गीत गंगा मराठी भाषा का कार्यक्रम चलेगा। 8:10 बजे पर भक्तिमय कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम जिसे सजाएंगी देवीना। 8:40 बजे पर निसार अख्तर की प्रस्तुति में महफिल शब उर्दू भाषा का ये कार्यक्रम चलेगा। 9:00 बजे से लेकर 11:00 बजे के बीच आप सुन सकते हैं भोजपुरी तड़का का कार्यक्रम जो न केवल रेडियो मॉरिशस पर सुनाई देगा पर साथ ही साथ रेडियो मनोरंजन पर भी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और बिल्कुल 11:00 बजे से 12:00 बजे के बीच एक बार फिर पुराने गीत है जी हाँ सुनहरे पल कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी नीतूषा। और 12:00 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ओवरनाइट प्लेलिस्ट सजाई जाएगी जिसे सजाएंगे हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट। ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों की। आपको ये भी याद दिला दे हमारी और आपकी भेंट पुनः होगी दिन के 2 बजे से 3 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल उड़ान की कहानी में हमारे साथ जुड़ेंगी नसरीन हुसैनी जो मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की सीनियर ऑफिसर हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान बनेंगी। तो ज़रूर उड़ान की कहानी में आप हमारा साथ दे सकते हैं और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मनोरंजन पर चलेगा 2:00 से 3:00 बजे के बीच। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पाएंगे। चलिए फिर रुख करते हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम की ओर जहां पर पुराने गीतों को सजाया जाएगा आपके लिए। और भाई कहते हैं ना चाहे जिंदगी जो भी हाल में हमें रखे हमारे दिल की आरजू कभी पूरी नहीं होती, सही कहा ना। चलिए इसी के साथ शारदा फिल्म का ये गाना हम लाए हैं मन्ना डे साहब की आवाज़ में।

ये तलाश है ख्याल, एक वहम का है जाल। ये तलाश है ख्याल, एक वहम का है जाल। झूठे सपनों के पीछे ना भाग रे, झूठे सपनों के

0: चाहे जिंदगी से कितना भी भाग ले।
1: हर शब्द कितना सही, मन्ना डे साहब की प्यारी से आवाज। 1957 के दौर का ये गाना था और बिल्कुल शारदा फिल्म से लिया हुआ ये गीत हमने आज के सिलेक्शन में रखा और आपको बस दिल लुभाने वाले ऐसे गाने हम सिलेक्ट करके लाते हैं जो आपकी सुबह को बिल्कुल तरोताजा कर दे। दोस्तों कहते हैं ना कि सभी से अच्छे से मिलने का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें उस व्यक्ति की कहां जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। कई बार रिश्ते तो टूट जाते हैं पर फिर लगते कि हाय बड़ी गलती कर दी तो रिश्ता तोड़ के, है ना? रिश्ते तोड़ने क्यों है, वही प्यार से जोड़े रखे। ये जो प्यार का गोंद है ना ये रिश्तों को बहुत मजबूती से जोड़ता है, पर ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ चलिए रंगों भरी रंगोली फिल्म का ये गाना आपके नाम करते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज में।

भाई, अभी तो ठंडी ठंडी छांव नहीं, मौसम ही ठंडा बना हुआ है। और इस वक्त हमसे बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई क्या गानों का सिलेक्शन है। भाई ये जो गाने हैं आपके लिए एक बूस्टर डोज का काम करे, हम तो यही चाहते हैं। और वैसे ये जो गाना हमने अभी चलाया CID फिल्म से लिया गया, आपको ज़रूर याद होगा 1956 के दौर का ये फिल्म का गाना रहा। और शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ इस फिल्म में नजर आए थे। देवानंद साहब साथ नजर आई थी, शकीला और वहीदा रहमान, ओपी नैयर साहब का संगीत निर्देशन रहा, मजरू सुल्तानपुरी और जान निसार अख्तर के बोल थे। और ये फिल्म, आपको ये भी हम बताते चले, वहीदा रहमान की डेब्यू फिल्म थी, राज खोसला द्वारा निर्देशित और गुरुदत्त द्वारा निर्मित फिल्म। बहुत ही लाजवाब मूवी। और भाई क्या कहे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना भी क्या लाजवाब जमाना था। फिल्में भले ब्लैक एंड व्हाइट थी पर जिंदगी रंगीन थी। और चलिए इसी के साथ एक और मजेदार रंगीन गीत के बाद बिल्कुल छोटी सी कहानी, छोटी सी बात आपका साथ देंगे इसके गीत के तुरंत बाद। और लता जी की प्यारी सी आवाज, फिल्म है राज हठ का ये गाना।

7:43 और मदर इंडिया का ये बहुत ही लाजवाब सा गीत रहा। और चलिए इसी के साथ बिल्कुल सुबह का नजराना कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके फेवरेट सेगमेंट के साथ, छोटी सी बात। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी में आजकल हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। हम कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, पर फिर भी मुस्कुराते थे। और आज के ज़माने में भाई सुविधाएं तो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं मुस्कुराना भूल चुके हैं। चलिए इसी पर एक छोटी सी कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं। और ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की, वो बहुत ही साधारण दिखता था, न महंगे कपड़े, न कोई खास पहचान, लेकिन उसकी एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। वो हर हाल में मुस्कुराता रहता था, चाहे परेशानी हो या थकान, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी फीकी नहीं पड़ती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया, भाई तुम्हारे पास ना तो पैसा है, ना धन है, ना बड़ी हैसियत है, ना बड़ी गाड़ी है, फिर भी तुम इतना खुश कैसे रहते हो, इतने मुस्कुराते कैसे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास वो है जो सबसे महंगा है, और ये है हमारी मुस्कुराहट। इसे पहनने के लिए किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता और इसे खोने का डर भी नहीं होता। धीरे धीरे उसकी मुस्कान लोगों के दिलों को छूने लगी। जहां वो जाता, वहां का माहौल बिल्कुल हल्का हो जाता। उदासी चेहरे बस खिल उठते और तनाव कम हो जाता। लोग समझ गए कि असली सुंदरता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि चेहरे की सच्ची मुस्कुराहट में होती है। उस दिन सबने जाना, मुस्कान सबसे सुंदर आभूषण है जो हर कोई इंसान जो पहन ले, बस वो दूसरों को भी खास बना देता है। पर इसे पहनने की हैसियत बिल्कुल होती तो सब में है, पर बहुत कम लोग इसे पहन पाते हैं। दोस्तों, आपको एक और राज की बात बताते हैं। ये जो मुस्कुराहट है ना, ये भले आपके चेहरे पर हो, पर इसकी रौनक, इसकी जो चमक है, वो दूसरों के चेहरे पर दिखाई देती है। और वो जो स्माइल होती है, नकली वाली नहीं, असली वाली पहना कीजिए। दाम बिल्कुल असली वाले के ही लगते हैं। और आज की ये छोटी सी कहानी अगर आपने सुनी है, आपको पसंद आई है, तो एक बार आईने के सामने जाकर हल्का सा मुस्कुरा के देखिएगा, आपका चेहरा सच में बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। और इस गहने को पूरे दिन पहनकर रखिए, एक दिन का ये मजा तो उठाइए, देखिए ये गहना कितना महंगा और कितना कीमती है। चलिए इसी के साथ आशा करते हैं ये छोटी सी कहानी, छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। और ये गाना

चलिए 7:50 और बिल्कुल इस गीत को हमने अधूरा छोड़ा है, पर थोड़ी देर में इस गीत को पूरा जरूर करेंगे और बिल्कुल हम आपको याद दिलाते चले लता जी, माफ कीजिएगा आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी आवाज में रखा हुआ ये गीत। और चलिए इसी के साथ डेडिकेशन टाइम, और यहाँ पर बहुत सारे प्यार भरे मैसेजेस, बहुत सारे प्यार भरे कॉल्स यहाँ पर आने लगे हैं। बहुत बहुत प्यार आप सभी को, इतना मेहनत करते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए, आपके वजह से ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आपके नामों को शामिल करते हैं। अमाला सुमारू जी हमारे साथ काठरबोन से जुड़ चुकी हैं, पति सूर्यदेव साथ है और प्यारे बेटे सुयश जो कनाडा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बिल्कुल छुट्टियाँ मनाने के लिए। आशा करते हैं माला जी आपकी भी छुट्टियाँ बहुत अच्छी होंगी उनके साथ। बिल्कुल आपकी प्यारी बहू आशा और छोटी सी गुड़िया आयुषी भी साथ जुड़ चुकी है। फ्लोरियाल से हमारा साथ दे रही हैं मधुरी जी। नवीन लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोजबेल से प्यारी पत्नी चित्रा के साथ। साथ हैं निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबक से, मॉडल बेस ललिता और धनराज चरण जी प्यारी बेटी स्वीटी के साथ। न्यू ग्रोव से जुड़े हुए हैं राज और अमृता ओबिलक, और घोंबुआ से हमेशा की तरह रमेश और प्रीति जी। नुवेल फ्रांस से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं गायत्री जी, और साथ है बेटे अजय, मामी कल्याणी मोहन मेबक से, आपकी प्यारी भाभी शकुंतला जो है मोताइलोंग से, आपकी प्यारी सखी गीता बाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके बेटे हैं शिवाजी, बहू श्वेता बाई, बेटी है सुधा बाई, प्यारी सी बिजवी बाई और दिया बाई, साथ है प्यारा सा मल्हार। वाकवा से शोभा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। 3 तारीख को यानी 3 जुलाई को आने वाले शुक्रवार को आप अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगी। चलिए एडवांस में आपको ढेर सारी बधाइयाँ आपको और आपके पति को, आपकी बेटियों की ओर से अनुषा और शर्वीना, साथ है अवनीश और अरनवी, सभी पूरन परिवार और आपकी प्यारी बहन प्रेमिला जयमंगल जो है मोची दासे, साथ है वीना जी और आपकी प्यारी सखी राधा बाल गोबिंद की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। पौधे मास से इस वक्त जुड़ी हुई हैं कालिंदी रामफल, आपको भी आज के गाने बेहद पसंद आए और खासकर जो सुबह मानस मोती के बाद जो गीत चला था, जी हाँ फिल्म, बहुत ही प्यारी सी फिल्म शिक्षा का ये गीत था चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ में, आपको ये गाना बहुत पसंद आया। बस आपके लिए गाने ऐसे ही चुनकर लाते हैं जो आपका दिन तरोताज़ा बना दें। घोंगुप से इस वक्त श्यामा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्यामा रघुनंदन साथ है, भाई जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, केशव और युधीश भी साथ जुड़ चुके हैं, और आपकी प्यारी सखियां वीना रामफल जो है तेगूर से और विश्वानी दुखी जो है कौजुमास से। प्यारी सी देवी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी मैसेज हम तक आ पहुंचा है। सरिता जी भी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं काठरबोन से, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग इस वक्त जल्दी जल्दी मैसेजेस भेज रहे हैं, चांदनी पुरुषोत्तम

हम जो इस वक्त ब्रिटानिया से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, 30 तारीख को आपके पति प्रीतम अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं सभी परिवार की ओर से। पत्नी चांदनी, साथ है बेटी यूषा, बेटा है रुद्र, सासू माँ है सीता, और बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, ये मैसेज पुराना मैसेज है। जी हाँ, हमने अभी अपडेटेड मैसेज देखा। चलिए कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और चांदनी जी, आप पुरुषोत्तम परिवार को बिलोंग करती हैं और पति प्रीतम बिल्कुल अपना जन्मदिन मना चुके हैं, और चौथी परिवार की ओर से और पुरुषोत्तम परिवार की ओर से उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयाँ। और आज के इस कार्यक्रम में भी हमने आपका नाम शामिल कर दिया, आपको खुशी हुई होगी। और ज़रूर यहाँ पर साथ देते रहिएगा। गाँव गोप से इस वक्त साथ दे रही हैं सुनीता जी, और उनके प्यारे भतीजे अनीश का जन्मदिन है, मामा गीता, पापा अजय, पुपू सुनीता, पुपू वीना, पुपू अमृता और पुपू विमला की ओर से बहुत सारा प्यार, और सभी कजिन्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर कौंदे मास से प्रेमिला सी गुलाम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और उनकी प्यारी बहन रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार से फ्लैग से हमारा साथ देती हैं। त्रियोले से अनसुया राम खिलावन भी हमारे साथ जुड़ी रहती है, और आपकी प्यारी भगिनी रेखा लक्ष्मण जो है वाकवा से, उनकी तीन प्यारी बेटियां दिव्या, दिशा और धीमा। रेखा जी, आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं, चलिए बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच, आप हमेशा साथ देती हैं इसके लिए। गौबुआ से शिवरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके प्यारे बच्चों का नाम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे। काटुबोन से सुधीर शर्मा सोनाही, बहू है रोशनी, साथ है शिरीष, शिखा और शिवान, और साथ दे रहे हैं उनके प्यारे बेटे राज और बहू आरती जो है गौबुआ से, यश, अंजलि और कबीर साथ जुड़े हुए हैं। शर्मिला सीचन, उनकी प्यारी बेटी, नातिन है उर्वशी रघुबा जो है काटुबोन से, प्यारी बहन कृष्ण कुमारी गौरी शंकर और आपकी प्यारी बेटी रत्ना, थैंक यू सो मच, आपने हमारा नाम भी जोड़ने के लिए बहुत ही आग्रह किया, बहुत बहुत प्यार आपको। और यहाँ पर उषा जी ब्रह्मस्थान से भी जुड़ चुकी हैं, इंदिरा लॉटन भी हमारा साथ दे रही हैं, उनका भी प्यारा मैसेज आ चुका है, मोडालविया से साथ दे रही हैं, क्लाविट से विजय बंधन और उनके सभी परिवार भी हमेशा साथ देते हैं, पत्नी रेखा, बहनें हैं चंदनी, बिंदु कुमारी और आपके सभी दोस्त जो काम से हमारा साथ देते हैं। गीता जी पोंफिया से साथ दे रही हैं, प्यारे पति रोहित और आपके सभी नाती पोतों का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हुए। मीला राम सामी हमारे साथ है, साथ दे रही हैं प्रेमा सन्यासी जो है सेंट जूलियन दुतमा से। अनीता लाल जी, आप भी हमारा साथ दे रही है, इतू गोगा और नागेश्वर परिवार के साथ मौ डालबिया से आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ग्रांड रिवर्स साउथ ईस्ट से है शीला जी, पति साजन के साथ मौ डालबिया से मीराबाई दमिया भी साथ दे रही हैं, सभी दमिया और पादिया परिवार का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, शीला बीमाना भी हमारे साथ है पालमा से। सूरज शर्मा सजादार जो हैं त्रियोले की ओर से, हाईलैंड से जुड़ी हुई हैं उषा जी कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ, और आपकी गुतनी का जन्मदिन कल यानी पहली तारीख को भी मनाएंगी जन्मदिन। नीला जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपके प्यारे बेटे संजीव की ओर से, बहू है विमला, आपकी गुतनी उषा की ओर से, खासकर निष्टी, इश्तीर और इश्तवीर जो है जुड़वा भाई, बिल्कुल पोतों की ओर से, और भाई सच्चिदानंद, भाभी हैं बेब, बहन गीता, साथ है बेटी नीता और दामाद सोहन की ओर से, वाशेगी की ओर से लीला जी भी साथ दे रही हैं, रोजबेल से शकुन भी जुड़ी हुई हैं एवा और शेन के साथ, क्योपिप से गीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गौबुआ से लीलो जी भी साथ दे रही हैं। खेत में काम करते करते कहती है रंगोली का गाना जैसे ही आपने चलाया, मतलब हाथों में जान आ गई और काम कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से रफ्तार पकड़ने लगा। चलिए, आप बहुत बहुत खुश हुई ये गाना सुनकर, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती है शीला जी को जो 29 तारीख को अपना जन्मदिन मना चुकी है यानी कल। बहुत सारा प्यार लीलो जी, गीता जी और किशोर भैया की ओर से शीला जी को जाता है। चलिए शीला जी, आपको भी ढेर सारा प्यार। मौका से सुदेवी जी भी जुड़ चुकी है अपने पति और बच्चों के साथ, किरण बारोट भी हमारा साथ दे रहे हैं लिस्पेरांस ट्रेबुशे से, उनकी प्यारी पत्नी नम्रता के साथ, बेटा है मयूर, बेटी नियति, साथ है दामाद सर्वेश और दो प्यारी नाती प्रियांश और लक्ष्य। नीता खेदनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सेंट जूलियन विलाज से, और आपके भतीजे का जन्मदिन रहा 28 तारीख को यानी रविवार को, दान को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हैं पुपू नीता, आपकी प्यारी पत्नी है माला, बेटा है अविश, बहू है आरती,
पोती है आराध्य

था और सभी खेदनी परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार। बॉम्बू से लक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अक्षय और आशनी के साथ, और इस वक्त विश्वानी दुमन भी हमारा साथ दे रही हैं वाकवा से। आपको भी कहेंगे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। तो चलिए, जितने लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ये गाना आपके नाम, और यही गाना हमें जोड़ेगा 8 बजे के समाचारों के साथ। तो चलिए मिलते हैं समाचारों के बाद एक छोटी सी मुलाकात में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजीर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। आज फिर से राज्यसभा के कार्य जारी रही। आज की बैठक में कई को महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हुई। सांसद लोग घरेलू हिंसा से जुड़ल कानून के और ही मजबूत बनावे और ये पैनल कोड के कुछ धारा में बदलाव से जुड़ल दू को बिल पर विचार करियन जा। एकरा अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 के तीसरा पढ़त भी हुई, जेकरा बाद बजट में घोषित कदम लागू करे के कानूनी रास्ता साफ हो जाए। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 गो सवाल पूछल जाए। ई में से 2 को सवाल पेंशन सुधार से जुड़ल रही। विपक्षी सांसद आद्रियन जुवाल पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कामकाज पर सवाल उठायन। ऊ ई भी जनल चाहियन कि अंतरिम रिपोर्ट देवे से आगे आयोग कितना बैठक लगैले बा। एकरा अलावा स्टीयरिंग कमिटी ऑन पेंशन रिफॉर्म, एमर्शस हवाई अड्डा ऑपरेशन स्ट्राइक और सेफ सिटी परियोजना पर भी सवाल पूछल जाए। वक्फ एक्ट में 85 बरिस बाद बदलाव के प्रस्ताव रखल गल बा। सरकार की कहना बाकी ई बदलाव से वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और ये पारदर्शी और ये प्रभावी बनावल जाए। ई विषय पर ही MBC 1 और ये MBC 7 पर विशेष कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा भइल। बोर्ड ऑफ वक्फ कमिश्नर्स के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन बोलन की मॉरिशस में अभी 539 वक्फ पंजीकृत बा। वो कहलन की वक्फ 3 तरह के होला, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक। उधर मंत्री शकील मोहम्मद कहलन की सभी पक्ष से सलाह मशवरा करल जाए। इस सिलसिला में बुधवार के उनकर दफ्तर में बैठक हुई। ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पत्रिक आस्यवादन कौचित्र कार्यक्रम में बजट 2026-2027 में घोषित फोटोवोल्टाइक पैनल्स पर 25% सब्सिडी के स्वागत करलन। वो ई भी कहलन कि CWA के बोर्ड अगस्त से पारिवारिक, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र खातिर पानी के शुल्क बढ़ावे पर ही काम करत बा। हालांकि घर परिवार पर ही बढ़ोतरी के असर नहीं पड़ी। जॉन मिक मॉर्टिंगेल मामला में SSO हवाई अड्डा पर नशीला पदार्थ मिलल शराब की 2 बोतल के साथ गिरफ्तार यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरिसोल्किना के मुकदमा की सुनवाई असाइजेस अदालत में जारी रहल। बचाव पक्ष दिवंगत जॉन मिक मॉर्टिंगेल के बयान अदालत में पेश करे की मांग कर ले बा। मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ अदालत के फैसला आवेली रोक देवल गल बा। अगला सुनवाई आज हुई। दूसर देश के खबर में जर्मनी में माँ और ये लड़का लोग के एगो केंद्र में गोलीबारी में 6 जना के मौत हो गल बा। पुलिस के अनुसार आरोपी अपन 3 महीना की बेटी के देखभाल से जुड़ल पारिवारिक विवाद के चलते ई केंद्र में पहुंचल रहल। कई गो लोग घायल भी हवन जा।

0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखे की मिलल। चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गल बा। पाराग्वे निर्धारित समय और अतिरिक्त समय में 1-1 के बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गल बा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ही ब्राजील के रोमांचक मुकाबला में जापान की 2-1 से हरा के अंतिम 16 में पहुंच गल बा। पहला हाफ में पिछड़े के बाद ब्राजील दूसरा हाफ में जोरदार वापसी करलक और इंजरी टाइम में विजयी गोल करके मुकाबला अपन नाम कर देलक। अब ओकर मुकाबला नोवे या आइवरी कोस्ट से हुई। तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार, हमनी के सुन ल जा। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: कालिमाय रोड रोशनुआ में 59 ईयर्स ओल्ड के श्री राजमोहन दुखिया गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2:30 बजे उन्हीं के घरे रोशनुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रोशनुआ के ही शमशान भूमि ले जावल जाए। बुलेल रोड लिनफत लेन मेलरोज में 79 ईयर्स ओल्ड के स्वसन जिजनेवों के ब्रिजलाल लक्ष्मण गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 12:30 बजे उनकर बेटा राज सिंह लक्ष्मण के घरे मेलरोज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताय ब्लॉश के शमशान भूमि ले जावल जाए। खुद जोफा बॉम्बू में 74 बरिस के स्वसन कातोजों के श्रीमती गोवर्धन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटी किरण मोहसर बबू के मकान से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिवेनो के शमशान भूमि ले जावल जाए। अवनी जनकनीदी वाकवा में 87 बरिस के 87 के कुवा दम्बल रामसामी गुजर गल हवन। पैदाइश राम कौपेन नायक। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा राजनैन रामसामी के घरे वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोमा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। खुद रॉयल बोबासमे 68 बरिस के यशवंत राव महादिया उ आगे खुद बासें कटरोबोन के निवासी रहलन। उनकर माटी आज दिन के 1:30 बजे शापेल ओंदों एलियनसन बोबासन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोमा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। ला शापेल रोड कौंजाब में 86 बरिस के 86 के बीबी जैतून मिरम। पैदाइश नाम मुंदो बक्स इंतकाल कर गल हवन। उनका जनाजा आज दिन के 10:30 बजे फजीर के 10:30 बजे उनकर बेटा फयाज मिरम के घरे कौंजाब से निकाल के दफनाए खातिर कौंजाब के कब्रिस्तान ले जावल जाए। एफ टू रेजिडेंस तायाक रिवेदिजोंगी में 82 बरिस के 90 के सियानजानी आपादू गुजर गल हवन। पैदाइश नाम गुरवादू। उनकर माटी आज दिन के 2:30 बजे उनकर बेटा मनोज अपातू के घरे एफ टू रेजिडेंस तायाक रिवेदिजोंगी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुलिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। गोल्डस्मिथ स्ट्रीट कॉम्बनुआ पेटित रिविया में 84 बरिस के 44 बरिस के 44 के नित्यानंद सिंह नायक हरे गुजर गल हवन। उनकर माटी गुरुवार 2 जुलाई के दिन के 1:30 बजे उनकर माँ तारा नायक हरे के मकान पिचित्रिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शिवहर के शमशान भूमि ले जावल जाए। ब्रांच रोड लालमाछी में 69 बरिस के 69 के पद्मावती बसावा गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के घरे लालमाछी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लालमाछी के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड आल्बियो में 92 ईयर्स ओल्ड के 92 बरिस के अहिल्या काली गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 10:30 बजे उनकर बेटा सुचित दुखिया के घरे आल्बियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड पुस्तफ्लाक में 71 बरिस के 71 के धनराज बोयहू गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी सुखमीन बोयहू के घरे पुस्तफाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पुस्तफ्लाक के शमशान भूमि ले जावल जाए। डिस्पेंसरी रोड

0: रियोली में त्रियोल में 88 बरिस के 88 के राणा प्रताप ताकोरी गुजरगल हवन ऊ आगे बैंक ऑफ मॉरिशस में मैनेजिंग डायरेक्टर के हैसियत से काम करत रलन। उनकर माटी आज दिन के 2:45 उन्हीं के घरे त्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तेमिनिस त्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए। Tribun Nebetu Vakwame, Sobariske, Santonke, Santi, Sawaram Gujargal Hawan Unkar Mati Ajdin Ki Ek Baje Unkar Bita Prem, Pat Chaman Ki Ghare Tribun Nebetu Vakwa Se Utha Ke Antim Sanskar Khatir Phoenix Ke Shamshan Bhumi Le Jawal Jai, School Lane La Rosa Me, Kian Bibariske 91 Anke, Celia Sanasi, Jagya Gujargal Hawan Unkar Mati Ajdin Ki Sadi, 8 Baje Aaj Parij Ke आज फजर के 8:30 लाहौजा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मारी जानी रोजबल के शमशान भूमि ले जावल जाए। सिबरत लेन फ्लोरियाल में 73 बरिस के 73 के मारी डेजिरे द्वारिका गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर पति ईश्वरलाल द्वारिका के घरे फ्लोरियाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर अली भैयों के शमशान भूमि ले जावल जाए। मारी जानी रोजबेल में 90 बरिस के 90 के धर्मावती राम दिन गुजरगल हवन पैदाइश राम राऊ उनकर माटी आज दिन के 12:30 उनके बेटे सुनील राम दिन के घरे मारी जानी रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मारी जानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड मोचीदा में 80 बरिस के 90 के शांतिबाई लक्सिमो गुजरगल हवन पैदाइश नाम तानु उनकर माटी आज फजर के 9:30 उनकर बेटा आत्माराम लक्सिमो के घरे रॉयल रोड मोचीदा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौदमास के शमशान भूमि ले जावल जाए। SSO लेन मोताबा में 75 बरिस के 75 के पुन्यासी सुकाही गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा सूरज सुकाही के घरे मोताबा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताबा के शमशान भूमि ले जावल जाए। खुतवाया लालमाती में 58 ईयर्स ओल्ड के 58 के 58 बरिस के ननकेश्वरनाथ बीजाधर गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 12:30 उनके भाई योगेंद्रनाथ बीजाधर के घरे रॉयल रोड लालमाची से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौदमास के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोक में रुबल परिवार लोगन संगे हमने सहानुभूति प्रकट करत हैं जा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
3: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ, रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ, रेडियो मॉरिशस पर।
4: सुबह का नजराना कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। अगर अभी आपने रेडियो ट्यून इन किया है तो जी हाँ, मंगलवार का दिन है एक छोटी सी मुलाकात, जहां पर हम एक अभिनेता या अभिनेत्री की बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और उन्हीं के गीतों की कुछ ऐसे मुखड़े हैं जो आपको सुनाते हैं और लाजवाब बनाते हैं सेगमेंट को। वैसे हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान के, जी हाँ, कपूर खानदान के एक ऐसे सुपुत्र की जिन्होंने 26 जून को अपना जन्मदिन मनाया। हम बात कर रहे हैं अर्जुन कपूर की, जी हाँ, 26 जून 1985 को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। और एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिल्में तो नहीं की उन्होंने, पर जितनी भी फिल्में की, लाजवाब फिल्में। सुरेंद्र कपूर के परिवार में जन्म हुआ। वे फिल्म निर्माता बॉनी कपूर और मोना शौरी के बेटे हैं। और वैसे आपको ये भी बताते चले, अर्जुन कपूर को 2014 से लेकर 2017 तक और 2019 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में शामिल किया गया। और इतना ही नहीं, बिल्कुल कपूर यानी अर्जुन कपूर ने अपनी करियर की शुरुआत निखिल अडवाणी और अपने पिता के प्रोडक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर के बतौर एक प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने शुरुआत की। और बाद में उन्होंने यशराज फिल्म्स की रोमांटिक मूवी इश्कज़ादे से एक्टिंग में डेब्यू किया। यानी ये फिल्म आई थी 2012 में और इस फिल्म में उनकी एंट्री हुई थी परिणीति चोपड़ा के साथ, और इसमें एक्टिंग में उन्होंने डेब्यू किया था। और ये फिल्म कमर्शियल रूप से सफल रही और उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ। और बेस्ट मेल डेब्यू का बिल्कुल जी सिने अवार्ड भी उन्हें मिला। अर्जुन कपूर को 2014 की फिल्मों में क्राइम एक्शन फिल्म गुंडे, और इस फिल्म में बिल्कुल दो एक्टर्स नज़र आए थे, एक थे अर्जुन कपूर और दूसरे थे रणवीर सिंह। और ये फिल्म बिल्कुल कॉमेडी ड्रामा से भरपूर रही। और चलिए इसी के साथ, जब इश्कज़ादे की बात छेड़ी है तो आज के इस कार्यक्रम में जैसे हमने बताया कि कुछ गीतों की जैसे आपको कुछ मुखड़े आपको सुनाते चलेंगे, तो चलिए इस फिल्म इश्कज़ादे का ये बहुत ही प्यारा सा मशहूर सा गाना आपके नाम करते हैं।

0: बिल्कुल परेशान तो वो हुए नहीं, क्योंकि उनकी जो पहली फिल्म थी इश्क ज़ादे ने बहुत ही अपने फैंस के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी। और इसी के साथ जैसे हमने बताया कि अर्जुन कपूर की फिल्म 2014 की क्राइम एक्शन मूवी गुंडे और रोमांटिक कॉमेडी मूवी टू स्टेट्स और कॉमेडी ड्रामा मूवी की एंड का 2016 में, और इन तीनों फिल्मों को एक के बाद एक सफलता मिलती गई। और साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक कॉमेडी की संदीप और पिंकी फरार मूवी के साथ 2021 में ये मूवी आई थी, और इस फिल्म के लिए भी उन्हें ढेर सारी तारीफें ही मिली।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: बिल्कुल, इस सफलता के बाद कई फिल्में कमर्शियल रूप से असफल भी रहीं और उनके करियर में गिरावट भी आई। हालांकि हाफ गर्लफ्रेंड 2017 और सिंघम अगेन इसके अपवाद रहे। और अभिनय के अलावा कपूर ने कई पुरस्कार समारोहों को भी मेजबानी दी है, और उन्होंने भारतीय रियलिटी टीवी श्रृंखला सीरीज फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 के 7वें सीजन की मेजबानी यानी होस्टिंग करके टेलीविजन में भी उन्होंने अपना कदम जमाया। वैसे उनकी जन्म की बात करें तो अर्जुन कपूर का जन्म बिल्कुल 26 जून को हुआ था 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में फिल्म प्रोड्यूसर बॉनी कपूर और एंटरप्रेन्योर मोना शौरी के घर उनका जन्म हुआ। और कपूर दोनों तरफ से पंजाबी मूल के हैं और वे फिल्म मेकर सुरेंद्र कपूर के पोते हैं। और कह सकते हैं कि भाई अनिल कपूर और संजय कपूर और प्रोड्यूसर संदीप मारवा के भतीजे हैं, और पूर्व एक्ट्रेस सोनम कपूर और एक्टर मोहित मारवा हर्षवर्धन

0: अर्जुन कपूर और प्रोड्यूसर रिया कपूर के कजन ब्रदर हैं। उनकी छोटी बहन अंशुला कपूर और एक्ट्रेस श्रीदेवी उनकी सौतेली माँ थी और उनकी दो सौतेली बहनें खुशी कपूर और जानवी कपूर। ये तो हुआ उनका फैमिली बैकग्राउंड। और जब उनके पिता उनकी माँ से अलग हुए थे, जब उनके हम व्यक्तिगत बात करें उनके फैमिली की, तो 11 साल के थे वे जब उनके मम्मी पापा अलग हुए। और एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके पिता की दूसरी शादी के बारे में पूछा गया तो कपूर ने कहा, जब हम बच्चे थे तो वो मुश्किल था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं।
1: एक छोटी सी मुलाकात
0: और बस उन्होंने यही सीखा लाइफ से कि कब तक शिकायत रखी जाए। जो सच है उसे जितना जल्दी स्वीकार कर लो, हिम्मत उतनी ही ज्यादा बढ़ती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतना ही हौसला भी मिलता है। और ये भी उन्होंने कहा था कि उतना वे मिलते नहीं थे अपने माता पिता के, अपने पिता के साथ। वैसे उनकी माँ का निधन 2012 में एक खतरनाक बीमारी से जूझते हुए हुआ। हालांकि 2018 में श्रीदेवी के निधन के बाद भी उनकी जो सौतेली बहनें हैं खुशी और जानवी के साथ, उनके रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए, ज़्यादा बेहतर हुए। और अर्जुन कपूर ने बॉनी कपूर की श्रीदेवी के साथ शादी को भी बहुत हद तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अर्जुन कपूर ने मुंबई के आर्य विद्या मंदिर स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई, जहां पर 11वीं कक्षा तक वे पढ़े हैं। और 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे फेल भी हो गए थे, क्योंकि उन दिनों में उनकी जो फैमिली परिस्थितियां थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और वे 12वीं की कक्षा भी ठीक से पूरी नहीं कर पाए थे। और किशोर अवस्था और 20 साल की उम्र के शुरुआती तौर में कपूर का जो वज़न था वो भी बढ़ गया था स्ट्रेस के कारण, और वे लगभग 140 किलो के हो गए थे। और बाद में उन्होंने कहा कि अपनी इस हालत की वजह से बेपरवाह और चिड़चिड़े और कम आत्मविश्वासी वाले वे होते जा रहे थे। वैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में अर्जुन कपूर की पहली नौकरी 2003 में निखिल अडवाणी की फिल्म कल हो न हो में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी। और उन्होंने अडवाणी की अगली फिल्म सलाम इश्क और ट्रिब्यूट टू लव 2007 में भी उनकी मदद की। और अपने पिता की दो फिल्मों में यानी नो एंट्री और वॉन्टेड में, यानी 2005 में आई थी नो एंट्री और वॉन्टेड जो आई थी 2009 में उन्होंने एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर काम भी किया था। और इसके बाद बॉनी कपूर ने भारत की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स के साथ उन्होंने हाथ मिलाए और उन्होंने फिल्म में और यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। चलिए जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो हमने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि उनकी फिल्म आई थी गुंडे, और गुंडे फिल्म में वे नज़र आए थे रणवीर सिंह के साथ, और साथ नज़र आई थी प्रियंका चोपड़ा। ये एक लव ट्रायंगल मूवी रही और इस फिल्म के भी बहुत ही मज़ेदार गाने में से एक गाना जो बहुत ही हिट हुआ था, बहुत ही पसंदीदा गीत था, तो चलिए इस गीत पर कुछ ठुमके हम भी मार लेते हैं।

टू स्टेट्स, और ये थी एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी जिसमें नजर आए थे वे आलिया भट्ट के साथ, और इस फिल्म में बिल्कुल उनकी मम्मी का रोल गया था अमृता सिंह ने, और साथ ही साथ रेवती भी इस फिल्म में बहुत समय के बाद नजर आई थी।

0: नहीं कुछ भी कह लो, एक्टिंग खून में तो है, बिकॉज इस फिल्म के हर एंगल का जो आप एक्सप्रेशन देख लीजिए अर्जुन कपूर का, अगर आपने ये फिल्म देखी है टू स्टेट्स, लाजवाब। यानी कहते हैं ना कि भाई वो एक्टिंग का जो कीड़ा है वो तो ऑलरेडी उनमें है, क्योंकि उनके पापा जो है एक्टिंग में, उनके जो चाचा थे वो भी एक्टिंग में, उनके बिल्कुल उनका आधा से ज़्यादा परिवार एक्टिंग के क्षेत्र में बिलोंग करता है। पर कहते हैं ना कि एक्टिंग के क्षेत्र में भले ही माता पिता एक्टिंग से जुड़े हो, ज़रूरी नहीं कि पुत्र या पुत्री भी उसी फील्ड में आगे बढ़ें।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ,
0: एंड डेफिनेटली अर्जुन कपूर की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी 26 जून को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। 41 ईयर्स के हो चुके हैं, 41 वर्षीय बिल्कुल अर्जुन कपूर की आज की ये कहानी है, ये मुलाकात। वैसे अर्जुन कपूर फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक है और चेल्सी एफसी के बड़े समर्थक होने के साथ साथ भारत के क्लब के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। अर्जुन कपूर कई ब्रांड और उत्पादों का प्रचार भी करते हैं।

और 2019 यानी 2019 में वित्तीय और तकनीकी दिक्कतों के कारण बंद होने से पहले ISL टीम FC पुणे सिटी के सहमालिक भी वे रह चुके हैं। इतना ही नहीं, फिलिप्स ने भी अपने कई सारे ब्रांड एम्बेसडर के लिए अर्जुन कपूर को घोषित किया और ये वो रणवीर सिंह के साथ फ्लाइंग मशीन और रॉयल स्टैग के साथ साथ ही उन्होंने हीरो साइकिल्स के भी लिए ब्रांड एम्बेसडर वे बने हैं और 2017 तक वे स्मिथ एंड जॉन्स केचप मसालों और सॉस और साथ ही साथ एडमायरल इंग्लैंड स्पोर्ट्स वेयर और स्पोर्ट्स शूज का भी वे प्रचार करते हैं। भाई उन्होंने उनकी जब कहते हैं ना कि किसी भी लाजवाब किसी भी एक मॉडल या फिर एक फिल्मी हस्ती द्वारा किसी ब्रांड को जब लॉन्च किया जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो दुगनी हो जाती है। और बेशक इन्होंने भी कई सारे ऐसे ब्रांड्स को लॉन्च किया और अर्जुन कपूर ने भी ऐसे ब्रांड को एक अलग स्तर दिया, एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया। और इतना ही नहीं, की एंड का फिल्म की जब हम बात करते हैं तो इस फिल्म में कपूर एंड कपूर यानी कह सकते हैं कि अर्जुन कपूर नज़र आए थे करीना कपूर के साथ। और हालांकि इस फिल्म में उनकी जो उम्र बताई गई है करीना कपूर की उम्र उनसे वाकई में कुछ ज़्यादा ही है और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही हटकर रही, बहुत ही डिफरेंट रही और कह सकते हैं कि समाज में एक ऐसी स्टोरी स्थापित करना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रोल्स चेंज किए हैं जहाँ पर करीना कपूर है एक बिजनेस वुमन और अर्जुन कपूर उनसे शादी करते हैं क्योंकि उन्हें बनना है अपनी मम्मी जैसा, बिल्कुल घर संभालना है, खाना बनाना है और बस घर पर रहना है क्योंकि वे घर को सुंदर बनाते हैं क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो महिलाएं घर पर रहती हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यही स्टोरी दर्शाई है इस फिल्म ने। तो चलिए इस गीत का ये गाना भी आपको सुनाते हैं और इस फिल्म में इनका नाम था कबीर, कबीर बन गया मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: भाई जो खाना बनाए, जो घर का काम करे, जो घर को संभाले, ऐसा मुंडा किसे पसंद नहीं आएगा। और बस यही कहानी थी कि एंड का
1: एक छोटी सी मुलाकात
0: बन गए वे मोस्ट वांटेड मुंडा। और मैं आपको बताती चलूँ, इस फिल्म में उनको लॉन्च किया गया था खाने के पदार्थों के लिए ब्रांडेड, यानी तेल वगैरह का जो उन्होंने ब्रांडिंग किया था, बहुत ही लाजवाब। पर इस फिल्म की जो हकीकत है ये भी बहुत ही लाजवाब रही, जहाँ पर कुछ ऐसे क्लैशेस शुरू हो जाते हैं पति और पत्नी के बीच, जहाँ पर ये पता चलता है कि पैसे जब रिश्तों के बीच में आ जाते हैं तो कैसे दूरियां बढ़ती हैं। और वैसे आपको ये भी बताते चले कि इतना ही नहीं, उन्होंने इतनी सारी लाजवाब मूवीज़ की है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, और इस फिल्म में वे नज़र आए थे श्रद्धा कपूर के साथ, जहां पर वे एक वर्नैक्युलर मीडियम से आगे निकलते हैं और उनकी दोस्ती होती है श्रद्धा कपूर के साथ, जो कि एकदम मॉडर्न टिप टॉप लड़की थी, और बस प्यार कर बैठते हैं। पर प्यार की

जैसे उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की और बहुत ही लाजवाब फिल्में, जैसे नमस्ते लंदन में, नमस्ते इंग्लैंड में वे नज़र आए थे, जीरो फिल्म में भी उन्होंने एक छोटा सा अपीयरेंस किया था, और ये फिल्म थी 2018 में। 2021 में संदीप और पिंकी फरार, सरदार का ग्रैंडसन, भूत पुलिस, साथ ही साथ 2022 में एक विलन रिटर्न्स, 2023 में कुत्ते द लेडी किलर, और 2024 में नेगेटिव रोल में वे नज़र आए थे सिंघम अगेन, साथ ही साथ 2025 में मेरे हस्बैंड की बीवी, और इतना ही नहीं कई सारे उन्होंने टीवी शोज भी किए थे, जैसे आईफा अवार्ड्स की होस्टिंग उन्होंने करी है, साथ ही साथ खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में भी उन्होंने होस्टिंग की थी, साथ ही साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी वे नज़र आए थे, डांस+6 में भी वे गेस्ट अपियरेंस में नज़र आए थे, और फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स और सिनेमा मरते दम तक में भी उन्होंने इस डॉक्यू सीरीज में काम किया था, और इतना ही नहीं 2021 में भी दिल है दीवाना फिल्म में वे नजर आए थे। हालांकि ये एक कह सकते हैं कि वीडियो क्लिप रही गीत की, और बहुत ही प्यारा सा इसमें उनका अपीयरेंस रहा, और फिल्म पानीपत में भी वे नजर आए थे 2019 में। तो ये थे अर्जुन कपूर, और चलिए एक विलन रिटर्न्स जिसमें पहले फिल्म में नेगेटिव रोल में रितेश देशमुख नज़र आए थे एज अ विलन, और इसी फिल्म का जब सीक्वल बना तो उस फिल्म में अर्जुन कपूर को एज अ नेगेटिव परफॉर्मेंस यानी नेगेटिव रोल में उनको लिया गया था एक विलन रिटर्न्स। और इसी फिल्म के गीत के साथ आज के इस सेगमेंट को यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आशा करते हैं कि अर्जुन कपूर की कहानी, ये दिलचस्प जर्नी बहुत ही बढ़िया रही होगी। तो चलिए इस गीत को लेते हैं, ये गाना रहेगा आखिरी गाना इस सेगमेंट का, और इसके बाद हम जुड़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट के साथ जो है हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।

0: एक विलन रिटर्न्स से लिया हुआ ये गीत और इसी गीत के साथ आज का ये सेगमेंट बस यहीं समाप्त होता है। चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं किरण जानकी के साथ, जो लाजवाब जानकारियों के साथ हमारी धरोहर में हमेशा हमारा साथ निभाती हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: 819 kHz.
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। पहला जुलाई के हर बरिस नेशनल पोस्टल डे मनावल जाला। ई दिन मनावे के प्रथा अमेरिका से आयल बा, जहाँ वॉशिंगटन राज्य में साल 1997 में कर्मचारी लोग के सम्मान में ई दिन के शुरुआत करा गया रहा। धीरे धीरे ई दुनिया के कितने देश में मनावल जाए लगल। ई दिन दुनिया भर में डाक कर्मचारी द्वारा करल जाए होला सेवा के सम्मान में मनावल जाला। संचार के क्षेत्र में पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस पूरा दुनिया में अपन अहम भूमिका निभैले हवन सा। जब संचार के अन्य साधन नहीं रहल, तब डाक सेवा ही दुनिया भर में इंसान के बीच संवाद के अहम जरिया रहल। आज भले ही स्मार्टफोन्स के जरिए व्हाट्सएप या फिर जूम, गूगल मीट जैसन आधुनिक माध्यम चलालबा, वीडियो कॉलिंग के जरिए संवाद खातिर और इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स वगैरह के जरिए जस्ती काम तुरंत ही हो जाला, फिर भी डाक सेवा आज भी जरूरी बा। और डाक कर्मी लोग उतना ही तन्मयता से काम करे लंजा जितना कि आगे, और सब इंसान, सब व्यक्ति तक उलोक के चिट्ठी पहुँचावे लंजा। पार्सल और मनी ऑर्डर के रूप में ई आज बहुत जरूरी बन गल बा, खास तौर पर जब हमें ऑनलाइन शॉपिंग के जमाना में जियत है जा। दूर दूर से दूसर देश तक पार्सल पहुँचावे में पोस्ट ऑफिस के बहुत बड़ा भूमिका बा। अब जब नियुक्ति पत्र के बात करब, पासपोर्ट के बात करब और एकर साथ साथ पोस्ट कार्ड और कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज जुनबा, तो ई पोस्टमैन यानी कि डाकिया ही एगो जगह तक दूसरा जगह में पहुँचावेलन सा। जब दुनिया कोरोना के सामना करत रहल और सब पोस्ट ऑफिस बंद हो गल रहल, तो हमने के एहसास होल कि पोस्ट ऑफिस के हमने के जीवन में कितना बड़ा भूमिका भा। और मॉरिशस में जाने ला कि हमने के पोस्ट ऑफिस कितना बड़ा भूमिका निभैले रहल ई अंतराल में, और आज भी पोस्ट ऑफिस के भूमिका उतना ही जरूरी बा जितना कि एकर से आगे रहल। आप सब डाक कर्मचारी लोग के ई दिन पर बहुत बहुत शुभकामना। कल फिर मिलब जा। धन्यवाद। नमस्ते।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।

तो चला इसी के साथ किरण जानकी के बहुत बहुत धन्यवाद देवव झा। और जैसे वो खत पर हमने के बहुत बढ़िया बात समझल है, एगो जमाना रहल जब खत के बहुत महत्व रहल समाज में, आज भी है समाप्त नहीं होल बाटे। और चला इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा। और एगो बढ़िया भोजपुरी गीत सुनब जा राकेश कप के आवाज़ में, और है ये गीत हमने के जोड़ी 9 बजे के समाचारों के साथ। तो भेटाप सा अब 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। थोड़ी ही देर में आप सुनवाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम, जहां पर सुमिता सरकार आपका साथ देंगी। और ये कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर, MBC के तीसरे चैनल पर और रेडियो मॉरिशस फेसबुक पेज पर आप इसे देख पाएंगे। इसी के साथ एंजॉय कीजिए ये गाना, मिलते हैं 10 बजे के समाचारों के बाद।

0: अमर जान।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
2: मंगलवार 30 जून घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद। नमस्कार सभी को। राज्यसभा के कार्य आज फिर से शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों को और मजबूत बनाने तथा पीनल कोड की कुछ धाराओं में संशोधन से संबंधित दो विधेयकों पर विचार करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल पाएगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद अद्रियन जुवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल खड़े करेंगे। वे जानना चाहते हैं कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें लगाई हैं। अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे। बजट 2026-2027 में 85 वर्षों बाद वक्फ एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जहां इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुप्रशासन को मजबूत करना है। इस विषय पर कल एमबीसी 1 और एमबीसी सैट पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई थी। कार्यक्रम में श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कहा कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ के प्रबंधन को और प्रभावी बनाना है। और ऊर्जा एवं सार्वजनिक सेवाओं के मंत्री पत्रिक आसियावादन कल ग्रांड सीत्र कार्यक्रम के अतिथि थे। उन्होंने बजट 2026-2027 में घोषित फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाने पर 25% सब्सिडी का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि CWA का बोर्ड अगस्त महीने से व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पानी के शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने वाला है। विदेश स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें जर्मनी में माताओं और बच्चों के केंद्र में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी 3 महीने की बेटी की देखभाल को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण केंद्र पहुंचा था। घटना में कई अन्य लोग घायल बताए जाते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 30 जून हमारे सभी श्रोता और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें इस प्रोग्राम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण जो है वो हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप लाइव देख पा रहे हैं हमारे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर। आपको ये भी याद दिला दें इसी प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सुपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं और आज एक विशेष विषय हम लेकर आए हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच इस समय डेप्यूटी हेड है SME मॉरिशस की, मिसिस एशा बालदेवा रघुनाथ जी, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। एशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, आपका धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद। और चलिए अगर हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो अपने आप में किसी भी राष्ट्र के सफलता में ये अपना बड़ा योगदान देता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना छोटा मोटा व्यवसाय हो, अपना बिजनेस हो, लेकिन उसे किस तरीके से किया जाता है, एक प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज इस पर हमें ज़्यादा जानकारी देंगी ईशा जी। तो सबसे पहले तो ईशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे कब मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: तो हम ये MSME डे हर साल देश में और स्वदेश में भी मनाते हैं 27 जून को, जो कि पिछले शनिवार को था। लेकिन ये दिन हम सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं करते हैं, तो इसका अवसर हम एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद भी लेते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों तक उसका महत्व पहुंचा सकें और लोगों को प्रोत्साहित कर सकें कि वो MSMEs को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। उनका योगदान हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनको सम्मान देना बहुत ही आवश्यक बन जाता है, इसलिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। हम और लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि कैसे उनके परिश्रम और साहस के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को और प्रोग्रेस मिली है, हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ रही है और इससे हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। और एक तरफ हम देखें तो MSMEs हमारी इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी इकोनॉमी का सपोर्ट करती हैं और बाकी लोगों को रोज़गारी देती हैं और इसमें हमारी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल, MSMEs की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ देश के लिए ही फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, जो भी व्यक्ति जो है इन सभी उद्योगों से जुड़ता है वो उनकी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। हर एक की जीवन शैली बेहतर होती है क्योंकि हर कोई चाहता है अपना कुछ ना कुछ एक छोटा व्यवसाय हो, क्योंकि हर कोई नौकरी पेशे की दुनिया में तो जुड़ा हुआ नहीं होता है। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि उनका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, वो अपने लिए कुछ करे, अपना नाम बनाए। तो यदि हम MSME के बात करें तो इस वर्ष का थीम क्या है?
2: तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये थीम का मतलब इंग्लिश में बता दूं। इस साल का थीम है एनहेंसिंग द रोल ऑफ MSMEs एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमें MSMEs को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जहां तक वो विकास की ओर जा पाएँ, और वो भी सिर्फ विकास नहीं बल्कि सतत विकास की ओर जा सके, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा सके और वो नवाचार को अपना सके, अपने मेथोडोलॉजी में, अपने व्यवहार में नवाचार को बढ़ा सके ताकि वो और सशक्त बन सके। और इसमें हमारी भूमिका है और उनकी भी भूमिका है, क्योंकि हमें नई सोच को आगे लाना पड़ेगा, हमारे जो टेक्निक हैं उसको बदलना पड़ेगा। और जैसे कि अभी डिजिटल रिवॉल्यूशन है, हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में पर्यावरण का भी एक इफ़ेक्ट होता है और इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो कैसे हम इन छोटे उद्योगों का को एम्पावर कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस साल का थीम इसी के लगभग है।
1: बिल्कुल, MSMEs की बात करें तो समय के साथ जो है व्यवसाय करने का तरीका काफ़ी बदल गया है। आजकल कनेक्टिविटी के जरिए हम सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों के कई अन्य अन्य जो है पहलुओं से जुड़ रहे हैं, कई नई चीज़ें आ रही है। तो ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम MSMEs की बात करते हैं तो वो देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपना योगदान देते हैं।
2: तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान तो बहुत ही मजबूत है हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण है। जैसे हम देख सकते हैं कि कितने MSMEs हैं हमारे देश में, वो हमें प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और वे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारी GDP को बढ़ा रही हैं, तो उनका महत्व ज़्यादा ही है और वे रोज़गार बढ़ाते हैं, नवाचार बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ उत्पादन भी बढ़ती हैं, तो हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ाने के लिए हमें उन उद्योगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में फॉरेन करेंसी लाते हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस जैसे सीमित नहीं है। हमें आगे जाके उनकी और सहायता करनी चाहिए और उनकी ग्रोथ को बढ़ावा और देना चाहिए।
1: धन्यवाद। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, MSMEs की बात करते हैं तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसमें क्या क्या अंतर है, किस तरह से जो है इसमें अंतर आता है और किस तरह से इनमें फ़र्क है?
0: ओके, तो हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम को कैसे कैटेगोराइज करते हैं हमारे देश में? हम माइक्रो एंटरप्राइज उसे कहते हैं जिसका वार्षिक कारोबार यानी कि एनुअल टर्नओवर 10 मिलियन के नीचे है। Okay. अगर उसका वार्षिक कारोबार 10 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक है तो उसे हम एक स्मॉल एंटरप्राइज कहते हैं, और अगर वो मीडियम एंटरप्राइज है तो उसका वार्षिक कारोबार 30 से लेकर 100 मिलियन तक जाता है। तो यही है बेसिक डिफरेंस, जैसे कि हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को विभाजित करते हैं, लेकिन ये हमारे देश की लोग के हिसाब हैं। अन्य देशों में हम ना सिर्फ कारोबार को ध्यान में रख कर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी करते हैं। तो जैसे कि हम इंडिया की बात लेते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और टर्नओवर दोनों को ध्यान रखते हुए MSME की क्लासिफिकेशन होती है। Okay. लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एनुअल टर्नओवर पर बेस होता है।
1: ओके, यानी कि हर एक देश की अपनी एक नीति होती है, वो इस हिसाब से कार्य करता है। एक हमारा सवाल है आपसे, अगर हम MSMEs की बात करते तो ज़्यादा महिलाएँ आपसे जुड़ती हैं या ज़्यादा पुरुष आपसे जुड़ते हैं?
0: हमारे स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं, लेकिन दोनों में बैलेंस है।
1: Okay.
0: दोनों में बैलेंस है। अगर हम कह सकते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज को लेते हैं तो आपकी ये अपेक्षा है कि ज़्यादा महिलाएं होंगी।
1: Okay.
0: लेकिन MSMEs की दुनिया सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है।
1: Okay.
0: तो पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, और MSMEs की हमारी एक परसेप्शन है कि वो सिर्फ छोटे व्यापारों तक सीमित हैं। वो छोटे व्यापार तक सीमित नहीं है, जैसे कि अभी हमने कहा कि वो 0 से लेके 100 मिलियन तक जाता है, तो वो सीमित नहीं है। अगर कोई 90 मिलियन का बिजनेस कर रहा है तो वो एक SME ही कहा जाता है। तो फिर महिलाओं का उद्योग बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, लेकिन हम देखें तो हमारे यहाँ के अनुदान दिए जाते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स के अनुसार उनका योगदान 64% के लगभग हैं वीमेन बेनिफिशरीज। और अगर आप देखें मेन बेनिफिशरीज तो इसके आगे होगा, कुछ कुछ डिफरेंस हैं, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि और वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं कि वो लीडरशिप का रोल ले सकें और फिर अपने खुद का बिजनेस कर सकें, या फिर एक MSME के साथ काम कर रहे हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें भी उनका कोई ना कोई रोल है।
1: ओके, अभी आपने जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम को इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया, तो इज़ इट कि कोई ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस है जो माइक्रो में ही जाता है या स्मॉल में जाता है या मीडियम में जाता है, या हर एक तरह का बिजनेस तीनों में आ जाता है, तीनों कैटेगरी में आ जाता है?
0: हर एक तरह का बिजनेस तीनों में आ जाता है, इसके अनुसार कोई विभाजित नहीं हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो अनुदान जो ग्रांट दिए जाते हैं, जो सपोर्ट स्कीम्स

0: दिए जाते हैं वो प्योर ट्रेडिंग को नहीं दिया जाता है. तो हम प्योर ट्रेडिंग या रेंटल एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता है. अगर हम कोई सामान विदेश से लेके यहाँ बेच रहे हैं तो फिर इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है. तो हम अपने सपोर्ट स्कीम्स इन व्यापारों को नहीं देते, नहीं देते. तो हम वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, लोकल वैल्यू एडिशन. तो कोई भी क्षेत्र हो या वो कृषि क्षेत्र हो या वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या वो सर्विसेज सेक्टर में हो, आईटी डिजिटल सर्विसेज या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो, तो वो हम एमएसएमई में ही कैटेगराइज करते हैं.
1: ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ बना ही रहा है तो वही एसएमई से जुड़ते हैं. आप कोई एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी मतलब कि एसएमई से जुड़ सकते हैं.
0: हाँ,
1: किसी तरह की सर्विस, फिर चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड से. एक और सवाल हमारा आपसे ये होगा ईशा जी कि किस तरह के व्यवसाय ज़्यादा जुड़ते हैं आपसे, कोई एग्जाम्पल आप अगर देना चाहे, कोई कॉमन एग्जाम्पल्स.
0: ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के भी होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो बहुत ही ज़्यादा एंटरप्राइज हैं जो हमारे साथ काम करते हैं. वो गारमेंट में मेकिंग में हो सकते हैं, वे फूड प्रोसेसिंग में हो सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण सेक्टर को अलग रखते हुए हमारे सर्विसेज सेक्टर को भी हम सपोर्ट करते हैं. तो वो सीमित नहीं है एक ही सेक्टर के अनुसार. सभी सेक्टर खुले हुए हैं हमारे सर्विस के लिए, तो वे हमारे साथ काम करते हैं.
1: राइट. तो चलिए, जितने श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे पर है जो 27 जून को मनाया गया, और इस पर ज़्यादा जानकारी हमें ईशा जी दे रही है. अगर आप भी अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आज का जो विषय है उस पर अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो बेशक 4028085 है नंबर हमारा, आप हमें कॉल कर सकते हैं. अभी के लिए एक छोटे से गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं.

0: चलिए एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है। आज की चर्चा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं इस समय, और MSME मीडियम्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे पर हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ ईशा जी SME से जुड़ी हुई है। ईशा जी, अगला सवाल हमारा आपसे होगा, MSME की बात करें तो MSME को बढ़ावा देने के लिए SME मॉरिशस कौन कौन सी योजनाओं पर काम करती हैं, किस प्रकार की योजनाएं वो चलाती हैं?
1: तो SME मॉरिशस विभिन्न योजनाएं चलाती हैं उनकी सहायता के लिए। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, उनकी क्षमता को निर्माण करने में मदद करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जागरूकता अभियान कराते हैं और कार्यशाला का आयोजन भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अनुदान भी हैं, सपोर्ट स्कीम्स भी हैं जिसका लाभ MSMEs ले सकते हैं। इनका लाभ वो कैसे ले सकते हैं? हमारे पास ग्रांट्स हैं, अनुदान हैं, जिनकी सहायता से वो आगे बढ़ सकते हैं। उनको और डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। हमारे पास जो पहला स्कीम है वो BTS स्कीम का है, जो कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम का है। अगर इस स्कीम को का प्रयोग आप करना चाहते हैं, आप एक कंसल्टेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एंटरप्राइज में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि हम ले सकते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड रॉ मटेरियल्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, और उसका प्रयोग हम अच्छे तरीके से कैसे करें। हम डेली उस व्यापार में हैं, हमें छोटे छोटे जो विजिबल इम्प्रूवमेंट्स हैं हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हमें कंसल्टेंट एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज को ले लें तो वो हमें गाइड कर सकते हैं और इस स्कीम से हम उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और स्कीम है जो वो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्कीम है। इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा SMEs करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने SMEs में इनोवेशन लाना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। हमें आजकल मजदूर की कमी हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा SMEs में, तो वे ज़्यादातर ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। तो उस तरफ कैसे जा पाएँ वो हम उनको एनेबल करते हैं कि वो अपने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें और वो प्रोडक्टिव इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने देखा है स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वो इस स्कीम का मैक्सिमम लाभ उठा रहे हैं और इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है SMEs पर। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई, वो इक्विपमेंट ले सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और स्कीम भी है जो है मार्केट रेडिनेस स्कीम। ये स्कीम उनकी पहुंच को बढ़ाती हैं, वे ज़्यादा विपणन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने देश में लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। एक एक उदाहरण ले लूँ तो कोई अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है या फिर सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना चाहे तो वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार अपने ग्राहक तक फिजिकली नहीं जाते, वो सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स के ज़रिए उन तक पहुंच जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने घर को छोड़कर किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए बाहर जाएं, तो फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सब कुछ आ ही जाता है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हम आपकी सहायता करते हैं, या फिर अगर कोई भी बिजनेस हो उसको एक ERP सिस्टम डालना है, इन्वेंटरी स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना है, तो इसमें भी हम उनका उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा एक ग्रीनिंग सपोर्ट स्कीम भी है, हरी ऊर्जा जिसे कहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं हम, जैसे कि एनर्जी क्राइसिस हैं अभी, रिन्यूएबल सिस्टम्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, तो उसमें हम उनकी सहायता करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी सोलर PV पैनल्स डाल रहे हैं ताकि उनकी बिजली की जो कंसम्पशन है वो घट जाए। और एक और स्कीम जो है वो एग्री बिजनेस स्कीम है, ये कृषि क्षेत्र के व्यापार को बहुत सूट करता है, क्योंकि अगर वो एक एग्री इम्प्लीमेंट ले रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं या फिर अपने एग्रीकल्चर को और बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो हमारे साथ स्कीम्स हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। और ये अनुदान हमें रिटर्न बैक नहीं करना चाहिए, तो ये ग्रांट सिस्टम है और ये 250,000 तक जाता है। तो हमारी एक कैलकुलेशन होती है कि 80% ऑफ द कंट्रीब्यूशन is ours and then 20% it is for the SME.
0: जी, जितनी भी स्कीम्स की आपने बात की ईशा जी, तो क्या इसके मीट करने के लिए कोई क्राइटेरिया है? क्योंकि आपने कहा एज अ जो है ग्रांट दिया जाता है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा जो भी व्यक्ति एंटरप्राइज से जुड़ना चाहता है, तो कोई बेसिक क्राइटेरिया जिसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं?
1: जी हाँ, तो एक बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उनको प्योर ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने प्रीवियसली मेंशन किया है कि ये सेक्टर हम एक्सक्लूड करते हैं हमारे अनुदान में।

0: कुछ लेकर आप बेच रहे हैं या कुछ, मतलब कि कुछ ऐसा जो आप बना रहे हैं,
1: हाँ,
0: ना
1: हाँ,
0: थोड़ा सा इस पर अगर जानकारी आप दे तो अच्छा होगा। शायद कुछ ऐसे नए लोग होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, शायद वो भी अपना बिजनेस जो है डेवलप करना चाहते हैं या बिल्ड करना चाहते हैं, तो अगर वो डिफरेंस को समझ पाए तो शायद उनके लिए भी बेहतर होगा।
1: ओके, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि प्योर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, इसमें हम वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर सर्विस सेक्टर का हो, ये सब लागू होता है जैसे हमने अभी कहा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनको सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को अबाइड करना चाहिए, उनका एक SME सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फिर SME सर्टिफिकेट के लिए वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं SME रजिस्ट्रेशन यूनिट के साथ जो कि पोर्ट लुइस में है उनका ऑफिस, या फिर आप उन्हें 2020050 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। SME रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका बिजनेस सेटअप हो गया और आपकी एनुअल टर्नओवर जो है आप MRA को डिक्लेयर करते हैं, उसका एक कॉपी हमारे यहाँ आपको भेजना होगा। और ये भी है कि कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, तो हम उसका CSG रिटर्न के हिसाब से बेस करते हैं। तो हमारी जो स्कीम है वो दो मेन क्राइटेरिया होती हैं, आपकी वार्षिक कारोबार और कितने आदमी आपके साथ काम करते हैं, तो ये दोनों बेसिक हैं, एनुअल टर्नओवर और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं कि आप कितने ग्रांट के हकदार हैं और आप में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से होता है। और फिर हमारे अफसर हैं जो कि देश भर में साइट विजिट्स करते हैं, आपके यहाँ आएंगे और देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, अगर वैल्यू एडिशन है, अगर इस इक्विपमेंट की ज़रूरत है आपको, और अगर ये इक्विपमेंट सही है या नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं, या फिर अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई और सेक्टर, तो आप वो अफसर आपको सही मार्गदर्शन भी दे सकता है।
0: तो जितने भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, नए लोग जो बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि शायद बहुत सी महिलाएं होंगी जो एक समय आता है कि सोचते कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, या कोई पुरुष जो भी है, एक साइड बिज़नेस हर कोई चाहता है, तो किस तरह के बिज़नेस जो है अगर मॉरिशियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम वो करना चाहते हैं, तो किस तरह के बिज़नेस से वो जुड़ सकते हैं जिसका ज़्यादा डिमांड है मार्केट में? कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल आप कॉमन एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कुछ उदाहरण आप दे सकती हैं?
1: तो आजकल अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है मार्केट में वो फूड प्रोसेसिंग का हो रहा है। हम भी कोई भी अपने घर में खाना नहीं पका रहा है, या वीकेंड पर सभी बाहर खाने जा रहे हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द मेन सेक्टर्स विच इज़ डेवलपिंग राइट नाउ। लेकिन इसके अलावा और भी सेक्टर हैं जो, जैसे हम कह सकते हैं निर्माण सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ टेकिंग अ गुड लीप। और इसके अलावा भी हम सीमित नहीं हो सकते हैं एक ही सेक्टर तक, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग के तक सीमित नहीं है, सर्विस सेक्टर भी आजकल बहुत ही आगे चल रही हैं। हमारे जो सर्विस हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन सब पर निर्भर होता है। तो आजकल के युवा इसमें बहुत ही इन्वेस्टेड हैं और नई सोच ला रहे हैं, तो हमारे जो बिजनेस हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं और नवाचार ला रहे हैं इसमें।
0: धन्यवाद। चलिए अब हम आपसे जानना चाहेंगे MSME के दिवस के अवसर पर ऐसे तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ या कौन कौन से प्रोग्राम्स आपने आयोजन किए या अभी भी करें। जैसे आपने कहा कि ये जो दिन है सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं होता है मनाने के लिए, और ऐसे ही हमेशा ही आप लोग जो है ऐसे एक्टिविटीज़ कैरी करते हैं जहाँ पर फेयर्स लगते हैं, जहाँ पर लोगों को जो है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का, बेचने का अवसर मिलता है। तो खासकर MSME इस दिन की बात करें तो इस दिन को ध्यान में रखते हुए किस तरह की एक्टिविटीज़ का आप लोग आयोजन कर रहे हैं?
1: तो पिछले सप्ताह हमने कुछ एक्टिविटीज़ का आयोजन किया था, जैसे कि हमने एक डिजिटल मार्केटिंग की कार्यशाला की और इसमें लोगों को सिखाया गया कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें, व्हाट्सएप बिजनेस, कैनवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का प्रयोग अच्छी तरह से कैसे करें ताकि वो अपना व्यापार को और आगे बढ़ा सकें। और ये कार्यशाला सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस तक सीमित नहीं था, अगर कोई अपना स्टार्टअप बनाना चाहे या फिर कोई युवा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षण के अलावा एक प्रमाण पत्र वितरण समारोह भी हुआ था, जैसे हम बंदियों को भी रीइंसर्शन के लिए प्रमोट करते हैं। तो उनका ये उद्यमीशील सोच उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, हाँ, हम मदद करते हैं उनका। ये एक सकारात्मक योजन जो हमने किया, योजना किया था हमने, ताकि हम उनकी मदद कर सके कि वो बाहर आके कुछ प्रोडक्टिव कर सके और समाज की के लिए कुछ, उनके हित में कुछ कर सके और अपने लिए भी कुछ कर सके। इसके अलावा हमने एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया था, जो कि 94 पार्टिसिपेंट्स के लगभग उनके साथ हुआ था। उनको एक व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनके लिए डिफरेंट मेजर्स को एक्सप्लेन किया गया कि वो कैसे इस अवसर की पहचान करें, व्यवसाय की योजना कैसे करें और कौन सी सहायता उनके लिए अवेलेबल है और इन योजनाओं का वे लाभ उठा सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं। हमने उनको ये दर्शाया और ये सब एक्टिविटीज़ मॉरीशस तक सीमित नहीं रही, रोड्रिग्स में भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ किए हैं युवाओं के साथ या फिर एस्टैब्लिश्ड एसएमईज़ के साथ, ताकि हम औरों को प्रेरित कर सके, उनके सक्सेस स्टोरीज़ को शोकेस कर सके और लोग उनकी क्षमता को पहचानें और जो भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने हमारी इकोनॉमी को दी है उनको हम सराहना दें। तो उद्यमिता का जागरूकता कार्यक्रम हुआ था, प्रशिक्षण हुआ था रोड्रिग्स में भी, युवाओं के साथ एक प्रमाण पत्र का आयोजन भी किया गया और उन्हें प्रेरित किया गया।
0: धन्यवाद। अभी के समय डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रभाव है, हमारे जीवन पर तो है ही, साथ ही सभी व्यवसायों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। हर एक व्यक्ति जो व्यवसाय से जुड़ा है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा आजकल बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उस ऑर्डर को हैंडल करना है, पेमेंट प्रोसेस वगैरह। तो आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी का एमएसएमई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसको जो है किस तरह से और हम बेहतर बना सकते हैं?
1: तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रभाव आजकल तो सीमित ही नहीं है, उसका प्रभाव तो हर एक क्षेत्र में ही है
0: जी।
1: जैसे कि हमने अभी कहा कि ग्राहकों तक पहुंचना एक चैलेंज है और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम इसका सुलह कर सकते हैं
0: जी।
1: हम ग्राहकों को ई कॉमर्स के द्वारा से पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका एक खतरा भी है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन रिव्यूज़ भी हैं, ऑनलाइन रिव्यूज़ भी हैं, आपके बिजनेस को कोई लाभ भी पहुंचा सकता है, कोई हानि भी पहुंचा सकता है, तो इसका सही उपयोग भी करना चाहिए हमें।
0: तो इस तरह के ट्रेनिंग्स भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं?
1: हाँ, हमारे यहाँ वो डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स था वो ये कवर करता है, इस विषय में हम बात करते हैं और कैसे इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग का सही उपयोग करते हैं या फिर ई कॉमर्स को कैसे चलाना चाहिए, तो इस पर हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो डिजिटल सॉल्यूशंस भी उपलब्ध हैं आजकल, अगर आप अपने व्यापार को और आगे

0: ले जाना चाहते हैं, अगर आप समय की बचत करना चाहते हैं, तो आप एक ऑनलाइन सॉल्यूशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी मदद करेगा अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स ट्रैक करने में, ये आपको इन्वेंटरी ट्रैक करने में मदद करेगा, और इसमें समय की बचत होती है। तो आपके जो कार्यकर है वो आप किसी और काम में लगा सकते हैं। और इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही लीप ले रहा है, तो इसका उपयोग भी MSMEs ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो डिजिटल सॉल्यूशंस सीमित नहीं है, जैसे कि हमने कहा, और इसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे SMEs पर, और इसका लाभ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग भी करना चाहिए।
1: बिल्कुल, व्यवसाय की अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो है MSME में क्या योगदान है, किस तरह से जो है वो अपना योगदान दे रही है, किस तरह से वो आप लोगों से जुड़ रही है?
0: महिलाओं का योगदान सिर्फ उस तक सीमित नहीं है जहाँ पर वो खुद का एक बिजनेस करा सके। तो एक वीमेन लेड एंटरप्राइज है जो वो अकेली काम कर रही हैं, उस तक सीमित नहीं है। आजकल बहुत ही एंटरप्राइज हैं जहाँ पर एक वीमेन लेड एंटरप्राइज है जो कि वो 5 या 6 या फिर 10 लोगों को काम दे रही हैं, तो वो आत्मनिर्भरता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो वो अगर 10 लोगों को काम दे रही है तो फिर 10 हाउस होल्ड चला भी रही हैं, तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हमने कहा था 64% ऑफ वीमेन बेनिफिशरीज हमारे पास हैं, हमारे स्कीम्स से वे लाभ लेती हैं, और इससे हम देखते हैं कि वे बहुत ही एम्पावर हो रही हैं। और ये काम यहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि हमें और भी आगे जाना है, तो हमें वीमेन लेड एंटरप्राइज को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो हमारे समाज में सकारात्मक
1: बदलाव ला सके।
0: हाँ, बदलाव ला सके।
1: तो चलिए, ये तो बात थी महिलाओं की। आजकल स्टार्टअप ये टर्म बहुत ही पॉपुलर हो गया है, अगर हम बिज़नेस की दुनिया की बात करें, और स्टार्टअप ये टर्म हमारे युवाओं से बहुत जुड़ रहा है। बहुत से युवा जो है पढ़ाई ख़त्म करके अपना बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं, नौकरी के बारे में तो सोचते ही है, लेकिन डिजिटल युग में आजकल स्टार्टअप का जो है एक ट्रेंड सा बन गया है। और युवाओं की अगर हम बात करें तो किस तरह से युवा जो है MSME के इस क्षेत्र में जो है रुचि दिखा रहे हैं?
0: युवाओं की रुचि तो बहुत है MSMEs में। जैसे कि हम कहते हैं कि वो अपने खुद के बॉस होना चाहते हैं, किसी के साथ काम नहीं करना चाहते। मगर ये माइंडसेट भी बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक MSME के साथ काम कर रहे हैं तो आप हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रही हैं, और आपके लिए भी लाभ हैं, युवाओं के भी लिए लाभ हैं, क्योंकि एक MSME के साथ काम करते हुए वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो एक आप बड़े एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं तो आपकी जो है नौकरी एक ही चीज़ तक सीमित है, लेकिन अगर आप एक MSME के साथ काम करें तो आपको सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो युवाओं के पास नवाचार हैं, नए आइडियाज़ हैं जो वो ला सकते हैं, और उनकी ये आधुनिक सोच हमारे व्यवसाय करने के तरीके बदल सकता है। तो ये नई तकनीक जो वे अपना रहे हैं वो बहुत कुछ बदल सकते हैं, हमारे काम के तरीके बदल सकते हैं,
1: काम करने के तरीके बदल सकते हैं,
0: या फिर वे डिजिटल सॉल्यूशंस ला सकते हैं। वो सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, वे ऑनलाइन मार्केटिंग हमसे बेहतर जानते हैं, और जो भी हैं MSMEs के, जैसे अगर मेरी एक MSME है तो मेरी युवा, मेरे बच्चे वो बिज़नेस को आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं अपने नए विचार के

0: साथ और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकते हैं।
1: चलिए, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो किस तरह के नए नए स्टार्टअप्स जो है आपके पास आते हैं? मतलब कि बहुत से लोग होते होंगे ना जो बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आपके पास आते हैं। अभी तो डिजिटल युग है, समय बदल रहा है, नई चीज़ें आ रही है, तो किस तरह का नयापन आप इस स्टार्टअप में देख रही है और किस तरह के जो है नए जो है चीज़ें मार्केट में आ रही हैं जो शायद पहले आज से कुछ सालों पहले की

0: अभी तो सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें हम अनेक प्रकार के सर्विस दे सकते हैं, या फिर वो डिजिटल सॉल्यूशंस के हो, वो सॉल्यूशन हम देश के लिए बना सकते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेच सकते हैं। तो वो AI सॉल्यूशंस भी हैं, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस भी हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं अभी हमारे सेक्टर में। या फिर हम देख सकते हैं कि जो आपने कहा अभी कैंडल मेकिंग, ये सब हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए ताकि वो और वैल्यू एडिंग हो इसमें। हम डिफरेंट, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, लेकिन इसमें हमें एक यूनिक सेलिंग पॉइंट को ऐड करना चाहिए। अगर आप आज एक नए आइडिया के साथ आ गए, तो कल कोई आपके आइडिया को कॉपी कर जाएगा, तो फिर इस बिजनेस में कंपटीशन की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर रोज़ होता है। लेकिन आपके बिजनेस में कोई ऐसा एक USP होना चाहिए जिसको कोई कॉपी ना कर सके, तभी आपकी बिजनेस सस्टेनेबल होगी और आपको लाभ होगा,
1: एक यूनिकनेस भी होगी आपके बिजनेस में,
0: और आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस से सेटिस्फैक्शन मिलती हैं, तो वे आपके पास आएंगे हैं और रेफरल भी करेंगे, किसी और को भी बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट्स या रिव्यूज अच्छी हैं, तो वे आपके पास आएंगे।
1: चलिए, आप हमसे जानना चाहेंगे कि क्या युवा आपसे जुड़ रहे हैं बिज़नेस को लेकर, मतलब कि अभी से कुछ समय पहले की बात करें और अभी के युवाओं की बात करें, तो आपको किस तरह का जो है बदलाव नज़र आ रहा है?
0: युवाएं बहुत ही प्रेरित हैं MSME से। अगर हम पिछले ट्रेंड को देखें, तो युवाएं ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ नौकरी करना चाहते हैं, स्टेबल इनकम लाना चाहते हैं, लेकिन ये माइंडसेट थोड़ा बहुत बदल रही है, क्योंकि युवाओं को अपने आप ही से अपने बलबूते पर कुछ करना चाहिए, ये इच्छा है उनमें, आगे बढ़ने की इच्छा है, बदलाव लाने की इच्छा है, और अपने नवाचार से वे सोच बदलना चाहते हैं। तो ये इंक्रीसिंग ट्रेंड है युवाओं में, इसको हम झुकला नहीं सकते, लेकिन हमें ये भी अपनाना चाहिए कि ये सोच भी अपनाना चाहिए कि MSME का सेक्टर है वो सिर्फ ब्राइट ही नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चैलेंजेस भी हैं। अगर आप परिश्रम ना करें, अगर ये एक ईजी आसान रास्ता नहीं है, इसमें आपको परिश्रम लाना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा,
1: मतलब कि आपको जो है प्रयास करते रहना चाहिए।
0: हाँ, और आपको ये फिक्र भी रहती है कि आपको अपनी ही सैलरी का प्रभाव करना पड़ेगा, लेकिन का आयोजन करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने एम्प्लॉयज की भी चिंता होती है, आपको एंड ऑफ मंथ उनकी भी सैलरी बनानी पड़ेगी।
1: अगर MSME के बारे में कहे, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना वो कर रही है अभी के समय में, क्योंकि चैलेंजेस तो ऑब्वियसली हमेशा से ही रही है, लेकिन डिजिटल युग में जो है चैलेंजेस भी नए हैं, और उन चैलेंजेस के जो सॉल्यूशंस है वो भी अपने आप में अलग है, तो इसे आप किस तरह से हैंडल करते हैं?
0: अभी हम देखें तो मेन चैलेंज ये है कि जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, बढ़ते कॉस्ट हैं, बढ़ते दाम हैं, सभी का बढ़ता हुआ दाम है, और हमारे एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारी एक मेजर डिसएडवांटेज है, और ये एक चुनौती है जो MSMEs को सामना, जिसका सामना करना पड़ता है। और वह इसका सामना कैसे कर सकते हैं, ये एक सही मार्गदर्शन के द्वारा, या फिर उनका माइंडसेट भी सही होना चाहिए। इन चुनौतियों का सामना कैसे करें, अगर हम कहें कि ये एक चैलेंज है और मैं हार मान जाऊँगा, तो फिर वे कुछ नहीं कर सकते। अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो हम इन चुनौतियों को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वे अवसर में बदल सकते हैं। जैसे कि एक चुनौती है ग्राहकों तक

0: पहुंचना, एक MSME के लिए डिफ़िकल्ट होता है ग्राहक तक पहुंचना, लेकिन ये कैसे आसान हो जाता है, जैसे हम कि हमने कहा अभी डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने ग्राहक तक पहुंच सकते हैं बिना आप किसी फिजिकल मूवमेंट के। लेकिन कंपटीटर्स हैं, प्रतिबंधी हैं इस मार्केट में, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके प्रतिबंधी रोज़ होंगे, तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूनिक करना होगा और आपको नई तकनीक भी अपनाना होगा।
1: बिल्कुल। और अगर इस समय जितने श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पर वो आपको कॉल कर सकते हैं या कोई एड्रेस है जहाँ पर वो आकर आपसे मिल सकते हैं, तो अगर ये सारी जानकारी आप उन्हें दें तो?
0: तो SME मॉरिशस के 5 ऑफिस हैं, हमारा मेन ऑफिस कोरोमंडल में है, इंडस्ट्रियल जोन में है, वहाँ तक आप हम तक पहुँच सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमारा वेबसाइट है smemu.com या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 2020040 पर। okay. या फिर आप हमारे डिफरेंट ऑफिस तक पहुँच सकते हैं जो कि पोर्ट लुइस में है, बिल्लिया में है, रोजबेल में है और रोड्रिक्स में भी एक ऑफिस है जहाँ आप हम तक पहुँच सकते हैं, और हमारे अफसर के भी कॉन्टैक्ट नंबर हमारी वेबसाइट पर है, आप उनको अपनी जियोग्राफी के हिसाब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे के तहत इतनी सारी जानकारियाँ दी। कोई अपना बिजनेस अगर छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है तो किस तरह से वो शुरू कर सकता है, किस तरह से आप लोगों से जुड़ सकता है और किस तरह की सहायता आप प्रदान करते हैं, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए धन्यवाद। आपको हम धन्यवाद देंगे और साथ ही SME मॉरिशस को भी आज के इस कार्यक्रम में आपके योगदान के लिए। आज के लिए बस इतना ही, जितने श्रोता जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से आपने लाभ जरूर उठाया होगा। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर रितेश मोहबिया, साथ में हमारे साथ यूसुफ और बानो का भी सहयोग मिला। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द हमारी आपकी भेंट फिर होगी। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से और शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय 10 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं 10 बजे के समाचारों के साथ।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। राज्यसभा के कार्य आज फिर शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने तथा पिनल कोड यानी दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन से संबंधित दो विधेयकों पर विचार करेंगी। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद अद्रियन जुवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें की। अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे। इसके अलावा मॉरिशस हवाई अड्डे, ऑपरेशन स्ट्राइक और सेफ सिटी परियोजना से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री से सवाल किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ वकफ कमिश्नर्स के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन ने बताया कि मॉरिशस में इस समय 539 वकफ पंजीकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वकफ 3 प्रकार के होते हैं, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक। वहीं आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि सभी पक्षों से व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा ताकि सभी सुझावों पर ध्यान दिया जा सके और लोगों की चिंताओं का समाधान हो। इसी सिलसिले में बुधवार को उनके कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। जॉन मिक मार्टिंगेल मामले में एसएसआर हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थ मिले शराब की 2 बोतलों के साथ गिरफ्तार यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरेसोल्किना के मुकदमे की सुनवाई कल असाइजस कोर्ट में जारी रही। बचाव पक्ष ने दिवंगत जॉन मिक मार्टिंगेल के बयान अदालत में पेश किए जाने की मांग की है। इस बीच मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ अदालत के फैसले तक स्थगित कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई आज होगी। और विदेश में मोनाको में रुई रेवेरों पे लुई फ्रोला स्थित एक आवासीय इमारत में हुए विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में बोल्ट और छड़ों वाले एक विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया गया था और इसे संभावित आतंकवादी हमला मानकर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध को फ्रांस की सीमा की ओर भागते हुए देखा गया है। घटनास्थल पर 100 से अधिक पुलिस और आपातकालीन कर्मी तैनात किए गए हैं और राहत कार्य जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: समय स्टूडियो की घड़ी में 10:04 होने जा रहे हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन पा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ आप सभी की सेवा में उपस्थित हो चुकी है रत्ना। हमारा सब प्रेम करजोड़ बंधन स्वीकार करें। से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज के इस भक्तिधारा कार्यक्रम के अंतर्गत 10:15 तक आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत। जनों के साथ आज की इस यात्रा को हम शांतिमय भक्तिमय बनाएंगे और आज के इस कार्यक्रम का आइए श्री गणेश करते हैं इस प्रथम गणेश भजन द्वारा।

श्रोताओं, चिंता की घड़ी परीक्षा की घड़ी होती है और चिंता की घड़ी में ही हमारे व्यक्तित्व की सही पहचान होती है। चिंताओं में या चिंताओं की घड़ियों में भी अगर हमारा मन हृदय प्रभु चिंतन में लगा हुआ है तो इस बात का ये आश्वासन है कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। किसी भी परिस्थिति में जब चिंता हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो मन को प्रभु चिंतन में लगाइए। केवल यही वो रास्ता है जहां पर आपका मन आपको सही मार्ग दिखाता है। आइए श्रोताओं, इसी के साथ वेद सुधा कार्यक्रम के साथ जुड़ने का समय हो चला है और आचार्य सुदेश बद्री जी को सुनते हैं इस कार्यक्रम में।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ॐ उभाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च माम पुनीः विश्वतः। इस जगत

मैं वास्तव में पूर्णतया सब ओर से वही महान शुद्ध पवित्र हो सकता है जो उस दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले सबके जनक परमपिता परमेश्वर की साक्षी में उसकी प्रेरणा के अनुसार उसके आदेश उपदेश और निर्देश के अनुसार जगत में सदा पवित्र वैदिक ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशमान बनाकर तदनुसार ज्ञान पूर्वक पवित्र श्रेष्ठ यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते रहते हैं। ओम यदि दिवा यदि नक्तमेनांसि चक्रिमावयम् वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चन्त्वं हसः। मनुष्यों को चाहिए कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी उनके हृदय में पाप में प्रवृत्त होने की वृत्ति उत्पन्न हो, वे धैर्य से उसके संबंध में अपने भीतर विराजमान सर्वांतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा को सुने और वेदोपदेशों को पढ़ें, सुनें और तदनुसार ही आचरण करें। ओम यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनांसि चक्रमावयम् सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चन्त्वं हसः। मनुष्यों को चाहिए कि सूर्य के समान जिस प्रभु ने सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों के हितार्थ जिस वेद ज्ञान का प्रकाश किया है, उस वेद ज्ञान के प्रकाश में सदा वर्तमान रहते हुए हम जागते सोते सदा पाप अपराधों से दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचते रहें। ओम यद्ग्रामे यदन्रण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यच्छुद्रो ओदयधर्ये यदेनश्चक्रमावयं यदेकस्याधिधर्मणि तस्यावयजनमसि। हे प्रभु, जो ग्राम अरण्य सभा मन आदि इंद्रिय सेवक स्वामी किसी एक के कर्तव्य पालन करने आदि में हम पाप करते हैं, उसको आप ही सदा दूर करने वाला है। ओम शांति शांति।

भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय श्रोताओं, मानव सभ्यता के इतिहास में यदि किसी एक वैदिक मंत्र ने संपूर्ण विश्व के चिंतन, आध्यात्मिकता, नैतिकता तथा ज्ञान परंपरा को सर्वाधिक प्रभावित किया है तो वह निसंदेह गायत्री मंत्र है। यह केवल एक प्रार्थना नहीं अपितु संपूर्ण वैदिक दर्शन का सार है। इस मंत्र में ईश्वर का स्वरूप, मनुष्य का उद्देश्य, ज्ञान की आवश्यकता, बुद्धि की पवित्रता, जीवन की दिशा तथा संपूर्ण मानवता के कल्याण का महान संदेश निहित है। यही कारण है कि महर्षियों ने इसे वेदमाता, मंत्रराज तथा समस्त वैदिक ज्ञान का हृदय कहा है। श्रोताओं, इस मंत्र का नियमित मनन एवं चिंतन मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुर्बलता से सामर्थ्य की ओर, अशांति से शांति की ओर तथा मृत्यु के भय से अमृतमय जीवन की ओर अग्रसर करता है। गायत्री मंत्र का मूल स्रोत ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में भी प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह किसी संप्रदाय या विशेष परंपरा का मंत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण वैदिक संस्कृति का सार्वभौम मंत्र है। महर्षि विश्वामित्र इस मंत्र के ऋषि हैं, गायत्री इसका छंद है तथा सविता परमेश्वर इसकी देवता है। यहाँ देवता का अर्थ किसी सीमित देव प्रतिमा से नहीं, बल्कि उस परम दिव्य सत्ता से है जो समस्त जगत को प्रकाशित, प्रेरित एवं संचालित करती है। श्रोताओं, वैदिक परंपरा में मंत्रों का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। प्रत्येक मंत्र मनुष्य के अंतःकरण का परिष्कार करता है तथा उसके विचार, व्यवहार और चरित्र को उत्कृष्ट बनाता है। गायत्री मंत्र इसी दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है, क्योंकि यह मंत्र से धन, ऐश्वर्य, विजय अथवा सांसारिक सुख की याचना नहीं कराता, बल्कि वह बुद्धि के प्रकाश की याचना कराता है। संसार की सभी उपलब्धियां बुद्धि पर निर्भर हैं। यदि बुद्धि शुद्ध है तो मनुष्य उचित निर्णय करेगा, यदि बुद्धि दूषित है तो वही ज्ञान, शक्ति और संपत्ति उसके पतन का कारण बन सकती है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने संपूर्ण जीवन का केंद्र बुद्धि की पवित्रता को माना है। श्रोताओं, गायत्री मंत्र का प्रारंभ ओम से होता है। वैदिक साहित्य में ओम को प्रणव, उद्गीत, एकाक्षर, ब्रह्म तथा परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद उद्घोष करता है कि संपूर्ण वेदों का सार ओम में निहित है। महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात परमेश्वर का वाचक नाम प्रणव अर्थात ओम है। श्रोताओं, जब साधक श्रद्धा एवं एकाग्रता से ओम का उच्चारण करता है, तब उसका चित्त बाह्य विक्षेपों से हटकर परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि किसी श्रेष्ठ आदर्श पर निरंतर ध्यान करने से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व इस सत्य का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने साधना का प्रारंभ ओम से किया।
इसके पश्चात

भागवत मंत्र में भू भुवः स्वः का उच्चारण होता है। इन्हें महावृत्तियां कहा जाता है। सामान्यतः लोग इन्हें केवल तीन लोकों के नाम समझते हैं, किंतु वैदिक दृष्टि में इसका अर्थ अत्यंत व्यापक है। भू उस परमेश्वर का सूचक है जो संपूर्ण प्राणियों का जीवन आधार है, जो सबको अस्तित्व प्रदान करता है, जो सबको धारण करता है, वही भू है। जैसे पृथ्वी समस्त प्राणियों का भार धारण करती है, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण विश्व का आधार है। मनुष्य जब भू का स्मरण करता है, तब वह अनुभव करता है कि उसका वास्तविक आश्रय धन, परिवार अथवा सत्ता नहीं है, बल्कि परमेश्वर है। श्रोताओं, भुवा का अर्थ है वह जो दुखों का नाश करने वाला है। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से दुख, भय, चिंता, मोह अथवा अशांति से पीड़ित है। इन सब का वास्तविक समाधान परमात्मा के ज्ञान में है। जब मनुष्य सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तब उसके जीवन के अधिकांश दुख स्वतः समाप्त होने लगते हैं। अतः भुवः परमात्मा की उस कृपामयी शक्ति का परिचारक है जो जीव को दुखों से मुक्त करती है। श्रोतागण, स्वः का अर्थ है परम आनंद स्वरूप ईश्वर। संसार के सभी सुख क्षणित हैं। धन, यश, पद, भोग, सौंदर्य तथा भौतिक उपलब्धियां समय के साथ नष्ट हो जाती है, किंतु परमात्मा से प्राप्त होने वाला आत्मिक आनंद शाश्वत होता है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार कहते हैं कि वास्तविक आनंद केवल ब्रह्म ज्ञान में है। गायत्री मंत्र साधक को इसी आनंद की ओर ले जाता है। इन तीनों महावृत्तियां का संयुक्त अर्थ यह है कि उस परमात्मा का ध्यान करें जो समस्त जीवन का आधार है, जो दुखों का विनाशक है तथा जो परम आनंद स्वरूप है। इस प्रकार मंत्र का आरंभ ही साधक को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का स्मरण करा देता है। श्रोताओं, तत् का अर्थ है उस परम सत्य जो इंद्रियों की सीमा से परे है, किंतु सर्वत्र विद्यमान है। उपनिषदों में तत् शब्द का प्रयोग परम ब्रह्म के लिए हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा अनंत है। सवितुः शब्द अर्थात सविता से बना है। इसकी धातु सु से है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, प्रेरित करना तथा गतिमान करना। अतः सविता वह है जो संपूर्ण जगत का उत्पादक, पालक और प्रेरक है। यहां सविता का अर्थ केवल दृश्य सूर्य नहीं है। सूर्य स्वयं भी ईश्वर की व्यवस्था के अधीन कार्य करता है। अतः यहां सविता से अभिप्राय उस परमेश्वर से है जिसने सूर्य सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है तथा जो समस्त सृष्टि को नियम पूर्वक संचालित करता है। श्रोताओं, अब वरेण्यन शब्द पर विचार करते हैं। वरेण्यम अर्थात जो वरण करने योग्य हो, जिसे जीवन का सर्वोच्च आदर्श बनाया जाए। मनुष्य जीवन में अनेक वस्तुओं का चयन करता है। कोई धन को चुनता है, कोई पद को, कोई प्रसिद्धि को, कोई इंद्र सुख को, किंतु गायत्री मंत्र कहता है कि इन सब में सर्वोच्च चयन परमात्मा का होना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना

0: लेता है तब उसके सभी निर्णय धर्मानुकूल होने लगते हैं, उसके विचार पवित्र होने लगते हैं, उसका चरित्र दृढ़ होता है तथा उसका जीवन समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। श्रोताओं, गायत्री मंत्र का यह प्रथम भाग हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक आधार परमेश्वर है, वही दुखों का निवारक है, वही परम आनंद का स्रोत है और वही ऐसा सर्वोच्च आदर्श है जिसे प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जब तक मनुष्य का लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां रहता है तब तक उसका जीवन बाह्य सफलता के बाद भी भीतर से रिक्त रहता है, परंतु जब उसका लक्ष्य परम सत्य बन जाता है तब उसके व्यक्तित्व में ज्ञान, करुणा, धैर्य, संयम, परिश्रम और सेवा जैसे दिव्य गुण स्वतः विकसित होने लगते हैं। यही गायत्री मंत्र का वास्तविक वैदिक संदेश है। श्रोताओं, गायत्री मंत्र संपूर्ण स्वरूप यह स्पष्ट करता है कि वैदिक धर्म का मूल आधार कर्मकांड नहीं अपितु ज्ञान, विवेक, चरित्र तथा आत्मोन्नति है। श्रोताओं, गायत्री मंत्र केवल वैदिक संस्कृति का एक मंत्र नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का प्रकाश स्तंभ है। इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, दर्शन है, नैतिकता है, अध्यात्म है, मनोविज्ञान है और लोक मंगल की सार्वभौमिक भावना है। यह मनुष्य को सिखाता है कि जीवन की वास्तविक सफलता धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि शुद्ध बुद्धि, सत्यनिष्ठ चरित्र, निष्काम सेवा, धर्मानुकूल कर्म और परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा में है। जो व्यक्ति इस मंत्र के अर्थ को समझकर अपने जीवन में धारण करता है उसका व्यक्तित्व तेजस्वी, विचार उदात्त, चरित्र निष्कलंक और जीवन लोकहितकारी बन जाता है। यही मंत्र का परम उद्देश्य है, यही वैदिक ऋषियों का संदेश है। आइए इस मंत्र का हम अभ्यास करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा। आपने सुना, आप सभी को आभार है। एक और कार्यक्रम को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 11:15 बज रहे हैं और भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मंगलवार का दिन है और हनुमान चालीसा का श्रवण करते हुए भगवान हनुमान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें बल दे, बुद्धि दे, सही मार्गदर्शन करें, मन में शांति सदैव बनी रहे, दूसरों के कल्याण की कामना हम सदैव करते रहें। श्रोताओं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अतीत नहीं बदल सकते, तुम लोगों को भी नहीं बदल सकते और हम पूरी दुनिया को भी बदलना हमारे लिए संभव नहीं है, परंतु हम अपने विचार बदल सकते हैं, अपनी आदतें अवश्य बदल सकते हैं, अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है, प्रारंभ होता है, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं पर हमारे भीतर से जन्म लेता है।

या हृदय की गहराई से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। ईश्वर सभी का कल्याण करे, सभी का जीवन मंगलमय हो, शांतिमय हो, स्वस्थ वर्धक हो। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रभु भक्ति में लीन होते हुए दिनचर्या का काम करते रहें, और इसी के साथ पुनः हमारी भेंट होगी एक अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ स्टूडियो में आगे विधिमा उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। राज्यसभा के कार्य आज फिर शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने तथा पिनल कोड यानी दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन से संबंधित दो विधेयकों पर विचार करेंगे। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल सके।

0: इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद अदरियां जुवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें की। अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे। बोर्ड ऑफ वक्फ कमिश्नर्स के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन ने बताया कि मॉरिशस में इस समय 539 वक्फ पंजीकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ 3 प्रकार के होते हैं, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक। वहीं आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि सभी पक्षों से व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा ताकि सभी सुझावों पर ध्यान दिया जा सके और लोगों की चिंताओं का समाधान हो। इसी सिलसिले में बुधवार को उनके कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। और विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पिछले हफ्ते हुए हमलों के आदान प्रदान के बाद ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है और उन्होंने कहा कि ये आज कतर में होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ किसी भी पूर्व निर्धारित बैठक से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि वो ईरान की जमी हुई धनराशि जारी करने के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए दोहा में विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: अल्लाह ताला फरमाता है, ज़्यादा सोचना, शिकायत करना, ख़ुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना बंद करो, इसके बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूँगा। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, नातु सलाम, बयान और आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदक़ुल्लाह अज़ीम। आगाज़ हो जलसे का कुरान की तिलावत से, मसरूर दिल मोमिन हो उसकी हलावत से। कुरान की तिलावत से यूं दिल को मुनव्वर कर, एक आयते कुरान पर एक राह मुकर्रर कर। उसी के फ़ज़ल से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहां का काम होता है। पाक परवरदिगार हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

नहीं दी, बल्कि इंसानों में रब ने छटनी कर दी, यानी छांट लिया, जिससे आप तमाम मालों में से अच्छे माल को छांट कर सेकंड ग्रेड का अलग है, फर्स्ट ग्रेड का अलग है, और अव्वल दर्जे का अलग है, और सबसे इम्तियाजी शान का अलग है। तो अल्लाह ने कुरान हकीम में मोमिनों को अव्वल दर्जे और इम्तियाजी शान के साथ ज़िक्र फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम मदद हासिल करना सब्र से और नमाज से। तो आज मेरा पैगाम जो कुरान और हदीस का पैगाम है, मेरा कोई पर्सनली पैगाम नहीं, जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, वो पैगाम कुरान दे रहा है, ऐ ईमान वालों। तो यहाँ पर सारे इंसान को ख़िताब नहीं किया गया और ना सारे इंसान को इस पर अमल की दावत दी गई। तो एक तरफ जालिम है जो अपना जुल्म कर रहा है, और जुल्म करने में जालिम इस हद तक अंधा हो जाता है कि उसकी अनानियत और उसका अंधापन, शैतान उसके अंदर खुद को खुदा महसूस करा देता है। यही हाल तारीख उठा के पढ़ें, चाहे वो ज़माने अबू जहल हो या दौरे इबलीस से ले लीजिए, या ज़माने फिरौन व नमरूद व शद्दाद हो, या आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि दुनिया में कहाँ फिरौन है और कहाँ ग़ुलामान अहले मुस्तफ़ा हैं। तो यजीद की तख्त पर बैठने के बाद इमाम अली मकाम का सब्र शुरू हो जाता है। कौन वो शख्स अपने गांव, अपने शहर जहां वो पैदा हुआ हो और उसे छोड़ दे। बड़ी सब्र की घड़ी इमाम अली मकाम पर वो थी जब मदीने तैयबा, जहां हम सब के इमाम अली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वहीं पर आपका बचपना गुज़रा, वही मस्जिद नबवी शरीफ जो आपके नाना जान की इबादत गाह और आपकी तरबियत गाह थी और इबादत गाह दोनों थी, आज उसी मदीने तैयबा को छोड़ना पड़ रहा है। मेरा एक सवाल है आम इंसानों से, क्या आप जहाँ पैदा हुए हैं और जहाँ बचपना गुज़रा, उम्र 50 तक पहुँची, आप पर जुल्म हो और आप सब्र करके वो जगह छोड़ें, तो सब्र कितना बड़ा रहा होगा कि आप अपने उस मकाम को छोड़ रहे हैं जहाँ पर आप की पैदाइश और सारे मामलात आपसे जुड़े रहे। इमाम अली मकाम ने पहला सबक मदीने तैयबा नाना जान की कब्र अनवर पर हाज़िरी देकर जो सब्र का पैगाम दिया, फिर आप अपनी वालदे मुअज़्ज़मा मुकर्रमा तैयबा ताहिरा ज़ाकिया हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि कब्र अनवर पर हाज़िरी देकर जो आपने आखिरी सलाम किया, वो मंज़र क्या रहा होगा। आज हज और उम्रा करने वालों से पूछो, जो आशिक़े रसूल हैं मदीने तैयबा पहुँचते हैं, आशिक़े अहले बैत हैं, आशिक़े सहाबा हैं, उनसे पूछो हुजूर की हाज़िरी के बाद सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु व अमीरुल मोमिनीन सैयद उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयद उस्मान

0: तो हक बोलते रहो और जो मुसीबत दे उस पर सब्र करते रहो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके साथ होगा। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र इमाम अली मकाम सब्र अहले बैत की बरकत से अल्लाह तबारक ताला हम सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए और हक गोई की हिम्मत व ताकत इमाम अहले मकाम इमाम अली मकाम के सदक़े में अता फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला अहले बैत का सदका मुल्क मॉरिशस और आलम इस्लाम में अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामेईन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक सबक आमोज़ बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए इस समात फरमाइए एक ऐलान। 4 जुलाई सुबह 10 बजे, जी हाँ, 4 जुलाई सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्टलुस में आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में 11वीं शरीफ के ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

मौजूद सामीन, आइए हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन के चंद अक़वाल समात फरमाइए। तीन चीज़ें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ। तीन चीज़ें झूठी ना समझो। जी हाँ, तीन चीज़ें छोटी ना समझो, फ़र्ज, कर्ज और मर्ज। तीन चीज़ें हमेशा पाक रखो, जिस्म, लिबास और ख्यालात। तीन चीज़ें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। तीन चीज़ें हमेशा काबू में रखो, ज़बान, नफ्स और गुस्सा। तीन चीज़ें हमेशा बाकायदगी से पढ़ो, नमाज, कुरान और दुरूद शरीफ।

सबको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। हमारी मांगी हुई तमाम जायज़ दुआएं जो हमारे हक़ में बेहतर हों कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो आज रात 8:40 पर एक बार फिर महफिल शब के ज़रिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

little pretty angel. Oh, my heart's broken. Find her for me.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

手情意远，身不由己在天边，才明白爱恨情仇，最伤最痛是后

首情意愿，身不由己在天边，才明白爱恨情仇，最伤最痛是后悔。如果你不曾心碎，你不会懂得我伤悲。

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। समय तो चलिए, समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद, आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक। फ़ोन नंबर आपको पता है 4028085। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 5251700। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है एक बढ़िया सा नजाना आप सभी सुनने वालों के नाम।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये अगला गीत जाने वाला इन सभी श्रोताओं के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है हम चलाने वाले हैं। विश्वानी डुमन जी है वाकवा की रहने वाली और वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए उनके नाम जो है ये अगला गीत हम ज़रूर चलाने वाले हैं। उनकी बहनें हैं इंदिरा शारदा, उनकी सहेलियां हैं नीरा प्रतिभा, शोभा है, गीता गजाधर है। इन सभी लोगों के नाम जो अगला गीत है, त्रिवेणी जी है गुडलैंड की रहने वाली, साथ है मैं है, उनके पति है अनिल और सभी मोहन परिवार के ये अगला गीत हम चला रहे हैं।

चलिए यशो, तो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमारे साथ माला जी हैं, माला सुमारू जी है, काठमांडू की रहने वाली, उनके समस्त श्रोताओं के लिए, जहाँ समस्त श्रोताओं के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत, और माला सुमारू जी उनके सभी दोस्तों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए, उनके सभी बच्चों के लिए, कुछ मॉरिशस में है, कुछ कनाडा में है, माला सुमारू जी के लिए साथ में है उनके पति है सूर्यदेव जी। तो चलिए अगला गीत जो है उनके नाम जो है हम चलाने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं इस समय।

2:50 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत इस समय हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। ये अगला गीत जो है जाने वाला है सुदेवी जी वाकवा की रहने वाली, ये गीत है जाने वाला है त्रियोले की दीदी ललिता के लिए। साथ में है कुशल परिवार, आत्माराम भैया है, दीदी सुनीता, शोभा देवीना मरेंगा के विकास, अक्षय, स्नेहा, कीर्ति, कृषिका, लक्षिता, समस्त रामरतन परिवार है, समस्त क्वागु परिवार है। तो चले, इन सभी परिवारों के लिए ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं।

चलिए श्रोताओ, अब आप देख रहे हैं कि इस गाने में थोड़ी सी खराबियां पाई जा रही है, जिसके लिए हमें वाकई खेद है। तो चलिए आप के लिए एक अगला गीत चला रहे हैं सुनील निगम के स्वर में।

0: Disney.
1: दोपहर के 3 बजे हैं, देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। आज पारित होने से पहले राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी पढ़त पर पेश किया जा रहा है। इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल जाएगी और कई कदम भी अमल में लाए जाएंगे, जिनमें से कुछ का पालन कल से ही किया जाना लगेगा। आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों को संबोधित था। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पेंशन प्रणाली में सुधार और बदलाव के कदमों को लेकर समाज सुरक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श हुआ या नहीं। मंत्री अशोक सुभों ने बताया कि परामर्श सत्र नहीं लगाए गए, लेकिन ऐसा सुधार और ऐसे बदलाव अनिवार्य हैं और पिछले साल प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने ऐसे कदमों पर बातचीत की थी और कुछ ऐसे ही सुझाव प्रस्तावित भी किए थे। गन्ने की कटनी की अवधि शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में छोटे खेतिहर भी काम पर लग गए हैं। 6 महीने बाद अब दोबारा सुबह भोर में उठ जाना, खेत जाने के लिए तैयार होना। सेंट जूलियन डुटमो में कल कटनी शुरू हुई। इस साल इस इलाके में अच्छी बारिश के कारण गन्ने की फसल ज्यादा अच्छी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मलगासी बिजनेसमैन मामी हवातुमोंगा की जमानत पर रिहाई की नई मांग को लेकर कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई हुई। ये अनुरोध उस समय सामने आया जब पिछले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले दिए गए बेल एंड रिमांड कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था। इस बार मामी हवातुमोंगा के वकीलों का मुख्य तर्क ये है कि आरोपी अपनी पिछले वर्ष हुई गिरफ्तारी के बाद से 7 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी जांच 3 महीने के भीतर पूरे करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है। वैश्विक स्तर पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 में कई टीमें कमाल दिखा रही हैं। रविवार को जहां कनाडा ने 1-0 से साउथ अफ्रीका को हराया, वहीं कल ब्राजील और जापान की टीम आपस में टकराई। जापान अंतिम समय तक टिका रहा, लेकिन ब्राजील की टीम बाजी मार गई। स्कोर ब्राजील 2-1। आज 2 मैच खेले जा चुके हैं, पैराग्वे जर्मनी और उसके बाद मोरक्को नेदरलैंड्स। दोनों मैचों में स्कोर रहा ड्रॉ 1-1 पर। पेनल्टी शूटआउट पर पैराग्वे ने जर्मनी को और मोरक्को ने नेदरलैंड्स को खेल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। अब आज मैच होगा रात 9 बजे कोत द'इवोर और नॉर्वे के बीच। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सपहर के 3:03 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे इस समय से लेकर शाम के 4 तक। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं आप सभी सुनने वालों के लिए। हमारे साथ सुनीता जी हैं गांव गोप की रहने वाली, साथ में है सुरेखा जी दीपने की रहने वाली, साथ में है राधा जी पिछवेरे सैपिया की रहने वाली। तो चलिए प्यारा सा गीत उनके नाम हम करेंगे।

चलिए श्रोताओं, अगला गीत जो है जाने वाला है नारायणी जी। नारायणी जो है नोंग माउंटेन की रहने वाली है, हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। तो ये प्यारा सा गीत फिल्म शहनाई से लिया गया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। गीता जी है पोंफिया की रहने वाली, अगला गीत जाएगा उनके सभी बच्चों के लिए, आदित्य, अरव, जानवी, तनिष। उनकी बहन है मीरा न्यूकोव की रहने वाली, साथ में है उनके पति रोहित जी।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला गीत जो है बहुत ही प्यारा सा नज़ाना हमारे साथ। आप हैं हमारे साथ इस समय मागाट्री जी है, नुवे फ्रांस की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। साथ मैं है उनके बेटे अजय, उनके सभी परिवारों के लिए। हमारे साथ इस समय माताबा की कमला जी, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये गीत जाएगा उनकी आरोही के लिए, उनके सभी परिवारों के लिए। साथ मैं है ये गीत केश जी के लिए, कतबोन की रहने वाली, उनकी दो बेटियाँ हैं नेहा नितिशा, उनके सभी परिवारों के लिए, उनके दामाद है एल्विन। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम चलाने वाले हैं। फिल्म का नाम है, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना और बहुत ही प्यारी सी गज़ल गुलाम अली की ज़ुबानी आप सुन पाएंगे।

चलिए इशू क्या हुआ आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत जो है हम चलाएंगे भाई हरीश जी के लिए, बोबासा के रहने वाले हैं आप, तो चलिए ये अगला गीत बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। विद्या जी है यूनियन पार्क की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ

0: हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। विद्या जी है यूनियन पार्क की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ। ये गीत की ओर हम बढ़ेंगे।
1: एट हंड्रेड एंड नाइनटीन किलोहर्ट्स ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे अगले गाने की ओर। हम बढ़ेंगे, हमारे साथ माधुरी जी है। माधुरी जी की पसंद पे ये अगला गीत हम चलाएंगे, साथ में समस्त बंधु परिवार है त्रियोली के रहने वाले।

0: मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता।
1: तो चलिए छोटा, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ है जो है क्वेन जी है नोवेल फ्रांस के रहने वाले। ये गीत जाएगा उनके सभी दोस्तों के नाम, फिल्म का नाम है बारिश।

चलिए श्रोताओ, बसंती जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है बोबासा से। तो चलिए, उनका ये मनपसंद गीत फिल्म टावर हाउस से लिया गया ये अंतिम नजराना मुकेश की आवाज़ में आप सुन सकेंगे। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। श्रोताओ, साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे बाद जो है तमिल भाषा में कार्यक्रम कलावाणी के साथ आप सुन सकेंगे। हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार।

Sari, sa dana, sana, sam. Sana, sa jono, jono, say. Sari.

गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो आपको खींच के लेके जाएंगे उन वादियों पर जहाँ पे आप अपने खूबसूरत यादों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आपने सजा के रखा है। तो बस तैयार हो जाइए हमारा साथ देने के लिए इस खूबसूरत सी सफ़र में, हमारा हम सफ़र बनने के लिए। ये है आपका भूले बिसरे गीत।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: बिल्कुल जी, भूले बिसरे गीत में लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो दोस्तों, पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है, इनमें मोहब्बत होती है, इनमें जज्बात भी होती हैं और ज़िंदगी के हर रंग छुपे हुए हैं। तो आज रेडियो मॉरिशस पर हम मिलकर सुनेंगे वो गीत जो हर जनरेशन के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। आंखें बंद कर लीजिए और जरा सोचे तो वो जमाना जब कैसेट चलती थी, रेडियो पर गाने रिकॉर्ड किए जाते थे और हर गीत दिल में उतर जाता था। तो आज भूले बिसरे गीत में हम उसी खूबसूरत दौर को फिर से जिंदा कर देंगे इन खूबसूरत गानों के जरिए। तो साथ बने रहे और लुफ्त उठाइए इस संगीतमय सफर का जो स्पेशली आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, जी हाँ, आपके प्यार और साथ के बिना ये जो खूबसूरत सा सफ़र है बिल्कुल अधूरी है। आज फिर हम लेकर आए हैं यादों का, जज्बातों का और सुरों के, ये सुरों से सजी हुई एक अनोखी महफिल खासकर आप लोगों के लिए। ये है आपका भूले बिसरे गीत, जी हाँ। और स्वागत वैसे हमने इतने खूबसूरत खूबसूरत गानों से तो कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत के साथ आप अपने दिल की धड़कनों के ऊपर काबू कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी इंसान सुनते हैं अपने मनपसंद गीत और जब यादों का खजाना खुल जाता है साथ में, तो इंसान का दिल मचलने सा लग जाता है। उम्मीद करते हैं कि अपने यादों के साथ आप मुस्कुरा रहे हो, और थोड़ी सी अगर आंखों में नमी भी आ जाती है तो ऐसे क्या बात है। आंखों में नमी, होंठों पर मुस्कुराहट, कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना। तो चलिए जी दोस्तों, फिलहाल के लिए बस यूं ही साथ देते रहना। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप किचन में घुस चुके हैं खाना बनाने के लिए, तो बो को आज टू यू माय डियर, और उम्मीद करते हैं कि अगला गाना आपके दिल को भा जाएगा।

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में आपको दिल से अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी, क्योंकि ये अपना कीमती वक्त निकाल के गिन चुन के लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए। वैसे हर गीत हमेशा याद रखना एक एहसास है दोस्तों, और हर धुन एक कहानी है, और हर सुर में छुपा है एक अनमोल लम्हा। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं ये खूबसूरत सा भूले बिसरे गीत वाला प्रोग्राम, जो पुराने बॉलीवुड के बेहतरीन गीत हैं जो आपके दिल को सुकून देंगे और चेहरे पर ज़रूर मुस्कान लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस, जहां पे गिनीशा बड़े शिद्दत से बड़े प्यार से आपका साथ दे रहे हैं।

तो चलिए जी, स्टूडियो के घर में अभी 5:52 तो हो चुके हैं और फिलहाल के लिए हमारे जाने का समय हो गया है। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही बस रेडियो मॉरिशस पर हमेशा साथ देते रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। सभी का इस बुलेटिन में हार्दिक स्वागत, नमस्कार और आदाब। शाम 6 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज पारित होने से पहले राष्ट्रीय सभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी पढ़त पर पेश, इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल जाएगी। आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन, समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो को संबोधित, जो पेंशन प्रणाली पर थी आधारित। परामर्शदाता कंपनी क्रोल की रिपोर्ट में सामने आए कुछ तथ्यों को एफसीसी और पुलिस को सौंपा जाएगा। इस कंपनी को एमोरिशस के विमानों की खरीद और बिक्री से जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान केंद्र में रहा। विदेश की खबरों में, वेनेजुएला में आए जोरदार भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या 1,700 पार। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। आज पारित होने से पहले राष्ट्रीय सभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी पढ़त पर पेश किया जाएगा। इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल पाएगी और कई कदम भी अमल में लाए जाएंगे, जिनमें से कुछ का पालन कल से ही किया जाने लगेगा। आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो को संबोधित रहा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पेंशन प्रणाली में सुधार के कदमों को लेकर समाज सुरक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श हुआ है या नहीं। और मंत्री अशोक सुभो ने बताया कि परामर्श सत्र नहीं लगाए गए, लेकिन ऐसा सुधार अनिवार्य है और पिछले साल प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने ऐसे कदमों पर बातचीत की थी और कुछ ऐसे ही सुझाव प्रस्तावित भी किए थे। परामर्शदाता कंपनी क्रोल की रिपोर्ट में सामने आए कुछ तथ्यों को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और पुलिस को सौंपा जाएगा। इस कंपनी को एयर मॉरिशस के विमानों की खरीद और बिक्री से जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राष्ट्रीय विमानन कंपनी के पूर्व प्रशासक सतर अब्दुल्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये जानकारी मंगलवार को राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान सामने आई। संसदीय कार्यवाही के इस सत्र में डॉ. नवीन राम गुलाम ने पेंशन से जुड़े एक प्रश्न का भी उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संस्थाओं की डिफाइंड बेनिफिट स्कीम ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज तथा नेशनल पेंशन फंड का कुल घाटा 166 बिलियन रुपए तक ही सीमित है, तक ही पहुंच चुका है। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के पहले ही प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा अशोक सुभो को संबोधित रहा। इस पर पेश है रिपोर्ट।
2: विपक्ष नेता जोलेजों का खास रूप से नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड कायम किए जाने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, जो कि पेंशन सुधार और पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड के उन्मूलन का एक स्तंभ है। अपने जवाब में समाज सुरक्षा मंत्री ने सबसे पहले इस सुधार के क्रोनोलॉजी पर बात की और इस बात पर जोर दिया कि नई प्रणाली से संबंधित जानकारियों के बारे में जानने के लिए फाइनेंस बिल का इंतजार करना होगा।
3: Stated that he is in favor of maintaining the PRGF. Does it mean that now he is for the abolition of PRGF as mentioned in the annex of the budget speech?
4: Madam Speaker, as I said, the matter is under consideration. We must thank

0: the Prime Minister, who has done two things. First, freezing and getting out the ministers from the pension reform. We must commend him. Second, that the Prime Minister and the government table the report of the Commission of Experts. This is what is enabling democratic debates all around the country on the issue of the second and other pillars of the pension reform, okay? I must say to the Honorable Leader of the Opposition, I was one of the main person and trade unionists who fought for the PRGF. Had it not been me, not been the General Workers' Federation, the Joint Negotiating Panel of the Sugar Industry and other trade union, the PRGF that is here now wouldn't have been the same.
1: विपक्ष नेता ने कहा कि स्टेट एज पेंशन को लेकर अस्पष्टता है.
2: Concerning the SAP, will the Honorable Minister inform the House on what basis has the sum of 11,589 have been calculated?
0: I already replied to this question. We are awaiting the details from the Ministry of Finance. This is what I reply in the Committee of Supply. You were not here.
2: Honorable Minister, is it correct to say that as from January 2027, a person aged 62 years, his pension will decrease by 3,000 rupees?
0: As I stated, the matter is being finalized as a democratic government, and any specification on this issue will be within the finance bill that we presented to the National Assembly. The Leader of the Opposition will have an opportunity, as all the members of the Assembly, to present his views or challenge or position to what will be presented in the finance bill.
1: मंत्री अशोक सुबो ने कहा कि इसकी शुरुआत तब हुई जब पूर्व सरकार ने अचानक से बिना परामर्श एनपीएफ को हटा दिया और सीएसजे को लागू किया.
2: Is the Honorable Minister aware of the massive outcry from all the trade unions of this country on this pension reform?
0: Yes, I am. I am. These are many of them are my comrades. But let me say it loud and clear. The real arnaque du siècle happened on the 4th June 2020 during the presentation of the 2021, but let me speak, whereby the government led by Pravin Jagnauth, with Ranganathan Padayachi as Minister of Finance and supported by the Honorable Leader of the Opposition, decided overnight to put an abrupt end to the Mauritian Contributory Retirement Pension System, that is the NPF.
3: आज की संसदीय कार्रवाई की शुरुआत राष्ट्रसभा की स्पीकर के वक्तव्य से हुई. राष्ट्रसभा की स्पीकर शिरीन अमीरुद्दीन ज़िफ़रा ने हर वर्ष 30 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर अपना संबोधन दिया. साल 2018 में स्थापित ये दिवस अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन की स्थापना की तिथि के साथ मेल खाता है. स्पीकर ने संसद सदस्यों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न संसदों द्वारा व्यक्त किए गए अलग अलग विचारों और मतभेद का सामना सम्मान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है. और पीएमक्यूटी सत्र के दौरान संसदीय कार्रवाई के सत्र में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर दिया. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संस्थाओं की डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज तथा नेशनल पेंशन फंड का कुल घाटा 166 बिलियन मॉरिशस रुपए तक पहुंच चुका है. जरा विस्तार इस रिपोर्ट में.
1: सांसद बीजान का प्रश्न एयर मॉरिशस की ओर से दिसंबर 2014 से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान खरीदे गए और बेचे गए विमानों की संख्या पर केंद्रित था. प्रधानमंत्री ने कहा,
0: During the period December 2014 to December 2024, Air Mauritius Limited had disposed of 4 aircrafts. In June 2021, Air Mauritius entered into a consignment agreement with a private company for the disassembling of the 2 A340-300 aircraft. The net loss incurred for the sale of these aircraft was approximately 1.

0: रहेगा और इसकी बदौलत हवाई अड्डे पर इंतजार करने वाले लोगों की तादाद भी कम की जा सकेगी।
1: कटनी की अवधि शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में छोटे खेतिहर भी काम पर लग गए हैं। 6 महीने बाद अब दोबारा सुबह भोर में उठ जाना और खेत जाने के लिए तैयार होना। सेंट जूलियन डुटमॉ में कल कटनी शुरू हुई। इस साल इस इलाके में अच्छी बारिश के कारण फसल ज्यादा अच्छी होने का अनुमान लगाया गया है। देश के पूर्व में पहली बार ऐसी योजना कायम। बजट 2026-2027 में सेंटर डू फ्लैक के डॉक्टर ब्रूनो चोंग अस्पताल को एक रेजिडेंशियल रिहैबिलिटेशन सेंटर में बदला जाएगा। इसका मकसद है ड्रग्स के शिकार लोगों को सहारा देना। इस पर योजना को अमल में लाए जाने के लिए संबद्ध साझेदारों के साथ बातचीत जारी है। इस बीच देश के इस हिस्से के ड्रग्स के शिकार लोगों की मदद के लिए एडिक्टोलॉजी विभाग की सेवाएं वहीं पर डॉक्टर ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 105 साल पूरे होने के अवसर पर मॉरिशस में चीन के दूतावास द्वारा एक स्वागत समारोह किया गया। इस समारोह में कई महानुभाव उपस्थित रहे। चीन की राजदूत वांग शिफांग ने 1921 में पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के उसके सफर का उल्लेख किया। विदेशी खबरों में वेनेजुएला में भूकंप के 2 जबरदस्त झटकों के बाद मारे गए लोगों की संख्या 1,700 पार हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मलबे तले लोगों को जीवित निकालने की आशा दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस बीच वहां के निवासी सरकार से ज्यादा समर्थन की मांग कर रहे हैं। अंत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात। राउंड ऑफ 32 में कई टीमें कमाल दिखा रही हैं। रविवार को जहां कनाडा ने 1-0 से साउथ अफ्रीका को हराया, वहीं कल ब्राजील और जापान की टीम आपस में टकराई। जापान अंतिम समय तक टिका रहा लेकिन ब्राजील की टीम बाजी मार गई। स्कोर ब्राजील 2 जापान 1। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
2: ब्राजील को जमीन आसमान एक करना पड़ा, तब जाके जापान को अंत में हरा पाई ब्राजील की टीम। पासा पलटना पड़ा क्योंकि पहला गोल जापान ने स्कोर किया था। ह्यूस्टन के एनर्जी स्टेडियम में बेस्ट ऑफ 32 में ब्राजील इंजरी टाइम में जाके मैच जीतता है। जापान के खिलाड़ी शुरू से दबाव डाल रहे थे, तब जाकर दानीलो की गलती पर केशु सानो के शॉट पर गोल बनता है। फर्स्ट हाफ में जापान 1-0 से आगे, सेकंड हाफ में ब्राजील मैच में अपना दबदबा बढ़ाता है, तब जाके कासिमिरो इक्वलाइज करता है 56वें मिनट पर। गैब्रियल मार्टिनेली जिसे सब्स्टिट्यूट के रूप में भेजा गया, इंजरी टाइम में ब्राजील का मसीहा बना, 7वें आसमान पे भेजता है ब्राजील को। ब्राजील 2 जापान 1। अगले राउंड में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा।
3: ब्राजील हेडिंग थ्रू टू द राउंड ऑफ 16।

0: और आज दो मैच खेले जा चुके हैं, पैराग्वे जर्मनी और उसके बाद मोरक्को नेदरलैंड्स। दोनों मैचों में स्कोर ड्रॉ रहा। पेनाल्टी शूटआउट पर पैराग्वे ने जर्मनी को, मोरक्को ने नेदरलैंड्स को खेल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। आज मैच खेला जाएगा रात 9 बजे कोत द्वीवर और नॉर्वे के बीच। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: आज रात 9 बजे आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से। आइवरी कोस्ट के हाथी लोग वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहली बार खेल रहे हैं। उधर नॉर्वे की टीम में अर्लिंग आलोन है, जो अभी तक 4 गोल स्कोर कर चुका है 2 मैच में। लोहा लोहे को काटेगा। इस मैच को आप देख पाएंगे MBC के स्पोर्ट्स 11 पर रात्रि के 9 बजे। न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से। यूरोप की 2 टीमें आमने सामने, करीबी मामला होगा। फ्रांस के ले ब्लू अभी तक सबको हरा कर आए हैं यहाँ पर। 3 मैचों में 3 जीतें और क्वालिफाई हुई, इसलिए फ्रांस की टीम फेवरेट है। उस्मान देम्बेले पिछले मैच में 3 गोल स्कोर कर पाया था नॉर्वे के खिलाफ। स्वीडन की टीम काफी कठिनाई से क्वालिफाई हुई अपने ग्रुप में 3रे स्थान पर आके। ईसाक की टीम में संगठित खेल, अनुशासन, इस टीम से बच के रहना होगा। मेक्सिको इक्वाडोर का स्वागत करेगा। मेक्सिको की टीम अभी तक सबसे शानदार परफॉर्मेंस देकर आई है। 3 मैचों में 3 जीते, 6 गोल स्कोर

0: करके और खासतौर पर एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। इक्वाडो अपने ग्रुप में पहले लड़खड़ा रही थी, पर आखिरी मैच में जर्मनी को हराकर क्वालिफाई हुई। फेवरेट मेक्सिको है, पर इक्वाडो में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। कल सुबह 5 बजे ये मैच खेला जाएगा।
1: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
2: दक्षिणी क्षेत्र से जो बादल बढ़ रहे हैं वे आज रात के दौरान हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात मौसम अच्छा रहेगा। आज रात और कल सुबह के दौरान कुछ बादल घिरने लगेंगे, मुख्य रूप से टापू के दक्षिणी हवाई ढलान पर और ऊंचाइयों पर। दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। दक्षिण की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कल दिन के दौरान बढ़ने लगेंगे। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी एवं पूर्वी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:41 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:46 पर सूर्योदय।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और टेक्निकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

शोक समाचार सुनिए। कौलीलाश में घोइने में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पावती शिवदयाल पैराशिनाम भगन और जो मानो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले पोइन रोड सुगे नाम रहा करती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनकी बेटी शोभा बहू के मकान कौली लाश में घोइने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनि की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:00 PM। रॉ रोड पेटी जुली में 51 साल की 51 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मधुमती बिसेसर पैदाशीनाम हीरा और जो मधु के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति धर्मदेव राकेश बिसेसर के मकान रॉ रोड पेटी जुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:11 AM। केदुलेन तायाक में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री अमुगम मुतिया जो सुबैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी वानेसा मुतियों के मकान केदुलेन तायाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:10 AM। जगन्नाथ रोड रिव्याजुहां पाव में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री जयकरण बिसुन की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी प्रमिला लोहर के मकान जगन्नाथ रोड रिव्याजुहां पाव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:09 AM। शाये रोड मोताई ब्लॉश में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुबा लक्ष्मण पैदाशीनाम उबाई और जो सुबा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति यशदेव लक्ष्मण के मकान शाये रोड मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:01 PM। रोथ्रेबो नंबर चार वाकवा में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिरो अर्जुन बालू जो अनिरो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके मकान रोथ्रेबो नंबर चार वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:09 AM। गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट क्षमा कीजिए गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बेनोआ पेटी ट्रिविया में गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बेनोआ पेटी ट्रिविया में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री नित्यानंद सिंह नायक ओरी श्री नित्यानंद सिंह नायक ओरी जो नीतीश कोलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी गुरुवार को दिन के 1:30 बजे उनकी मां तारा नायक ओरे के मकान गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बेनोआ पेटी ट्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शुबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे 8:01 PM। रामजीन लेनो कुले में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज गुलोरी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके मकान रामजीन लेनो कुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:09 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल बुधवार 1 जुलाई 2024 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 4:30 बजे तक तमागे और आसपास के इलाकों में मौसलमा कॉलर्स और रॉयल रोड तमागे में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

首情意愿，身不由己在天边，才明白爱恨情仇，最伤最痛是后悔。如果你不曾心碎，你不会懂得我伤悲。

सप्रेम नमन आप सभी श्रोताओं को जय श्री राम। रेडियो मॉरिशस के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं भक्ति कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम। मैं हूं देविना और हम सब मिलकर भक्ति श्रद्धा तथा आध्यात्मिकता के इस पावन सफर पर चलेंगे एक साथ। वैसे श्रोताओं, जब मन थक जाता है तब प्रभु का स्मरण हमें नई ऊर्जा, नई आशा तथा नई दिशा प्रदान करता है। ईश्वर का नाम वह अमृत है जो जीवन के हर दुख को सहने की शक्ति देता है तथा हर खुशी को और भी सुंदर बना देता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि प्रभु पर विश्वास अटल हो तो हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। चलते हैं पहले भजन की ओर।

प्रभु की महिमा का गुणगान करते ये मधुर शब्द सीधे हृदय को स्पर्श कर जाते हैं, है ना। जब भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करता है।

श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, परंतु सत्य यह है कि प्रभु हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी वे हमारी इच्छा पूरी करके उत्तर देते हैं, कभी समय आने पर तथा कभी हमें उससे भी अधिक बेहतर कुछ देने के लिए प्रतीक्षा करवाते हैं। इसलिए कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख आहे को होई।

वैसे ईश्वर का नाम केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की शांति है। जब मन विचलित हो, जब मार्ग धुंधले लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, तब प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास से उनका स्मरण करता है, उसके योग क्षेम का भार स्वयं भगवान उठाते हैं।

यहाँ श्रोताओ, जीवन एक यात्रा है और हम सभी यात्री हैं। इस यात्रा में धन, पद तथा प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं। साथ जाता है केवल हमारा कर्म तथा प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा। मनुष्य को अपने जीवन में तीन बातों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु पर विश्वास, अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच। इन तीनों के साथ जीवन की हर चुनौती सरल हो जाती है। राह कठिन हो, मंजिल दूर हो, फिर भी मन में विश्वास भरपूर हो, हाथों में भले कुछ भी ना हो परंतु प्रभु का नाम अवश्य हो। श्रोताओ, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होती है, तथा जब हृदय से की जाती है तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इसी मंगल कामना के साथ कि प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हमें दीजिए अनुमति। आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम। भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मकता से भरे एक नए अंक में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए भजते प्रभु का नाम सुमिरन कर सुबह शाम। जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्यों ना हो हमारे चेहरे फूल से क्यों ना हो हमारे चेहरे फूल से हम तो बने हैं करबला की धूल से। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस हैं और आपकी खिदमत में पेश हैं उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। निसार अख्तर दिले बेकरा से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह माह मुकद्दस माह मुहर्रमुल हराम हमारे दरमियान साया फिगन है, वो महीना जिसे हुर्मत वाले महीनों में शुमार किया गया, जिसकी फ़जाएं इबादत की खुशबू से महकती हैं और जिसके अय्याम इंसान को अपने रब के करीब होने की दावत देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस माह मुबारक के फ़ुयूज़ और बरकात से मालामाल फरमाए, आमीन। आइए महफिल शब का इफ्तिताह इस कलाम से करते हैं, मुलायजा फरमाइए।

मोहतशम सामईन, मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि अहले बैत वो चराग हैं जिनके नक्श कदम पर चलकर हमें तौबा, इस्तकामत, इबादत और इत्तहाद व इत्तफाक को जिंदा रखना है। यहाँ तक कि अहले बैत ने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया।

0: संगत यार घड़ी मिला लाई बखत रात के ठीक 9:04 हुआ था। तू सुना तो MBC रेडियो मनोरंजन और MBC रेडियो मॉरिशस।
1: Continuous music.

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
3: सब संगतियों के आज प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद कार्यक्रम भोजपुरी तड़का रात के 9:06 होता रवि से लेके रात के 11 बजे रे नाचब से गावब से कमरवा डोलावब से झूमब से तिलोके संगे संगे धीरे धीरे हौले हौले थोड़ा मन करता को भोजपुरी गीत सुन के नंबर वा घुमाइया का जगो दे विद जगो विद सैंक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर विदा करिया मिसास और तोहर भोजपुरी गीत हमने चलाओ अब जा ठीक बा। ये प्रोग्राम में गीत मांगे के इधर उधर के बात नहीं करिए सब काम एक डिसिप्लिन से होला तो हाई पहल

गगन हंगामा हंगामा रोशन सदा सिंह की गावल गीत और हैगी तो चलावती इस रवि बंगारू के नाम श्रवण वुजल और फिर वीना मंडब कुमार तेज कुमार सुरेश महातो प्रीतम परवीजा इला दिनेश भाई साथ में नेहा शाफिक रीन मोरी बन बीना भारती और फिर जितना समझा लोग हमने के देखा था इस समय रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर और हमने के सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रेडियो पर तय गीत तो लोग के नाम हंगामा हंगामा रोशन सदा सिंह की गावल गीत और रवि बंगारू जिन्हें बहुत प्यार से हमने के देखा था उन्होंने सुना था चल रवि बंगारू हमने के संगे नाच हंगामा हंगामा

झूम झूम झूम घूम घूम घूम और बेशक अब बॉलीवुड न्यूज गर्मा गर्म न्यूज आने से तो लोग खाते संग तैयार हो जाने से भोजपुरी तड़का में ढेर कुछ सीखे के मिली रहा हो कि नहीं। तभी आजकल को फिल्म रिलीज हो फिल्म के नाम है वेलकम टू द जंगल और है फिल्म जो है बहुत खूबसूरत फिल्म है और ये फिल्म में तू देखबा अक्षय कुमार सुनील शेट्टी परेश रावल अरशद वारसी जैकी श्रॉफ रवीना टंडन लारा दत्ता दिशा पटानी जैकलिन फर्नांडिस जॉनी लवर राजपाल यादव श्रेयस तलपरी और तुषार कपूर ये सब कलाकार ये फिल्म में तू देखबा जाए लोके और ये कॉमेडी से भरपूर फिल्म है। हाँ फिल्म जो है एक में एगो जोड़ी भोजपुरी गीत बा तो आज के सांझ हमने तो लोग भोजपुरी गीत सुनाओ सर। हालांकि आजकल हमने के बॉलीवुड फिल्म में उतना भोजपुरी गीत नहीं रहेगा पर हाई फिल्म में जो है एगो जोड़ी भोजपुरी गीत बा घिस घिस के कैसे नहावल जला तो चल अभी सुनब जा गाना घिस घिस के और थोड़ा मौका मिलता ये गीत ये फिल्म जरूर देखिया जा फिल्म के नाम बोली वेलकम टू द जंगल घिस घिस के कैसे नहावल जला सुनब जा है गीतवा ललिता बिपत है गीत और खातिर कल्याण है गीत और खातिर सिरा दीन दयाल फिर सावित्री सोमाय है गीत और नाम बबीता नेमन है गीत और खातिर विकास है गीत और खातिर शेख रिफत कृष्ण और गीत और नाम और है गीत हमने चलावती से चित्रा की ओर से उनके पति ज्ञान और सब विश्राम परिवार के नाम आप रहेन मॉडल बे और है गीत हम चलाव खासम खास अनिता लाल जी के नाम वहरन मॉडल बेकर सब परिवार के नाम और अनिता जी हवन फ्ली कॉम्फ्लैक्स से गीत हो खातिर और सब रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन के संगत्या के नाम चल गीत सुने घिस घिस घिस

बाप रे बाप, भाई कहते घिस घिस के नहावता। तो जरूर एफ माँ लिखे जाओ वेलकम टू द जंगल, हंसी मजाक से भरपूर फिल्म, 3 घंटा आधा के मूवी और फिल्म दिख बत एकदम।

0: जोली एकदम चकाचक। और बेशक अब हमने बात कर सर कि आजकल दुनिया में मौसम कैसे चल रहा था, तो यहाँ पर इतना ठंडा के मौसम पर यूरोपियन देश में लोगों में ढेर गर्म कर रहा था। और ऐसे सुनने में आलबा कि फ्रांस में ही गर्मी से 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चल गई बात थी। ये कोई दुखद बात है और का जानी कौन सी कब्जा करे, भगवान से पूजा प्रार्थना कर अब से कैसन घटना नहीं घटी। और आजकल अंग्रेजिया में, लाफ्रांस में, लैंड में, इटली में, रिस्पाई में ढेर गर्म करता, ऐसन गर्म कबू ने रिकॉर्ड कर गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है तोड़ दिलक भाई रिकॉर्ड जितना तुम पे हाथ होला गर्म नहीं बोते नहीं पर हाई कहते गर्म कबू कोई नहीं दिख लग भा। और का सकब जा करे। और अगला गीत जो है वेदिका निहारिका नीरज को मधु गीत अगले वन गीत सुजन सोनी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ नमस्ते बोलते हैं। हाई मिकायल गीत और नाम है गीत माता जी दीश्वरी बिहारी के नाम प्रतिमा दुखित्रा में गीत और खातिर वासुदेव बुधु हरीश किजू रियोंग मगर देवन नदी वाला कैसे बहमर दोस्त देवन नदी वाला बहुत प्यार से उनके देखा था और सुना था। तो देवन नदी वाला है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। और मेविन हमने के साधे वतन राजेश मनोरथ है गीत तोरो नाम। और अभी गो संगतियाबा लाइन पे कल से मिल अब जा कोई के निराश नहीं कर अब सा। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी नमस्ते तो हर नाम
1: संजय
0: रोजबेल से बोला भाई संजय
1: बीमार था
0: हाँ बोला केकर खातिर गीत मांगा था वह
1: मीना
0: तोर पत्नी बीना खातिर और
1: श्वेता
0: हाँ और
1: रूबीना
0: और
1: कामिला
0: और
1: अनिगाबू
0: हाँ और केकर खातिर
1: मैं देविका एविका
0: ओके एलेना खातिर भी दाल पकाई दी कोकोम के सलाद आले गीता खोज के चलाओ सब भैया ओके। और एक संगतिया लाइन पे ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट। हेलो
2: हेलो
0: हेलो पूर्णिमा जी नमस्ते।
2: हाँ अच्छा
0: हुआ तू कैसे हुआ तो राजो धे जोर बा पूर्णिमा जी राजो के बोली मैं कमती कर दे हमने कई हाल बोली अभी प्रार्थना करते प्लीज जब भी टेलीफोन करवा राजुआ के वॉल्यूम कमती कर दे कहे कि अरे जो जो तो राजू ऑन डाल लेता यहाँ ऐसे फिर ऑन सुन नहीं सक रहे सब आई एम रियली सॉरी माफ़ी चाहते पर लाइन वा काटे कि कहे कि हमने बोला सर पर ढेर कोई नहीं सुना है कान से सुन के और कान से निकाल दे बोलन सर चहला कमती करे कि। और अगला गीत वेदिका निहारिका है गीत बेंगल टाइगर के नाम अंजना गीत और कतिर यशना बहुत बहुत प्यार के साथ। और देवन नदी वाला बोला था वो काम कर रहा था और हमने के प्रोग्राम एंजॉय कर रहा था अच्छी बात है। सीना जी गीत और नाम वीर बुधू है गीत और कतिर में बिन सुजन सोनी है गीत और नाम और है गीत वीरेन कुमार के नाम और यशना के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ। और है गीत जो है हमने चलाओ अब जा है गीत चलाओ तो इस साइलन की ओर से कर पत्नी रानी कर बेटी परी और सब कर परिवार के नाम। और है गीत चली माँ रीता फिर रीता की ओर से कर बेटा शैलेश बहु स्वस्थी अनुष्का और सब परिवार के नाम। और है गीत रेशमा बंधु के नाम से जितना कोई भी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर हमने की सुना था और हमने के लाइव देखा था वन टिकटॉक पेज पर तो गीत तलों के नाम वेदिका निहारिका

कैप्टन मार के चिलापिया के मार दिला और यहाँ पर ही हमने इस सत्र के साथ देखा थी रात के 9:24 हुआ था। तू सुना तो वह रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और बोरिया से संगत लोग की पोस्ट में जब पैसा बात रोज के बनाने बा, जब पोस्ट में पैसा नहीं रही तब कौन बनाने। देखा थी बोरिया से काम मेहनत करते रहिए, ओवर टाइम करते रहिए ताकि पैसा रही पोस्ट में तो खूब सबक गमत करी। और ऐसे में अगला गीत जलसा गीता गजादर के गावल गीत है। गीत चरावती स लखन अश्मित खतीर मायबू सेवन रवि बंगारू अपन पत्नी खाती गीत मांगा था। पत्नी के नाम असलीना भौजी के आज जन्मदिन बा, तो धे मना प्यार और आशीर्वाद भौजी के हरि राम है गीत और खातिर रूपचंद मिर्जा गीत और नाम नीश और रोवाना यशना अंजाना गीत और खातिर साथ में है गीत चलाओ अब सर खासम खास मणिप्रिया खातिर और ये गीत हम नहीं चलाओ अब सर जूलियो खातिर जूलियो पेहोनेत को डीजे हवन और हमने की सादेवत हवन तो जूलियो पेहोनेत डीजे है गीत और नाम ममता गीत और खातिर शोभा हवन बहुत प्यार से निकी दिखाता हुआ सुनाता हुआ दोहिन भी उनके संगे संगे बोल के मन करता नाचे के गावे के तचरा एक साथ सुने गीता गजादर के जलसा।

जलसा तो होते रहेला भी रात भर जलसा है रात के 11 बजे ले। अब बोलब सा दिनता ना ना ना दिनता दिनता ना ना दिनता दिनता ना ना तना ना ना दिनता ना ना। और संगतियारों के गुस्से तेन लाज रहेला कि स्वाभाविक लड़का लड़की लड़का लड़की एक दूसरे की ओर अच्छे होने से ओपोजिट्स अट्रैक्ट और पहली दोस्ती होला फिर प्यार होला फिर शादी होला फिर लड़का होला परिवार बनेला। पर आजकल देखा थे ऐसा कि ढेर कमती नौजवानों की शादी करा था तो हमने की चला अंकवाजे करे के हमने की नौजवानों के शादी करे के जब नौजवानों की शादी करी लड़का हो लड़का लोग बड़ा हो तो हमने के सेकेंड से देश के बागडोर संभाली। अब शादी नहीं कर अब इसमें जरा पॉपुलेशन हुआ था तो धीरे धीरे हमने के बड़ा आदमी लोग भगवान के प्यारा हो जाता बन सा और इसे मॉरिशस में सकेला आदमी कम थी रही। खाजी बोला सर कि एगो सत्य नाज अला तो छोकरा छोकरी लोग चेहरा शादी करे के एगो परिवार बना के तब न समाज आगे बढ़ी। तो माला जी है गीत तोहर खातिर चलावब सर बहुत बहुत धन्यवाद माला जी बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हो अंकि बाप रे बाप हम तो ठेकुआ लिखा फूल गल का बोलब। भाई सुभाष है गीत तोहर खातिर श्रेष्ठा बीबी गीत तोहर नाम रोहित लखवल लियोनेल यो गीत तोहर खातिर और अर्जुन शंकर के साथ देवथवन शामिला है गीत तोहर नाम नाज भी नाज करो सलाम वालेकुम है गीत तोहर खातिर जामिलिया है गीत तोहर खातिर हमने के बाबू बा आशमित लखन बहुत प्यार से ईद इन वैसे को लेकर हवन बहुत प्यार से हमने के सुनत हवन तो है गीत तोहरो नाम रोहन सिपोल भी हमने के साथ देवथवन तो चले गीत सुने दिन तना ना दिन ता राजी मांगर के गावल की था।

जीवन में ढेर मान लेता बा, जैसे बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा। और बुढ़ापा ऐसा एक स्तर है जहाँ पर सब कोई अकेला पड़ जाला, कहे कि लड़का लोग शादी कर ले वेलन सा, तो अपन अपन परिवार में रह रहन सा, अब बूढ़ा बूढ़ी रह जा सा, किरिया बकर में से एक जना जाएगा चला जाए भगवान न गए, एक जना किरा रह जा रहा, आसान ही है बुढ़ापा है जो ओल्ड एज बोल रहा सा, तो चला प्रभावी करे कि हमने के मोताल मो चना प्रभावी करे कि कहे कि एक दिन सब कोई बूढ़ा हो, अब से हमने हमेशा सब कोई जवान नहीं रह से, और समय के साथ साथ जो हमने के लाज बढ़ता, तो जब लाज जो खत खत आए तो हमने के चना प्रभावी करे कि हमने के कहे कि जब लाज जो खत खत आए तो हमने के चना वी कीप आवर सेल्फ बिजी। अब कैसे देर कोई सीनियर सिटीजन में रह रहा तो जालन सलाम में घूमे पिकनिक है सब छना जाए कि कहे कि घर में रहते कैसे हुई बा, तो जो बुढ़ापा जो है बुढ़ापा हमेशा

0: ढेर कोई के रोआ भी ला कहे कि ढेर लड़का लोग अपन माँ बाप के साथ छोड़ दे बिन सर पर हमने मांग कर अब सर कि अगर लड़का लोग थोड़ा सकत अपन माँ बाप के दिखे तो ज़रूर दिखे जा जानी ना सर तुलों के अपन जीवन में काफ़ी व्यस्त है वो सर पर अपन माँ बाप के नहीं भूलिए कहे कि तुलों के माँ बाप जब बूढ़ा हो जाला तो लोग लड़का लिखा हो जा रहे सर एक दिन सब कोई के पड़ी है इस तरह से पासे हुई के है बुढ़ापा कब कब वो अकेलापन में पड़ जाएगा सर तो चलो अभी सुनब सर अगे मिशे जोज अपन पालतो कहाँ छोड़ ले अगे मिशे जोज बहुत ही प्यारा सन गाना बिस्वानी दीपा गए रे हुआ न गीत चरावती सर कुसुम खातिर फिर चौदार गीत और खातिर महेश चौधरी गीत और नाम सतीश राधिका ना गीत और खातिर शांता और परी और उषा के साथ हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दिवंती सिथल के नाम भी एक गीत चली किरण बाबू है गीत और खातिर युवराज है गीत तोहर नाम और फिर एक जना पर माँ खातिर गीत मंगले हवन प्रिया एतु और है गीत मामा दीश्वरी बिहारी खातिर भी बहुत बहुत प्यार के साथ हमने चलाओ अब जा रेणुका राजकुमार है गीत तोहर खातिर ज्योति लक्ष्मी सादर प्रणाम है गीत हो रो खातिर अगे मिशे जोस अपन पाल तो कहाँ छोड़ा भी गोसंग लाइन पे कर से मिल अब जा हेलो
1: हेलो प्रताप जी
0: हाँ जी नमस्ते के हवा जा
1: हाँ मनु है रुजबेर से
0: हाँ मनु बोला
1: हाँ कैसे सब ठीक ठाक बाना
0: एकदम चकाचक
1: हाँ बहुत बिरमोर में खूब गमत हो ना
0: हाँ आ रहा ला
1: ना हमारे बेटा तो हमसे बच्चे ला हर्दी में गा रही
0: हर्दी में इतना माता जी चले बैठा दे
1: नहीं तकलीफ सामने नहीं दिमाग से
0: फेसबुक में बा फेसबुक में देखिया वीडियो हुआ बा
1: हाँ बा फेसबुक में
0: हाँ प्लीज ऑन स्मॉल टॉपिक करिए तो थोड़ा लोग की गावत है इसे हो गई तो गिरा गिरा गिरा गिरा
1: अच्छा
0: अरे बोलो
1: देखा तब नहीं देखा हाँ नीलेश का अगर लानी भी ऐसे रहा
0: हाँ
1: नीलेश आप ठीक
0: ओके
1: हाँ कब ऐसे रहा
0: तो कब ऐसा हैप्पी बर्थडे हे माना प्यार
1: बहुत धन्यवाद
0: आशीर्वाद
1: तब वो नहीं सकल मोला तो उस दिन वह पूजा कर ले रहा
0: ओके
1: हाँ उसका पति का दिन डाल दिया दाबिना उसका छोटी बेटी बा उकर खतीन और उकर पापा मामा हाँ और इस सर्विस उनका भाई खतीन और मौसी हाँ अब कितन सब प्लान कर दिला
0: नहीं कौन की थबी बा मिशेजोस बा कमरिया बा किसी की बुरा ना बोलिया भोजपुरी भाषा तो कौन की सुन बा
1: अरे पापा ना ये कौन एगो गीत उकर पर चला दिया एगो गीत और ये सामने के दलाइन नहीं मिला
0: आ यो सामने की जिता कोई सुने करा माता जी का बोला बे की कोई
1: नंबर जानीला उसे ढेर लेकर नहीं ले ला सा हम जानीला लास्ट समय में टेंशन बचे वो सकप सकरे में सामदिया के बहुत जीवसी
0: सामदिया के तो बाप रे बाप जा लोटरी मिल गई
1: हमारी कोई देवे के अथी बहन के नाती के शादी अथी लानी वैसे बोले दादी लेकिन मुझे तोड़ी वो कोजे दा आज मामा लानी वैसे पांच जिमोंडे
0: इधर तो मांग ला लेकुआ के को नंबर बोला लेकुआ
1: लेकुआ के नंबर यस उनका पापा अति आजवीन उनका मामा बेबी उनका दादी है लक्ष्मण फैमिली है वहाँ जा अति रोज बिलवे रहेला उनका मामा उनका पापा दादी के खास उनका दादी जैसे देखेला देवी लक्ष्मण उनका दादा है वहाँ बासन हाँ तो हम बोली ना बाबू जी मोदे तब क्या ही ताकत तो हाँ उनका नाम पर डाल दिया लेकिन अभी यूनिवर्सिटी कर रहा था हाँ तो हाउस में के रहा तब बोला सही कब लोकाजो मिली तो डाल दे भी गीत ना
0: हाँ जी हाँ
1: आले अति तब भी बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद चाची जी आले नमस्ते
1: शुभ
0: रात्रि आपको बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन कर ले जा हाँ तो सामदीवा की जुन है फजीर के छः बजे से नौ बजे ढेर कोई टेलीफोन अब कैसे कोई के बोलबा कि मौका दो दूसरों के बताया कि किसे अदालत सा तब नहीं बोली रहा जे कोई सुने करे रहा तो लोग की जहाँ ले सकी रहा सा तो लोग की फरमाइश पूरी करी रहा सा है हमने की कैपेसिटी के अनुसार कहे कि प्रोग्राम तीन घंटा के रहेगा एक घंटा है भक्ति बंदन फिर सात बजे रहेगा सुबह का नजन और आठ बजे से नौ बजे रहो एक घंटा में तो लोग गीत चलाए रहता है और मैक्सिमम कोशिश करी रहा सा कि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग गीत चलाओ सा अगला गीत है मिश्र जोज अपन पालतू कहाँ छोड़ ले बीरबल बीरबल है गीत और खातिर तुलसी राकेश वेद है गीत और नाम जालिम किंग है गीत और खातिर जामेल सीमू धनेश्वरु और जो डाल्टन गीत मांगले वन नकर माँ सुरेखा खातिर केविन और विकेश केविन विकेश हमने के साथ देवतन रेणुका राजकुमार और कुसुम भी साथ देवतवन हमने के महेश चौधरी तो चलो एक साथ सुने हाई प्यारा संगीत अगे मिशे जो जबन पालतू का चोले अभी हम अपन थ्रिको निकाल के रख ले अभी थोड़ा सुन गर्म लगा था तरह ठंडा करता अभी तोशो अभी थ्रिको भुला के घर ही चल जा

अभी मिसेस जोस की कहानी सुनाते हैं हाँ कि नहीं। और बोला सा कि लालच जो नेगो चीज है तो ये बहुत खराब है, क्या कि जब ये लालच रही तो कुछ भी नहीं मिली है। प्रीतो मेहनत और लगन से छाना काम करे के अब लालच कर ब तो लालच इंसान के बर्बाद कर देवेला। जितना चादर बा उतना चेहरा गोर पसारे के, अब एकदम से गोर पसर बा चादर वाला नहीं दिखवा तब प्रॉब्लम हुई। तो बोली रहा सर जे जे कोई लालच कर लग बा लिपासे में दिखी रहा सर तो वो लोग ढेर चीज जिन है वो लोग मौके हो जरा लाभी में तो लालच नहीं छाया करे के, हमेशा चेहरा मेहनत और लगन से काम करे के, और मेहनत और लगन से काम कर बा तो वो अच्छा रही हाँ कि नहीं। और अगला गीत है किसी की बुरा ना बोलिए, हाँ तो कोई के भी बारे में शिशमो नहीं करिया देर कोई खुशी रह सर पर बुरा बुरा बात बोले कि तो ऐसे बात तो कर बाल ऐसे बात तो कर नाक ओसे बा ढेर ये को पाप है जो नरमी खाली दूसर की खचके करेरा

वो अपन देखो नहीं दिखे ला, वो दूसर की खचकी करे ला, तो ना कैसे बा तो कान ऐसे बा। तब भगवान जी के जैसे बने लगभग भैया तो उसने ही रही ना, अब तू हंसबर बुफोनी करबा तो कौन सी मेरी। और भगवान ही खुशी रहे कोई कोई के बुफोनी करे, आजकल दिखी रहा सर विले मानिए बा ढेर कोई के खाए खुशी रहन सब प्लेजिए लेकर बुफोनी करे के। खास खास कर हम है कॉलेज के लड़का लोग में दिख रहे हैं है? प्लेजिया ले सर बुफोनी करे रहन सर। तो सके के माँ बाप नहीं बतैले हो पर हमनी अध्यापक हो के नाता हमने के लड़का के साथ सिखाए के कि कोई के जो है बुफोनी नहीं करे के, सबके छरा रिस्पेक्टे करे के, जब सबके इज्जत देबा तो थोड़ो इज्जत मिली। अब तुगो जिनिस हवा अभी कॉलेज जाता हुआ ऐसे करता हुआ काके जेबा इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क जहाँ पर काम होला तो ऐसे बुफोनी करबा मौके करबा त जब कोई लात से दे जाने बोले लात लगाता सॉरी पर एक्सप्रेशन ऐसे बोलेगे कहे कि हमने हये मुँह से भात खाया सर हये मुँह से तेलोग जाने हम की कौन ची होला। तो अभी ढेर नौजवानों दिख रहा सर बड़ी भीत परी फुटों बतियालन सर। तो हई बात बोली कि किसी के बारे में बुरा ना बोलिया, जब भगवान सबको एक अलग प्रकार से बने लग बा सब में अलग अलग गुण बा ठीक बा। तो नहीं छा दिखला करे कि ढेर सुपैया है सर। अगला गीत किसी के बारे में बुरा ना बोलिया गीत आरती भरत खतेर राजीव साहब भवन सुभाष खटका गीत और नाम और कविता अनु है गीत और खतेर फिर मानसी हवनन के साथ देवत हवन अलेहेंड्रो दिंकर्षण तोहरो नाम माधवन लक्ष्मण इशिका रामचंद देव शमीला राजकुमार तेंगर हाँ बोलतवन माला बतन को भाई राजकुमार तेंगर उठरा बीमार हवन त प्रार्थना करब स माला जी की तोर भाई ठीक हो जाए। परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान से प्रार्थना करत है जा कि हमने के भाई राजकुमार टेंगर के ठीक कर दे हमने की प्रार्थना तोर साथ बा माला जी फिक्र ना करिया। तो चल अभी कितना सुनब जा सुखदेव राम खेरावन की आवाज़ में

हाँ तो किसी के बारे में बुरा ना बोलियो, बुरा ना सोचियो। गांधी जी के तीन को बंदर याद बना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। काल बोले रही नहीं काको नहीं रहल काल रहल लेंदी दिमाग के बोले रही हमारे प्रोग्राम में। अखिलेश हरंगी भाई कैसे बा? हाँ सब ठीक ठाक। बोंकवाज तोरो बोलते हैं और हमने के प्रोग्राम की मजा ला। आज देखा मिराक जादू जैसे राज्यों में बचाए रहे सब सकबा राज्यों में हमने के देखे भी तो चला अच्छी बात बा। हमने के श्रोता लोग हमने के देखा था प्यार से, हमने की अंकवाजी करा था तो हमने तो लोग के साथ ही जा है? पल पल घड़ी घड़ी तो लोग के साथ ही रात के 11 बजे रही। और अपनी बात कर अब सर दूध के बारे में है। जो गाय के दूध है ये बहुत पौष्टिक तत्व बाइकर में, दूध से माखन बनेला, दही बनेला, पनीर बनेला और खोखोरनी। खोखोरनी कौन चीज है तो दूधवा के जब ऐसे बुई करबा तो कर में छाली जो नावेला ऊपरवा से ओके गाते करके नीमन से पका दे बच्चीनी में तो खोखोरनी हो जाला। हमने के आगे के दादी नानी लोग जो है वो लोग बनावत और लड़का लोग खूब मजे से खाते रही। आजकल तो गाय कहानी लौकेला कि नहीं, हम जहाँ रही रहा मातबा रही रहा तो हमारे घर के बगल में एगो लेकेगी बा तो वहाँ पर एक बकरी बा और सब बकरियन में खांसी भी बा और एगो जोली मुतों बा। और गाय तो हम देख रहे हैं ढेर जगह में गाय जो रहेला और गाय के हमने गौ माता बोला सा हाँ कि नहीं तो बेशक गौ माता के सेवा जो कोई करी तो घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी रहेला। अगला गीत धोखा दे ली और है गीत हमने चलाओ अब सा अनिता परतोप के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ अक्षय भाई हमके साथ जुड़ल हो अन्न फिर राजेंद्र सुनीता नीतीश है गीत तोहरों खातिर अखिलेश हरंगी है गीत तोहर नाम गंगा भी उनके साथ देवथवन अतुन भी और शंकर थापा जसना श्याम और साथ में भी जितना कोई कोशिश करा था थोड़ा लाइन ना ही रहता या कोशिश करते हमने कि टिकटॉक पर देखे कि बट ढेर कोई नहीं जाने ना टिकटॉक से भी करे था का सक अब से करे पर खास पर रेडियो पर सुनाते हुआ था चला सुनिया जा। और हाँ राजू में अनीता पर तब हमने के सुना था वन चला अच्छा बात बहुत साथ पे देखा था टिकटॉक पर सोना मैं गीत हो खातिर विद्या गीत हो नाम धोखा दे ली तो हम बोला कोई के धोखा नहीं दिया। कोनो भी रिश्ता का है दोस्ती हो या प्यार हो तो कोई के धोखा नहीं दिया, कोई के दिल नहीं दुखैया काहे कि ये पड़ी सब चाह भरे के है स्वर्ग नर्क यहाँ पर बा है तो यही खातिर हमने बोला सर कि धोखा नहीं देखी। इमानुएल को कैसे बा है गीत तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ तो चल एक साथ सुने है गीत धोखा दे ली।

0: संगत रोग घड़ी मिला बखत रात के ठीक 10 बजे बाद तू सुना और एम फ्री रेडियो मनोरंजन और एम टू रेडियो मॉरिशस
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक एम फ्री
2: 7 डेज अ वीक 24 आवर्स अ डे माय दिस इज रेडियो मॉरिशस
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का

0: चोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: रात के 10:03 हुआ था। तू सुना था एमबीसी और एम फ्री रेडियो मनोरंजन और एमबीसी एएम 2 रेडियो मॉरिशस से दुगो एमबीसी रेडियो के चैनल पर चला था। तो लोग चकाचक मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का और जी प्रताप सिंह की प्रस्तुति में। और अगला गीत बहुत ही प्यारा संगीत था, कमरिया आशीष रामफल गीतवा गैले हवन गीत त्रियोले के अनीता मैरी सुनीता राजन खातिर भी बहुत बहुत प्यार के साथ। लवना हमने के साथ देवतन, हाय लवना, मेरियम मैथिल शामिला है गीत और खातिर, दालिदा रामराज और आदुल्फो डिजायर है गीत और खातिर, इंद्र नारायण हेलो जी, कुंदन यादव राज है गीत और नाम चलावते ही सर, शुभम मंगरू है गीत और खातिर, रिशाद भाई और फिर साबिना भी उनके साथ है, वन रिहाना हसनानी हवन फेनिक से बैन साइदा और तो सब परिवार के नाम अगला गीत चलाओ अब जा। और फिर है गीत चले जिदों के भी रात के नाइट शिफ्ट में काम करता, लोबिताल में, मित्यू स्टेशन में, फायर सर्विसेज पुलिस विभाग में, कॉल सेंटर में, सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी जिदा कोई करता और ढेर कोई भी रात की सिलाई करता, लुगा सी लेन से या कपड़ा सी करते हुआ रिपासे करते हुआ बुलोंजी में जितना कोई काम करता है गीत थोड़ो नाम लवना है गीत तोहर खाती तोहर पति देव विकास विकास बिगू और सब बिगू परिवार के नाम जुन रहे फोन जी सकते लवना है गीत खासम खास और खातिर तोहर घरोला खातिर कमरिया और विकास भी उनके साथ होते हैं किंग स्टार कैसे बा सिंग इज किंग किंग स्टार चल एक साथ सुनेगी तो आ कमरिया

कभी कभी इंसान निराश होके हताश होके जाके आत्महत्या कर देवेला। तो हमने के जितना धर्म ग्रंथ बा कोनो भी रिलीजन के चाहे हिंदू हो मुसलमान हो तमिल तेलुगु तो कोनो भी धर्म ग्रंथ में नहीं बोल गए आत्महत्या करे कि आत्महत्या एगो पाप है जैसे सुसाइड बढ़ जा सर और अक्सर जुनार में पढ़ी जा सर फेसबुक में दिखी जा सर कि फलाना व्यक्ति जहर खा ले लग या फांसी डाले लग तो ये बहुत बुरी बात है। कबो नहीं चाहना ऐसा बात दिमाग में डाले कि भगवान की पूजा पाठ करिए भगवान से हिम्मत कुआज मांगिए ताकि सकबर मुश्किल की सामना करे। जिन व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है आत्मा भटकते रहेगा और कबो भी उसके शांति ना मिलेगा और आत्महत्या करके कर देवेलन सर मर जालन सर पर उनके माँ बाप सुफिया होला। एगो माँ बाप जब लड़का के छोटा से बड़ा करके छोटा इतना छोटा से बड़ा करलक और लड़का जब बड़ा हो लेकिन छोकरी की खुशी तो छोकरी खातिर कोनो छोकरा जाके अपन जिंदगी अन कर कोनो छोकरी छोकरा खातिर जाके कोनो चीज़ खाओ लेवेला और मर जालन सर तो ये सब काम कर सके जरा सोचे कि तुल के माँ बाप तुल के छोटा से इतना दुख से पास पाल पोस के इतना बड़ा करलन सर कम से कम वन माँ बाप की सोच है ना कि इतना इतना कौन कहते प्यार है कि छोकरा खाती या छोकरी खाती थोड़ा अपन जान देव था सोच है तुहार माँ बाप थोड़ा पढ़ेलक लिखेलक इतना बड़ा करलक है। अब जब तो लोग के ले आल बा माँ बाप की सेवा करके तो छोकरी के प्यार में पढ़ के तू अपन जीवन के अंत करो या छोकरा के प्यार में है प्यार व्यार ये सब चक्कर में नहीं पड़िए भैया जब तुहार लाश हो तो तू ही देखबा अपन से तू खुशी हुई बा वो कौन कहते प्यार जो प्यार में बता जान देगी ये सब फिल्म की चालू है प्यार में जीना मरना इसे रियलिटी में नहीं होला ठीक बा। तो चल अगला गीत भोजपुरी भाषा है गीत आप चलावते इस प्रताप की ओर से संगत या हिरीश के नाम हिरीश और प्रताप दुनिया के बेस्ट फ्रेंड हवन सर हिरीश नारायण और प्रताप है गीत तो खतेर भोजपुरी भाषा तो लोग की दोस्ती एकदम प्यारा दोस्ती है का बोला भैया है दुगो संगतिया एक दूसरे से जितना लोग के लगाव हुआ था एक साव जिने और हे गीत संजय की ओर से पत्नी सुरेखा कर सब परिवार के नाम और विनेश की ओर से अनीता के नाम है गीत चली और फिर कमला दिनू है गीत तो हर चीज़ों फारोही खातिर ज्ञान और चित्रा विश्राम मॉडल बे से हवन संगीता मिरन लाखोजा से गीत तोहर माता जी तोहर दुगो भाई दान आजी तोहर बहन हेमा फिर शांति वंशिका रक्षिता सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम भोजपुरी भाषा।

0: हमने की बरात भी लोग हमेशा हमने के सिखेलक बा जिंदगी में चेहरा अकलमंद बने के बुद्धिमान बने के जब अकलमंद बुद्धिमान स्मार्ट इंटेलिजेंट रहा तो कोई तोरा कुयुने नहीं करी तो चेहरा एंटीरिशा बने के और जब कोई कोनो बात बोली तो ध्यान से सुनियो कौन सी बोला था और ध्यान से सुनियो रिफ्लेशी करिए तब एगो डिसीजन लिया नहीं कि जैसे कोई कौन सी बोल रखता एक्सेप्ट हो जेबा नहीं ऐसे काम नहीं होला जब कोई कोनो बात करता था थोड़ा कोई कौन चीज बोला था तो सुनियो कौन चीज बोला था थोड़ा हाँ तो यही एगो अंतर रहेला एगो जो व्यक्ति बुद्धिमान बा और जो व्यक्ति अनपढ़ बा तो जब तू बुद्धिमान रह अकलमंद रह तो दुनिया में कोई थोड़ा नहीं सकी कोई नहीं करी हमेशा याद रखिए और जब इंटेलिजेंट रह तो सब ढेर काम करी यही खातिर बढ़िया सर शिक्षा जो हर एजुकेशन वो रावीनिया के को पासपो है वही खातिर माँ बाप के हमको आज के ऐसा पर निकालो के जहाँ ले सकब पर निकालो के पढ़ाइया बी ए तो हर बेटा बेटी कर दिलक एम आ कर दिलक तो अब ओके एम फिल करैया पी एच डी करैया पढ़ते रहिए ताकि लड़का जो है वो आर इंटेलिजेंट हो बुद्धिमान बनी हमने की जो दुनिया जैसे जाता जो गति से जाता चहला बुद्धिमान इंसान बुद्धिमान रब तो सब कोई तो आदर सत्कार करिए बुद्धिमान नहीं रब तो तू जाने ला कैसे होला अगला गीत मार ताली मार ताली मार हमर संगी मार ताली मार हमर संगी बहुत ही प्यारा सन गाना है कुणाल हीलाल के कावल गीत शनाया बेनाजिर है गीत और कती राजकुमार सती सुंदर मंडल रूबी किस्तू अंजल कविना जोया सरिता शंकरा करिश्मा पेयाम यूश फीजा अलीशा रॉय अलागेन शाहिनूर सबा रोशनी कामाचो विनोद कुसमती अनाता राजीव राजी मिमी देविका सुल्ताना शिव महादेवा यश गणेश अविसान जहरा माही सुभावत शैलेंद्रा सरिता चेतक गीत और खाती चली वनीश्री बंधुआ वो भी उनके साथ होता थैंक यू जी वनीश्री बंधुआ के ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा था और ये लाइव शेयर करता तो अच्छा बा बहुत बहुत प्यार से तो चल एक साथ सुने मार ताली मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार हमर संगे शास्त्री बने वाली गीत और खाती तो सब परिवार के नाम और अभी को संगत लाइन पे को से मिलब जा हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते
1: प्रताप भाई कैसे
0: हम ठीक हैं तू के हो जा
1: गिरीश है भाई
0: गिरीश गिरीश हेलो कैसी समाचार
1: कौन है बा
0: हाँ बोला था कौन गीत सुन भैया
1: चले बा अविनाश के गीत डाल दिया जा
0: अविनाश के कौन गावल गीत है
1: लंगरो लंगरो डाल दिया
0: लंगरो लंगरो केकर खातिर भैया
1: हां तो दो शाम बता है बता
0: हम जानते हैं केकर खातिर मांगते हो
1: हमरे खातिर
0: आली और आज के दिन कैसे बीतल भैया
1: आज के दिन तो तनी कैसे बोल आधा आधा तनी गमा तनी नहीं आज तो दिन अच्छा से बीत
0: कमर लगी भैया एक सेमेन से पानी बचा था लुगा सुखा के नाम बताते आके पास से करके लुगा पहन पानी पानी इसी जो है ना पानी देखा तो लेगोप में देखा तो हाँ लेगोप लेगोप में देखा तो कितना गर्म कर लग बा इटाली

0: बहुत कबू इतना गर्मी नहीं हो रहा था सब सौ मुक्ति माथी का यहाँ पर इतना ठंडा का तभी दिव्या में सब लेटी का जी नहीं कैसी रही। हाँ तो भैया थोड़ा चला दे तो हर गीत मार ताली मार के बाद लंगरो भागल ओके
1: भाई।
0: बहुत धन्यवाद हमने की टेलीफोन हमने की याद कर ला इनके संग चरल गिरीश हरलोल बहुत प्यार से सुनता गणेश वरुण कैसी भाई भाई वाह हमने संगे बड़ी जोर नाचेला नमस्ते भाई नमस्ते वरुण जी कैसे बा समाचार और चला विष्णु मार ताली मार ताली मार हम संग मार ताली मार उनका नाचे के तो चला नाचब जा वरुण गणेश वरुण भाई तोला चला हमने के संगे नाचे के तो चला एक साथ नाचब सा ताली मार हम संग मार ताली मार ताली मार।

हाय देखा आहा, हाय देखा, वरुण भैया ताली मार।

मार ताली मार और सब कोई हमने के संगे संगे नाचता गावता झूमता ऐसे नचते गईते रहिया। रात के 11 बजे ले और बोली रहा सा कि हमने जहाँ पर काम करी रहा सा वो हमने के देशम फार्मी हमने के देशम परिवार कहे कि वहाँ पर ही हमने ज़्यादातर अपन समय बिताए रहा सा तो चाहे ना निमन से अपन काम में अपन कोलिग लोग संगे संगतिया लोग संगे मिल जुल के रह के कहे कि जहाँ काम कर रहा सा वो हमने के देशम फार्मी है हमने के देशम परिवार हो कि नहीं तो फील गुड फैक्टर चैनल है जहाँ पर तू काम करेगा कि सब कोई निमन से तौर से बचाए सब कोई तौर हाल चाल पूछी हो कि नहीं। रात की 10 बज के आधा हुआ था और अगला गाना लंगरो भागल अविनाश रामदायन गीतवा गई देवन है गीतवा गिरीश हरलाल करती चलावती सब और प्यार के साथ तरुणा सुरवशी गीत और करती रहा मताली करुणा दुर्गा अमृतवानी गीत और नाम और फिर है गीतवा हमने चलावत इस जमीन के नाम और केलान। हेलो केलान कैसे बस समाचार केलान बहुत प्यार के साथ हमने की दिखाते वन दिया दिया गीत धोरो नाम ज्योति माथिया आनंदेव बुल और तुलसी बंधु वनिश्री बंधुआ और जिदा कोई भी हमने की फॉलो करा था टिकटॉक पेज पर ऋषि हवन तरफ तरफ से इस दिल नहीं हाय वरुण गणेश ये प्रोग्राम भोजपुरी की है भैया कल मैं हिंदी की गीत नहीं चला सर माफ़ करिया माफ़ी चाहता है एक्सक्यूज़े कर दिया पर ये भोजपुरी के प्रोग्राम है एक मैं तरफ तरफ के नहीं खोला। हाँ ये तरुण तू तो वरुण तू तो बड़ी कॉमिक हुआ वो गिरीश गिरीश खातिर तरफ तरफ के इस दिल से नहीं तो एक मैं बॉलीवुड के नहीं चली ना एक मैं भोजपुरी की तरफ भोजपुरी बात तरफ तरफ के कौन एल्बम है भाई हम तो कबू नहीं सुनने हैं माफ़ करिए है सकेरा एक हो जाला आले कोई बात नहीं तो गणेश वरुण गिरीश का थी तो गीत मंगले हुआ था है गीत चला दी लंगरो भाग गल अब लंगरो कहाँ भागल तारावंती राजा राम ओके नमस्ते जी सुस्वागतम तू भी गीत मंगले हुआ पर अभी गीतवा क्लास से हो गल बात थोड़ा समय में थोड़ा गीत चला तो जुबेदा के गीत दलिया जा ओके आशा तिराना ऑलराइट तो चल अभी लंगरों के गीत सुनब सर लंगरों कहाँ भागत चले साथ सुनब जा जुबेदा के गीत गणेश वरुण थोड़ी समय में ओके आले चला अभी गीत सुनब सर

वजह से संगतिया लोग जब भी लेके आई दुनिया में आवेला तो अपन तकदीर के लेके आवेला और हमने कोई नहीं सकता से जाने कि लड़का एक दिन कौन सी बनी पर दुनिया में जब लड़का आवेला तो वो ढेर कुछ सीखेला तो केकर संगे सीखेला पहला पर माँ बाप संगे जब दुनिया में आवेला कैसे बच्चा के कैसे चले के कैसे बैठे के कैसे उठे के फिर बाद में स्कूल जाला अपन प्रोफेसर से सीखेला कामकार लोग से सीखेला फिर समाज में सीखेला रेडियो टेलीविजन द्वारा सीखेला हमने जब छोटा रह सकते हमने राजो सुन सुन के हम पर्सनली रेडियो सुन सुन के हम ढेर कुछ सीख लें कैसे हिंदी बचाए के भोजपुरी बचाए के ओंगली बचाए के फ्रांसी बचाए के हम ये सब सुन सुन के हमने कोनो भी लड़का अपन माँ के पेट से पढ़ लिख के नहीं आवेला है तरीका जी कोनो भी लड़का जो नावेला तो किसी में नहीं करिए काहे के लिखवा सकेला एक दिन को बहुत बड़ा आदमी बने और हमने के चेहरा कोशिश करी कि अपन निकालो कि मैक्सिमम जहाँ सकब सा निकालो के पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाए कि हाँ कि नहीं ओके ठीक बा भाई वरुण जैसे तू सोचते हुआ और अच्छा जैसे हम बोले थे एगो लड़का तो आवेला तो अपन तकदीर के लेके आवेला तो हम तारवा बोला चले कि एगो फिल्म निकल बा वेलकम टू द जंगल ओकर में एगो भोजपुरी गीत बा ये फिल्म वा सौ पूसों कॉमेडी है ये फिल्म कुमोसमो से देने ले थोड़ा तो आदमी फिल्म हंसते हंसते रह जाए बा फिल्म कर में अक्षय कुमार बा परेश रावल बा फिर बा सुनील शेट्टी अर्षद वारसी और हाउस कॉमिक के बाको नंबर थोड़ा नट्टा बाको नंबर भुला गेरी पाफी नहीं याद देते थोड़ा बोल आपको नाम बाकर नट्टा से नाकते बा तो है फिल्म सौ पूसा कॉमेडी है तेकर में कोई भोजपुरी गीत बा घिस घिस के कैसे नहावल जला तब ढेर कोई अगर नहीं जाना तो कैसे चाह नहाए कि तो थोड़ा बताओ अब सभी गीतों में कैसे चाह नहाए कि हाँ राजपाल यादव सुनम जी बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल यादव जो कॉमेडी कर लग बा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर सुपर से भी ऊपर और राजपाल यादव अभी फेंकवा कुछ महीना पहले कर भाई वो केस रहा कह के वो लोन नहीं रहा लोन वाले से कतल भरे तो ओके पड़ल पुलिस जेल जाए के तो सलमान खान साहब इडी करलक पैसा दिलक और है राजपाल यादव निकल जेल से और आजकल वो फिल्म में काम कर रहता है तो आशा करते कि पैसा मिली और उगर जीवन अच्छी तरह से जाए तो जैसे बोली है फिल्म में एगो भोजपुरी गीत बा बतावा था कैसे नहा गीत एकदम कॉमेडी से भरपूर है गीतवा जैसे पिक्चराइज हो अक्षय कुमार पर और हो हीरोइन पर तो चला एक साथ सुने कैसे घिस घिस के नहावल जरा अब देखो ठंडा में नहीं खुचा नहा के बड़ी पाले से जो हमें ठंडा में नहीं नहा नहीं भाई चेहरा रोज के नहा के कहे कि हमने के शरीर जो है चेहरा के साफ सुथरा रखे के हाँ कि नहीं तो नहीं बोलिए कि ठंडा करता नहीं नहीं भाई चेहरा रोज के नहा के चला सिखब सा कैसे घिस घिस के नहावल जरा

तब संगते लोग आशा करते हैं ऐसा कि तोरा की तो आप पसीना लो घिस घिस के कैसे नहा कि रात के 10:40 होता। अब तोरा हमने बताओ अब जा एगो सब्जी के बारे में, ओकर नाम है करेला। बड़ा करवा रहे करेला पर कई करेला के जो नहकर में ढेर पौष्टिक गुण है एगो सब्जी है और आयुर्वेद में एक जो नहकर महत्व बोला गल बा। और करेला जुन है एकर में विटामिन से बा, विटामिन आ बा, विटामिन बीएन, बी2, विटामिन बी3 और बी6 बा। और है जब करेला खैबा तो तोहर खून के कंट्रोल करेला और आँख खातिर भी बहुत अच्छा है और ऊर्जा उत्पादन करेला। और है अगर में पोटाशियम बा, कैल्शियम बा, मैग्नीशियम बा, फॉस्फोरस बा, आयन बा, जिंक बा, मैग्नीज भी बा, इतना चीज भाई करेला में। हमने जान ही ना सके ढेर कोई करेला नहीं खुशिया खाए कि करवा तीखा रहेला पर अच्छी तरह से बनेबा इके तो ये अच्छा रहेला खाए के। और जो है जैसे नहीं बड़ी सा एक में ढेर पौष्टिक तत्व बा। तो करेला के जो है ओकर बिंदाई बनेला, करेला सब तारल खाए, करेला के सलाद भी बनेला। हाँ एक मौगोज जैसे भाई वरुण बोला था एक मौगोज बजला से तो करेला ओके सकब काट के धो के ओकर सब बिया निकाल के पतरा पतरा काट के प्याज डाल के ओके थोड़ा सा विनेग में डाल दिया तो सकब जोड़ी सलाद बना के खाए। चाहे जाने के बनाए के है जब करेला के बनेब तो जोड़ी से ओकर सलाद बनेला, ओकर विंदाई बनेला, ओके तारीला सभी तो वो आमेवा चल जाए। चाहे जाने के प्रपाई करके यूट्यूब में सकब जाए देखे कैसे करेला के तरकारी बनेला, उसका सलाद कैसे बनेला। क्या कि ढेर कोई बाजार जालन से प्रबलन से एक तो एक की बात नहीं बात अगर तू जोड़ी से बनेबा तो सब कोई उंगली चाट के खा ली। तो जैसे हम बोली कि जो करेला है एक जो है एक ढेर लावता से खाए कि थोड़ा सुन आमे रहेला पर का करब परेला खाए कि ना। अब आमे अच्छी जो रासों के खातिर अच्छा है, हमने के खून कंट्रोल करेला और हमने के शरीर खातिर अच्छा है करेला मौगोज। अब एक एक्सप्रेशन

एपोक मोगोज कि आगे के ज़माना में कैसे लोग ज़्यादातर आदमी जाता है नदी, नदी से लकड़ी आने, नदी में लुगा धोता था, नदी में अंगड़ी चिंगरी मारी है, नदी लेकर लोग खेलता, तो उस सब ज़माना जो ना फिनियो गए भैया। हाँ, जाबित खातिर भी ये का वरुण बोला था, जाबित खातिर जो करेले का जूस जू मोगोज पतंजलि योग में स्वामी रामदेव तेज में बतावे ला, जो आयुर्वेद है ये करेला के जो जूस पीबा था वो जाबित के कौथोली करेला। तभी भाई गणेश वरुण मंगल गीत जुबैदा वगैरह सब थॉनसैक लोग खातिर देखिए भौजी बिलना बिलना से थोड़ा लगी वरुण ने ना ही हो बाजने कर दें वरुण गीता मंगला बा कर सब संगत आप कर परिवार कर लड़का कर घरौली खातिर है तो चल एक साथ सुने जुबैदा की गीत, जुबैदा लुट्टो लेके जाए। अब जुबैदा लुट्टो लेके कहाँ जाता वरुण, देखिए जुबैदा के संगे लुट्टो में जाता हुआ है भौजी थोड़ा दे बेलना से। चल अब ये गीत सुनब जा, जुबैदा रंभा राम तोहर गए दे वन। हाँ जुबैदा लुट्टो लेके आवा था वरुण थोड़ा ले जाए, देखिए कहाँ के लिए जेबक घूमे के हैं, तू जाने ना कहाँ लेके जाएगी घूमे के, माले बड़का माले हवा तू

जुबेदा लुटो लेके जाए अभी रंफा राम थोल के सुना थला बढ़िए जोड़ी गीत रहल हाँ कि नहीं। और अपनी बात करब सब पान के पत्ता के बारे में तो भारत में बनारस में जेबर ढेर कोई पान खाला ओ खाई के पान बनारस वाला खोली चाय बंद अकल का अमिताभ बच्चन के दिख रहे हो ना कैसे पान खाला चबा चबा के पर जो पान खाए के ट्रेडिशन है ये मॉरिशस में हम नहीं देख रहे हैं पर भारत में बनारस जेबर ढेर मना जगह में तो वो लोग पान खा लन सर तो पान के पत्ता जो है अगर से एकर में विटामिन आ बा विटामिन सी बा कैल्शियम बा आयन बा पोटाशियम भी बा फाइबर भी बा देखो नहीं जाने ला और है जो न पान के पत्ता है

ओकर में इजेनॉल शाविबेटोल और हाइड्रोक्सीशाविकोल ये सब साइंटिफिक टर्म है कर में बा और ये हमने के बैक्टेरिया से पोटेजे करेला त हमने की डाइजेस्टिव सिस्टम खातिर जब खाएला से पान ओकर में गोरा सहेला तो हमने की डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन शक्ति के अच्छा बनावेला और मुंह के दुर्गंध के कम करेला और कुछ लोग भोजन के बाद जब पान खा लन सर और पान से हमने पूजा करेला सर मॉरिशस में देखे सब पान के पत्ता पान के पतवा में फूल डाल दी ब तब जाके पूजा करी रहा सर पर मॉरिशस में नहीं दिख रहे कोई कि पान खाते कहे कि बड़ा तीखा बड़ा अमेर रहेगा पर भारत में एकर से पूजा भी होला और एक खाल भी जाला पान के पत्ता तो ये तो बनल बा खाई के पान बनारस वाला तो एक दिन खा के देखिए भैया का चीज़ हम तो सही नहीं कर ले हई खा के देखिए कैसे रहेगा पर बोले ना सर कि लासौते का चीज अच्छा है तो अगला गीत जो है जलसा लाल बा गीत चलाओ सर सुमिला नंदलाल खातिर ओकर बेटी खातिर बदल को बेटी बीमार हुआ तो प्रार्थना कर सर सुमिला की तरह बेटी ठीक हो जाए मानसी हमने के साथ देव थवन नीमा बिमला बुधु है गीत तोहर खातिर चली और गिरीश नारायण गिरीश हरलोल माफ करिए गिरीश हरलोल के साथ देव थवन गिरीश नारायण भी हमने के साथ बा बिन मोदा बिन मोदा भी हमने के साथ देवत हवन लिंडा कैसे बा लिंडा लिंडा है तोर का तेरा गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ खेलान नापादू कैसे खेलान सब ठीक बा खेलान खेलान बड़ा जोर नाचता हमने के संगे संगे बोलता मिशे जुए संते पुमा बिमला बुदू नमस्ते है ये तोरो नाम और खेलान खातिर भी और जितना कोई भी रात के हमने की सुनाता है गीत तो लोग खातिर यस तो चलो एक साथ सुनब जाए गीतवा जलसा लालबा

संगत्या लोग किशोर खिमिया की गावल है गीत के संगे भोजभतर का प्रोग्राम यह बड़ी समाप्त हुआ था। शाम के 6 बजे से अभी हमने साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद तो लोग के फोन कॉल्स तो लोग के SMS और टिकटॉक पर हमने के देख ला हमने के फॉलो कर ला कमेंट कर ला बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रात के 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए तब सुनबर नीतू शाह से कार्यक्रम सुनहरी पल और रात के 12 बजे से काल फजर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने के तलों के मुलाकात अब हो कल बीफे के रात के 6 बजे से रात के 11 बजे ले रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर प्रोग्राम रही 6 बजे के आधा से रात के 7 बजे नई सोच 7 बजे से 9 बजे ले दिलों की आवाज़ और 9 से 11 बजे भोजपुरी तड़का तब मिलब जा कल बीफे के सांझ के 6 बजे MBC रेडियो पर। तब तक हमने की इजाज़त दा अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते शुभरात्रि गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स लव यू ऑल बाय बाय नमस्ते 890

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: प्यारे प्यारे हमारे जितने भी श्रोता इस समय रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं, स्वीकार करें निदुषा का करजोर प्रणाम। सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन है। हमेशा की तरह आज भी सुनहरी यादों में आपको खोए ले जाने आए हैं, और आज जिन कलाकार के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे और जबरदस्त गाने चलाएंगे, वो हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के जो कपूर परिवार के बेटे हैं। कौन सा बेटा, ये गाना सुनिए, पता चल जाएगा।

तो आज का ये सुनहरे पल कार्यक्रम आपके नाम है शशि कपूर। जी हाँ, एक शांत, सभ्य और कलात्मक सितारे की कहानी। शशि कपूर का नाम आते ही मन में एक ऐसे कलाकार की तस्वीर उभर कर आती है श्रोताओं, जो अपनी नर्म मुस्कान, गहरी आँखों और बेहद स्वाभाविक अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका पूरा नाम बलबीर राज कपूर था और उनका जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ। वे कपूर परिवार के सबसे छोटे बेटे थे और पृथ्वीराज कपूर जैसे महान रंगमंच कलाकार के पुत्र होने के कारण कला उनके रगों में बसी हुई थी।

शशि कपूर ने अपना कलाकार सफर बहुत ही छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था। बचपन में वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर के नाटकों में काम करते थे। यहीं से उन्होंने अभिनय की बुनियादी समझ, डिसिप्लिन और कला के प्रति समर्पण सीखा। रंगमंच ने उन्हें एक मजबूत कलाकार बनाया जो बाद में पर्दे पर भी साफ नजर आया।

वैसे शशि कपूर ने फिल्मी दुनिया में पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन एक लीडिंग हीरो के तौर पर उनकी पहली बड़ी फिल्म थी 1961 की धर्मपुत्र। इस फिल्म में उनके गंभीर और प्रभावशाली अभिनय को बहुत ही सराहा गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 60, 70 और 80 के दशक में लगातार सफलता हासिल की।

शशि कपूर ने अपने करियर में लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार और लोकप्रिय फिल्म रही जब जब फूल खिले, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, त्रिशूल, नमक हलाल, चोर पुलिस, फकीरा, जुनून, कलयुग, चोर मचाए शोर। उन्होंने रोमांटिक हीरो के रूप में भी दिल जीते और सीरियस, नेगेटिव या फिर कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी छाप छोड़ी। उनका अभिनय कभी भी बनावटी नहीं लगता था। वे कम शब्दों में भी गहरी भावना व्यक्त कर

70 के दशक में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया। दीवार, त्रिशूल, कभी कभी जैसी फिल्मों में दोनों के बीच का कंट्रास्ट, अमिताभ बच्चन का तीखा तेवर और शशि कपूर का शांत सभ्य व्यक्तित्व पर्दे पर कमाल लगता था। शशि कपूर की एक्टिंग की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस। वे डायलॉग से ज्यादा आंखों, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से कहानी कह देते थे। उनकी आवाज में मधुरता थी और उनका व्यवहार पर्दे पर बहुत ही सच्चा लगता था। वे हर तरह के किरदार को ईमानदारी से निभाते थे।

श्रोताओं, शशि कपूर सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक साहसिक प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल के साथ मिलकर फिल्म वलस नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस बैनर के तहत उन्होंने आर्ट और पैरेलल सिनेमा को बढ़ावा दिया। उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्शन फिल्म्स रही जुनून, 36 चौरंगी लेन, कलयुग और उत्सव। इन फिल्मों ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा का नाम रोशन किया। व्यक्तिगत तौर पर उनकी जिंदगी देखें तो शशि कपूर ने, जैसे कि हमने कहा, ब्रिटिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से विवाह किया। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि कला का भी था। जेनिफर के निधन के बाद शशि कपूर का जीवन काफी बदल गया और वे धीरे धीरे पब्लिक लाइफ से भी दूर हो गए। उनके तीन बच्चे कुणाल, करण और संजना कपूर भी कला से जुड़े रहे।

अपने करियर के दौरान शशि कपूर को उनके योगदान के लिए बड़े सम्मान मिले, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये पुरस्कार उनकी कला, समर्पण और सिनेमा के प्रति उनके प्यार का प्रमाण है। उनका निधन 4 दिसंबर 2017 को हुआ, लेकिन वे आज भी अपनी फिल्मों, अपने शांत अभिनय और कलात्मक विरासत के जरिए अमर हैं। वे सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के एक सुशील, संवेदनशील और समर्पित कलाकार रहे। शशि कपूर हमेशा याद किए जाएंगे एक मुस्कुराते हुए चेहरे, गहरे किरदार और सच्ची कला के रूप में। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yes!

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा आई का ओए कर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तू भी सुनो पापे।

अरे का भयल हो बड़ी दुख बेटा डटलक नहीं हो तब बहु मरलक नहीं हो

बनेला कहाँ जाला मसाला पीसे के कर हो मामा के कंच पकाए मच्छी के खाई हो मामा के खाई हो पापा

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।